0: नमस्कार नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। कैसे हैं आप, कैसे जा रहा है आपका दिन? दिन तो अभी शुरू हुआ है, मॉर्निंग आपकी कैसी गई? डू लेट मी नो 5599 पे। वेल यस, मेरा नाम केतन है और आप बने रहिए। सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ और अभी से लेकर 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद सैंडी जुड़ेंगे फॉर द कॉफी ब्रेक। अभी थोड़ी देर पहले आप कशिका जी के साथ थे फॉर माई टाइम विद कशिका। वेल यस, आज काफी इंटरेस्टिंग बातें करनी है, कुछ ऑन साइट कुछ ऐसी चीजें भी आई है। बिकॉज अभी नॉट वेरी वेरी हॉट टॉपिक बट काइंड ऑफ हॉट टॉपिक, और वो हॉट टॉपिक सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से है जो इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। एज यू ऑल नो दैट UFO की कुछ रिपोर्ट्स जो है डिस्क्लोज की है, पब्लिक के सामने रखी है अमेरिका के द्वारा। सो यस, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट भी जाग रहा है कि यार सिर्फ अमेरिका में ही क्यों ऐसी साइटिंग होती है, UFO साइटिंग, व्हाई इट नेवर हैपेंड और व्हाई वी नेवर हियर एनीथिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, इनफैक्ट स्पेशली इन इंडिया। यू नो, इंडिया में या फिर इनफैक्ट अगर आप जहाँ से भी है वहाँ पे भी अगर हैं तो ऐसे क्यों नहीं है? तो उस बारे में बात होगी थोड़ी देर में।
1: बचाओ क्या

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: वेलकम बैक, कैसे हैं आप? वेल चलिए बात करते हैं आज अभी होम सिक रेमेडीज की। आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे रिगार्डिंग क्या ऐसी चीज जो आप चाहे बीइंग इन न्यूजीलैंड आल्सो जब आप रीलोकेट करते हो तो क्या मिस करते हो। जैसे कि मैंने कल बताया था, मुझे कॉल भी आया था वो भी अनवर कागल से, और उन्होंने कुछ बताया था कुछ फूड का, मैं नाम तो भूल गया हूँ, आई थिंक ब्रेड रोल करके ऐसा कुछ था शायद। तो यस, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो आज भी मुझे कॉल करिए 0800-00468 पे, बताइए कि क्या वो ऐसी चीज़ें जो आप मिस करते हैं। ओइस्टर जो है, उन्होंने ये भी बताया था कि ओइस्टर काफ़ी मिस करते हैं। मैं पर्सनली खाता नहीं हूँ तो आई हैव नो आइडिया कि वो टेस्ट कैसा लगता है, क्या होता है। बट यस, अगर आपने रीलोकेट किया है इन विद इन न्यूजीलैंड ऑल्सो तो डू लेट मी नो आप अपने शहर से बींग इन ऑकलैंड या फिर बींग समवेयर एल्स क्या मिस करते हैं। आप मुझे टेक्स्ट भी भेज सकते हैं 5599 पे। वेल मैसेज आना शुरू हो गए हैं। इन बिटवीन अगर कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है 0800-00466 इज द नंबर जहां पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं व्हाट इज दैट वन थिंग यू मिस अ लॉट। अमित भाई कहते हैं बैक होम सिटिंग आउटसाइड विद द टी एंड टॉकिंग टू नेबर्स, हियर्स एवरीवन डिसअपीयर्स इनडोर्स आफ्टर वर्क। ये तो है, ये लाइफ स्टाइल ही अलग है यार यहाँ पे। विच इज़ गुड। वहाँ पे क्या है कि गॉसिप्स का बहुत ज़्यादा रहता होगा, नेबर्स के पास जाना इन अ फैक्ट लाइक एक परिवार बन जाता है। लाइक यू नो, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अड़ोस पड़ोस में कौन है क्या नहीं है तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता है। ओनली डिफरेंस वी सी इज द बाउंड्रीज एंड द वॉल्स इन बिटवीन, बट वो भी एक परिवार ही बन जाता है नेबर। निशा कहती है आई मिस रैंडम फैमिली रोड ट्रिप्स इन इंडिया वेयर नोबडी न्यू द

0: India over video call. Oh, that's so cute. That's really nice. That's really nice. और भी messages आए हैं. Okay. आखिरी message पढ़ लेते हैं. रवि कहते हैं, I miss hearing temple bells early in the morning. Those sounds made home feel alive. हाँ, ये चीज़ होती है कि बाहर तक आवाज आती है. यहाँ पे भी है मंदिर और ये सब है. But the only thing is they are very fully secure that you don't hear a lot of you know, भगवान की जो prayers होते हैं वो सब बाहर नहीं आती है. It is just very रीज़न की वजह से है वो तो मेरे को पता नहीं है, बट ऐसा यहाँ पे है. बट वहाँ पे जब बेल भी बजती तो द होल काइंड ऑफ विद इन फाइव फोर टू फाइव किलोमीटर्स वाले बंदे सुन सकते हैं कि हाँ भाई अब हो चुका है. बट थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. ऑफिस शाउट आउट के लिए भी आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे. बताइए क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, और अगर ऑर्डर किया है तो कहाँ से किया है. डू लेट मी नो 5599.
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices make them right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
4: ऑकलैंड इस वीकेंड $100 स्पेंड करो इन स्टोर एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन और पाओ $20 माइटन गिफ्ट कार्ड सिर्फ सैटरडे एंड संडे। टीज एंड सीज अप्लाई। मोर वैल्यू, मोर प्रोजेक्ट्स, मोर सेविंग्स। जल्दी कीजिए माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
7: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है? ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर। सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार। क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
8: हम playing Bollywood's biggest hits.
10: Lunchbox with Ketan.
11: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
10: हम office shout out.
12: स्वागत करते हैं फिर से आज के इस लंच बॉक्स शो में। ये रहे मैसेजेस जो ऑफिस शाउट आउट में आपके लिए करने वाले हैं, मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। पहले पहला मैसेज है दिनेश अंकल न्यूलैंड से। उन्होंने क्या है, रिटायरमेंट लाइफ मींस लंच व्हेनेवर आई वांट, जस्ट फिनिश्ड मेकिंग फ्रेश रोटीज व्हाइल लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग ऑन योर स्टेशन। नाइस नाइस, दैट्स सो गुड टू हियर। डू लेट मी नो एग्जैक्टली आप क्या खा रहे हैं अभी रोटी के साथ, सब्जी या एनीथिंग यू आर ट्राइंग, लेट मी नो। उसके बाद ट्वी कहती हैं, आई बॉट बटर चिकन पाई फ्रॉम बेकरी टुडे एंड ऑनेस्टली लाइफ चेंजिंग। रियली, दैट्स गुड यार, अच्छी बात है ये तो। मोनिका कहती है, वर्क फ्रॉम होम साउंड्स रिलैक्सिंग अंटिल किड्स कम होम अर्ली एंड स्टील योर लंच।

0: ये भी है, मतलब बच्चे बड़े होते तो लाइक आई नो, मतलब ये चीज़ ऐसी है थोड़ी इरिटेट करती, बट यू फील सो ग्रेट यार. आई मीन ये नहीं हो तो ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मस्ती होनी चाहिए, राइट? आई मीन लाइक वी बीन मस्तीखोर इन आवर चाइल्डहुड एंड ऑल, एंड वी ऑफ कोर्स वांट आवर किड्स आल्सो, नॉट एग्जैक्टली लाइक हाउ वी वर बट समवेयर क्लोजर, सो एटलीस्ट यू नो दे कैन आल्सो एंजॉय देयर ये वाला टाइम, क्योंकि अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी उनको कोई प्रेशर नहीं है, सो दे कैन डेफिनेटली, आई पर्सनली फील दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम. जी हाँ, वो अपना बेस्ट टाइम है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं है. मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो आई एम लाइक ऐश है यार, मतलब छोटू, मतलब मेरे बेटे को, इहान को, अभी क्या है, लेटे लेटे बस जहाँ घुमाना है घुमाओ, मेरे को उठा के घुमाओ, देन दूध खाना एकदम अपने आप आ जाता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको लाइफ की झंझट ना, उसको पैसे कमाने की टेंशन ना, करियर की टेंशन, कहाँ जाना है क्या करना है, कोई टेंशन नहीं, तो मज़े ले रहा है. एनीवेज स्नेहा कहती है, स्नेहा कह रही है आई एम अ नर्स वर्किंग आफ्टरनून शिफ्ट टुडे, क्विकली ईटिंग होममेड लेमन राइस बिफोर थिंग्स गेट बिजी अगेन. दैट्स नाइस, थैंक यू फॉर सेंडिंग द मैसेज. एंड रोहित कहते हैं माई डैड स्टिल पैक्स माई लंच इवन दो आई एम 26, टुडे ही मेड एग करी एंड राइस. ये लो मजे तो इनके भी है. बट थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस, आप बने रहिए. जैसे कि आपको याद है एलियन वाली बात जो मैंने बताई थोड़ी देर पहले, उसके बारे में बात होगी थोड़ी देर में, मैं रिसर्च करके आप तक लेके आता हूँ वो न्यूज़.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: वेलकम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत इनके लंच बॉक्स शो में. वेल यस, अभी कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं, उनके पे थोड़ी नज़र डाल देते हैं. 17 तारीख को यानी कि संडे को सुबह 11 से शाम के 4 बजे के बीच आप पहुंच जाइए 378 अरारीमु रोड, रामा रामा, साउथ ऑकलैंड. वेल वहां पे भोजन मेला फूड कार्निवल होने जा रहा है श्री वेंकटेश्वरा देवास्थनम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल प्रोजेक्ट. वेल काफी कुछ फीचर्स है, फ्री एंट्री, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक और बहुत सारा फ्री चीज भी है, जैसे फ्री फूड है बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर. कुछ स्टॉल्स भी होने वाला है, कुछ एक्टिविटीज भी होने वाली, तो यस आप वहां विजिट करें ऑन 17th मई. उसके साथ ही आप 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे भी अटेंड करिए सैटरडे 16 में मलायोला कम्युनिटी सेंटर 16 वाओ कॉरी प्लेस मैंगरे में शाम के 4:30 to 8:30. एंड देन वी हैव अमेजिंग इवेंट हैपनिंग ऑन 23rd of May 2026, वाइव मिक्स इवेंट प्रेजेंस द ग्रैंड मस्ती नाइट नेटबॉल मनरेवा में, जहां पे काफी बड़े बड़े अमेजिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं फीजी से. डांसिंग लेजेंड चरफर कमिंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर 17 years. 5-6 मसाला मिक्स स्किट्स भी होने वाले हैं. डुअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा भी होगा. अमेजिंग मॉन्टू मोनिका युवा डांस ग्रुप और टॉप डीजेस होने वाले, और साथ में मेरी भी वहां पे परफॉर्मेंस होने वाली है. सो लॉट्स ऑफ गिव अवे भी है वहां पे देने के लिए, जिसे आप जीत सकते हैं. सो मेक श्योर आप टिकट खरीद लीजिए बिफोर इट गेट सोल्ड आउट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट एक्चुअली स्टॉल्स, सुपर मार्केट हंटर फूड टाउन पापाटोटो जेस फ्रेश मार्ट पापाटोटो ग्रेश गेट फ्रेश सुपर मार्केट, ऐसी बहुत सारी जगह से आप ले सकते हैं.

0: स्वागत करते हैं आज के इस लंचबॉक्स शो में। वेल चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको रिमाइंड करवा देता हूं दैट रोवा ऐप के जरिए आप जीत सकते हैं बहुत सारे इनाम। उनमें से एक कंपटीशन अभी हो रहा है चर्डल, जिसका नाम है। सबसे पहले तो रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रोवा ऐप कम्प्लीटली फ्री ऐप है टू डाउनलोड। आप फोन ऐप या फिर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कम्प्लीटली फ्री, और इसके बाद आप इन्जॉय कर सकते हैं हमारा रेडियो वहाँ से भी। प्लस हमारे पास बहुत सारी म्यूजिक स्टेशंस होते हैं, कुछ प्लेलिस्ट है फ्री जो से आप सुन सकते हैं। उसके बाद पॉडकास्ट भी हम वहाँ पे डालते हैं, वो भी सुन सकते हैं। बट चर्डल अगर आप कहते ना वो कौन सा होता है गेम, जैसे न्यूज़पेपर में आता था, पजल्स टाइप होता था, बॉक्सेस होते थे, फिर आपको रीड आउट करने पड़ते थे, फिर उसमें फ्रेजेस मैच करके लिखने पड़ते थे, तो वो सारा गेम। तो ये इस तरह का एक, ये तो बहुत ही बेसिक वाला गेम है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो देयर, फिल आउट द फॉर्म बेस्ड ऑन वॉट कीवी वर्ड हैज़। सो यस, कीवी वर्ड विजर अगर आप अपने आप को कहते हैं तो ये गेम आपके लिए है। और साथ में रिटर्न में आपको $100 अ डे जीतने का मौका है। सो यस, बहुत सारे गिवे हमारे पास, आई मीन 7,000 के करीब हमारे पास है गिवे देने के लिए। तो $100 जीत सकते हैं आप हर दिन, तो ट्राई करिए एंड एंजॉय करिए। थोड़ी देर में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फटाफट से न्यूज बहुत ही जल्द।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम। Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG and Power to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free Power Shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ओल्ड टुगेदर ओकलैंड।

चलिए चटनी शॉट्स में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे मैं फट से आपके लिए न्यूज़ पढ़ने वाला हूँ। एक शॉकिंग इंसिडेंट में अंडर 14 रग्बी मैच के दौरान पेरेंट्स पर बच्चों को पंच करने के एलिगेशंस लगे हैं। विटनेसेस के मुताबिक सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि मैच को रोकना पड़ा। टियानाओ में फ्लोटिंग सोना प्रोजेक्ट को काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि पब्लिक फीडबैक काफी नेगेटिव रहा है उसको लेके। बिजनेस न्यूज में एयर न्यूजीलैंड ने वार्निंग दी है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से एयरलाइन को $390 मिलियन तक का लॉस हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की अपोजिशन पार्टी ने फॉरेनर्स के वेलफेयर बेनिफिट रेस्ट्रिक्ट करने का प्रॉमिस किया है, जिस पर पॉलिटिकल डिबेट तेज हो चुकी है। वर्ल्ड न्यूज में रशिया ने पीस टॉक के बाद भी यूक्रेन पर लगभग 800 ड्रोन्स फायर किए हैं, जिससे टेंशन और भी बढ़ चुकी है। और आखिरी में स्पोर्ट्स में न्यूजीलैंड नेशनल फुटबॉल टीम का फीफा वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कैप्टन क्रिस वुड भी शामिल है। तो यस, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वो न्यूज़ क्या एग्जैक्टली क्या टीम बनी है इस बार। बट आप बने रहिए, मैं एक सवाल भी लेके आने वाला हूँ आपके लिए जो थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग होगा। माइंड बॉगलिंग।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Throwback.
2: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. चलिए अभी का जो सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है यार, काफी इंटरेस्टिंग है. बट आई एक्चुअली डोंट वांट टू हियर द प्रॉपर आंसर. थोड़ा फनी तरीके से मुझे मैसेज भेज सकते हैं और मुझे बताइए कि जो पिज्जा है वो मिलता तो राउंड में है लेकिन बॉक्स जो है वो स्क्वायर में होता है. व्हाई डू राउंड पिज्जा कम इन स्क्वायर बॉक्सेस? सो यस, इसका जवाब मुझे आप भेज दीजिए 5551. लेट्स सी यार किसका फनी इमेजेस सॉरी फनी रिएक्शन आता है, उस पे मैं यहाँ पे पढ़ूंगा. आप अपने नाम के साथ मुझे भेजिए. सो दैट गोना बी अमेजिंग यार, गोना बी अमेजिंग. सो यस 5551 इज द नंबर.

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Farmers Mega Home Sale is on now with all Sleepyhead beds half price. Super deals on chiropractic bed sets and mattresses from $9.99. And super deals on all Balance Plus Queen bed sets and mattresses. Shop Sleepyhead beds at Farmers. Conditions and exclusions apply.
4: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 4039 और विजिट legalassociates.co.nz।
12: टाइम हो चुका है दिन के ठीक एक।
13: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
14: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 1. Police are relaunching an investigation into a 35-year-old cold case in Auckland. Andrew Marker disappeared in 1991, last seen at the Headhunters gang headquarters in Henderson. Investigators say fresh information has come to light, but it cannot be released due to sensitivity. They hope allegiances have changed and someone will come forward. Kiwis appear to be easing up on jumping the ditch, according to new figures from Stats NZ. Around 9,000 fewer people left New Zealand in the past year. But for New Zealand citizens who did leave, 63% were heading to Australia. Money seized from gang activity is being reinvested into preventing meth and gang-related harm. The government has announced $11.9 million will go to the Resilience to Organised Crime and Communities program, which operates across 7 regions. Barack Obama is speaking out against America's conflict in Iran. President Donald Trump has consistently criticized the 2015 deal struck with the country over its nuclear program. The former U.S. president who signed it told CBS the diplomacy was effective.
15: There's no dispute that it worked. We didn't have to kill a whole bunch of people or shut down the Strait of Hormuz.
14: To sport, veteran Tommy Smith has been named a New Zealand squad for next month's World Cup in North America. He and skipper Chris Wood are the only survivors from the All Whites' last appearance at the tournament 16 years ago. Manager Darren Baisley says it was tough.
16: There's some really good players that are not on that list. Good for us in New Zealand that we've built that depth with players playing in great leagues around the world, and so that's been really difficult.
14: Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup.
13: Sports News. Brought to you by

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। 21 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है और 9 डिग्रीज आज मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज बारिश वैसे नहीं है, लेकिन सनसेट होगा 5:25 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: खेड़ा नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। यस, बात करेंगे थोड़ी देर में आपके लिए लंच टाइम रेंट लाइन में। आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है फॉर यू, बट मे और मे नॉट बी एबल टू चेंज एनीथिंग। सो आप उसके उससे रिलेटेड आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। साथ में इस आर में आपको मैं कोड भी बताने वाला हूँ। अमेजिंग यार, अमेजिंग क्या बात है। और साथ में बॉलीवुड की खबरें और लेटेस्ट खबर ये भी बताऊंगा। तो अभी के लिए तो एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना आला रे आला मिका सिंह सुनिधि चौहान की आवाज में। एंजॉय द सॉन्ग।
0: बचाओ क्या,

0: स्वागत करते हैं लंच बॉक्स शो में फिर से। वेल यस, थैंक यू सो मच, मैसेजेस मिले हैं मुझे, थोड़ी देर में पढ़ूंगा। बट लेट मी रिमाइंड यू, थोड़ी देर में लंच टाइम रेंट लाइन की भी बातें होने वाली है, तो आप बस मुझे जल्दी से मैसेज भेजिए रिगार्डिंग एनीथिंग यू फील सो इरिटेटिंग वाइल मे बी ड्यूरिंग दिस टाइम और मे बी यू नो नॉट ड्यूरिंग द लंच टाइम बट समवेयर एल्स एज वेल, तो आप मुझे भेज सकते हैं टेक्स्ट पे। और अभी के लिए मैं फटाफट से मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैंने एक सवाल किया था कि व्हाई डू राउंड पिज्जास कम इन अ स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्सेस। या सो रोहित भाई कहते हैं, ब्रो आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस राउंड पिज्जा स्क्वायर बॉक्स ट्राइंगल स्लाइस, पिज्जा कंपनी इज जस्ट टेस्टिंग अवर मैथ स्किल। ये सही था, दिस इज व्हाट आई वांटेड। आई नो दैट यू ऑल नो द आंसर बिकॉज सबको पता होगा कि वो स्क्वायर में क्यों आते हैं, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड। आई वांटेड समथिंग यू नो वियर्ड और समथिंग सम फनी मैसेजेस। अंजू कहती हैं, हैमिल्टन से स्क्वायर बॉक्सेस आर चीपर टू मैन्युफैक्चर, ईजियर टू फोल्ड फ्रॉम अ सिंगल शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मोर एफिशिएंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। वेल यस, दैट इज सो ट्रू अंजू, थैंक यू, बट दैट इज काइंड ऑफ अ सीरियस एंड जिसको नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है उसके लिए जवाब था। बट यस, थैंक यू सो मच फॉर मैसेज यार। पूजा कहती है, स्क्वायर बॉक्सेस आर चीपर एंड ईजियर टू मेक बट ऑनेस्टली आई थिंक पिज्जा शॉप जस्ट एंजॉय कन्फ्यूजिंग अस। सही है ये भी। करण कहते हैं, एज अ किड आई थॉट द कॉर्नर ऑफ द बॉक्सेस वर बोनस पिज्जा स्टोरेज स्पेस। रियली, मैं तो नहीं सोचा था ये, बट भेजिए। इसके पीछे हम
1: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहां भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
4: अच्छा तो
3: आए आए बताओगे
1: यार। The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: I'm Sophie, and my partner recently injured his shoulder playing basketball, but he saw a physio, and she gave him a clear plan. She showed him exercises that were right for him, and how to use things around the house instead of weights. And it worked. He recovered in time for the birth of our twins, and he was able to hold them in each arm. It was pretty special.
6: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active during your recovery can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
7: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
8: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colors, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
9: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं, फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।

0: लंच टाइम ट्रेंड लाइन में सेगमेंट में आपका स्वागत है। वेल यस, पहला मैसेज आया है फरजाना का। वो कहती है न्यूलैंड से, हाय केतन, ऑकलैंड वेदर चेंजेस मोर मूड्स देन माय मम ड्यूरिंग वेडिंग सीजन। कोई है यहाँ पे जो काउंटर देना चाहेगा? जी हाँ, तो आप मुझे भेज सकते हैं। बढ़िया केतन। दिनेश भाई कहते हैं एवेंडल से, एवरी जिम इज इन जनवरी फुल ऑफ फ्यूचर क्वाइटर्स। वो तो है लाइक जनवरी में तो हर एक चीज का सीजन निकलता है। इनफैक्ट अभी सैयारा मूवी आई, तो मेरा फ्रेंड गिटार सिखाता है, वो तो बोल रहा भाई इतनी बुकिंग्स आई है। इनफैक्ट उसे बोलना पड़ा कि इस महीने स्लॉट जो है वो ख़त्म हो गया। यूजुअली उसका इतना फुल नहीं रहता है, बट ही इज़ लाइक आफ्टर एवरी कोई ऐसी म्यूजिकल मूवी आती है मेरी दुकान अच्छी चल जाती है। तो बोल रहा था कि ऐसा मैं तो विश करता हूँ बॉलीवुड हर बार ना नए नए म्यूजिकल मूवीज लाते रहे। वेल यस, ऐसा हो तो क्या बात है। रीना कहती है, व्हाई एवरी आइसक्रीम कंटेनर इन हाउस इंडियन हाउस एक्चुअली कंटेन करी। ये कल भी आया था आई गेस, राइट? बट थैंक यू सो मच रीना जी आपके मैसेज के लिए। मीना कहती है, टाकन सेज देयर इज अ सुपरमार्केट ऑन वीकेंड शुड रिक्वायर इमोशनल प्रिपरेशन। क्या मतलब हुआ इसका, मेरे को तो समझ में नहीं आया। मीना जी थोड़ा सा और इलेबरेट करके मुझे मैसेज भेजिए, मुझे थोड़ा नहीं, एक्चुअली पूरी समझ में नहीं आया। यहाँ पे कोई अगर और भी है जिसे समझ में आया तो डू लेट मी नो। शी रोट मीना, सॉरी, देयर इज अ सुपरमार्केट ऑन वीकेंड्स शुड रिक्वायर इमोशनल प्रिपरेशन। यहाँ पे अगर कोई है जो सुपरमार्केट में काम करता है, मे बी दे वुड बी एबल टू क्लेरिफाई दिस। आखिरी मैसेज पढ़ते हैं देव का, फीजी इंडियन नाना स्टिल बिलीव्स विक्स क्योर एब्सोल्युटली एवरीथिंग। ये भी कल था, बट थैंक यू अगेन आप सभी के मैसेजेस के लिए। ऐसे मैसेज आप भेजते रहिए एंड वी वुड लव टू हियर मोर फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। बने रहिए, अभी बॉलीवुड की खबर और साथ में आपके लिए वो कोड भी बताऊंगा थोड़ी देर में।
1: लंच के मंच पे Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेल यस जैसा कि आपको पता है हम फ्लाई वे फ्रेंजी यहाँ पे है जहाँ पे हम आपको मौका देते हैं हमें सुनते रहिए और जैसे ही आपको कोड सुनाई दे तो आप उसे रोआ ऐप पे डाल सकते हैं और रोआ ऐप पे डालेंगे तो आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं बिकॉज वो आपको जितवा के दे सकता है रिटर्न एयर टिकट टू फिजी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास। बट ये जो टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे के बाद कभी भी, 11 बजे के बाद कभी भी, 1 बजे के बाद कभी भी, 5 बजे के बाद कभी भी। तीसरा मैंने क्या बोला? वेल तीसरा था 1 बजे बाद कभी भी, यानी कि एक तो बच चुके हैं, अभी तो 1:30 बज रहे हैं, फिर क्या हुआ भाई? सबर करो, अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। तो यस, जैसे ही आप मेरे जहन से कोड सुनेंगे तो आपके पास ठीक 60 मिनट होंगे, उन 60 मिनट के अंदर अंदर आपको रोआ पे ये कोड डालने हैं रोआ ऐप पे। तब तक आप फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर है तो सुनते रहिए मुझे, मैं आपको थोड़ी देर में आते आपको कोड बताने वाला हूँ। बढ़िया से और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, उनके बारे में बताऊँगा। म्यूजिक स्टेशन भी अगर आप सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, हम रिवाइंड जो कि नंबर वन म्यूजिक स्टेशन, रोआज नंबर वन म्यूजिक स्टेशन, बॉलीवुड गोल्डन एरा, जहाँ पे हम आपको 60 के दशक एंड 70 के दशक के गाने, हिट गाने आपको सुनाते हैं। साथ में नंबर टू म्यूजिक स्टेशन जो कि 80 दशक के एरा के भी गाने हैं जो आप सुन सकते हैं। फीजी वर्जन जो दुनिया का पहला 24/7 चलने वाला स्ट्रीमिंग है उसे भी सुन सकते हैं, फीजी कीर्तन भी सुन सकते हैं, चढ़दी कला जो कि पंजाबी हिट्स हैं, उसके बाद राहत फतेह अली खान के भी हैं, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनके बारे में तो अभी बात नहीं होगी, यू ऑल नो, थोड़ी देर में बात करेंगे उनके बारे में। बट अभी के लिए आप गेट रेडी एंड स्टे ट्यून, क्योंकि जो कोड है वो मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ।
3: Ladies and gentlemen, it's your man Jay Reed.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: करते हैं आपका इस लंच बॉक्स शो में. वेल यस, अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं फटाफट से. 2026 में 10 फुट और सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने गलत न्यूज़ पढ़ ली, सॉरी माफ़ कीजिएगा. यस सो यस, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आ रहे हैं. नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ अगेन. काफ़ी टेंशन वाली बात है जहाँ पे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने गैंग्स और मेथ के खिलाफ एक बड़ा स्टेप अनाउंस किया है. करीब 12 मिलियन डॉलर जो क्रिमिनल से सीज किए गए थे अब एंटी मेथ और गैंग हार्म रिडक्शन प्रोग्राम्स में यूज किए जाएंगे. ये पैसा प्रोसीज ऑफ क्राइम फंड से आ रहा है, यानी कि पुलिस ने जो इलीगल कैश और एसेट्स गैंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से रिकवर किया है वही अब कम्युनिटीज की हेल्प के लिए वापस लगाया जा रहा है. गवर्नमेंट मिनिस्टर निकोल मैकी और केसी कॉस्टेलो ने कहा है कि एम है गैंग्स की रिक्रूटमेंट रोकना, मेथ एडिक्शंस कम करना और यंग पीपल को क्राइम से दूर रखना. इस फंडिंग से काउंसलिंग, जॉब सपोर्ट, पेरेंटिंग प्रोग्राम्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट मिलेगा. ऑफिशियल्स का कहना है कि जब पुलिस गैंग्स पर क्रैकडाउन करती है तो अफेक्टेड कम्युनिटीज को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ये प्रोग्राम वही सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. सो यस, ये कहें तो क्रिमिनल के लिए गया पैसा अब क्रिमिनल से लिया गया पैसा आप कम्युनिटीज को सेफर बनाने में यूज होने वाला है. क्या रिएक्शन है आपका? 5599 इज द नंबर.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: हाँ.

0: भी दें चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स मीडिया दैट वर्क्स.
1: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: Make your budget go further this autumn at Mitre 10. Stride rubber gym tiles, now only $35 each. Plus warm up with 15% off oil-free column heaters. Ends 27th of May, T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
10: The bell has gone, but is the day really over? Between sports meetups, play dates, homework and late shifts, you need to be putting in the right stuff. Packed with calcium, vitamins and protein, grab some Anchor. Real milk, real good.
11: Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
11: इसके पीछे.
13: हम.
11: Lunch के मंच पे.
14: वो हो टाइम आ चुका है आपको बताने का. द कोड आपको पता है क्या है वो कोड? कोड नहीं पता, लेकिन यस द पर्पस, यू नो दैट ये कोड आप अपने रोआई पे डालेंगे तो फट से आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जो आपको मौका दे सकता है एक रिटर्न एयर टिकट जीतने का टू फिजी. वेल यस, द कोड इज वेलकम वेलकम. यस, वेलकम इज द वर्ड. जो कोड है जो आप डालिए अपने फटाफट से रोआ ऐप पे और अपनी ड्रॉ में शामिल होने का मौका और बढ़ाई चांसेस, जहां पे आप जीत सकते हैं 1 एयर टिकट, एयर रिटर्न टिकट टू फिजी. क्या बात है.
11: दिल

0: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेलियस से बहुत सारी बातें करनी है, वैसे ये आर स्पेशल भी है और प्लस मेरा फेवरेट भी है, बिकॉज इस आर में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम प्रमोट करते हैं हमारे लोकल आर्टिस्ट को। सो यस, आप बने रहेगा। पहले तो ये गाना चलेगा, गल मिठी मिठी बोल टॉची रेना, उनकी आवाज में ये गाना सुनिए, बहुत प्यारा गाना यार, मतलब एकदम पार्टी वाइब्स वाला। और सेकंड जो गाना है वो है, आज लोकल आर्टिस्ट का चलने वाला है, बहुत ही अमेजिंग सिंगर हैं और काफ़ी अच्छे गाने भी बनाते हैं। जी हाँ, इन्होंने खुद ने एक्चुअली इंडिया में एज अ पैशन यू नो रेडियो अनाउंसर भी रह चुके हैं, जो उनको अपने पैशन को फॉलो करने को अभी हेल्प करी, जो कि एक सिंगिंग है। सो यस, ही इज ऑकलैंड बेस्ट सिंगर रांझा राजन, उनका गाना चलने वाला है जिंदगी थोड़ी देर में। तो यस, अभी तो आप एंजॉय करिए। सॉरी, आज यस आप एंजॉय करिए शो, और गल मिट्टी मिट्टी से शुरू करते हैं। सेकंड गाना जो है वो जिंदगी, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी देर में।
1: बचाओ क्या,

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Celebrating NZ Music Month.
3: Back your backyard beats.
4: So yes, अभी के जो आज के लेटेस्ट आज के जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो है रांझा राजन, जिनका गाना है जिंदगी जो थोड़ी देर में चलने वाला है. बट यस, आप भी हमें भेज सकते हैं. अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो डेफिनेटली हम आपका गाना चलाएंगे सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर दिन के 2 बजे, 5 बजे और रात की 10 बजे वीकडेज पे. जी हाँ, तो यस, बस @hum.fm.com पे आप भेज सकते हैं. बट यस, आप उन्हें वोट भी करिए. अगर आप वोट करना चाहते हैं रांझा राजन को तो आप MM लिखिए, उनका नाम लिखिए और भेज दीजिए 5599 पे, ताकि उन्हें वोट मिले और उन्हें मौका मिले शॉर्टलिस्ट होने का और आगे जाने का और टॉप 3 में आने का, ताकि वो फीचर्ड हो सके रो ऐप पे.

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम
0: skip your replay.
4: Welcome back. चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अभी की लेटेस्ट खबर। वो है वेलिंगटन में फिल्म लवर्स के लिए एक काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस शुरू होने जा रहा है। एक स्पेशल 360 डिग्री फिल्म फेस्टिवल सिटी में लॉन्च हुआ है, जहां ऑडियंस सिर्फ मूवी देखने नहीं बल्कि उसके अंदर फील भी करेंगे। इस फेस्टिवल में इमर्सिव प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जहां फिल्म्स वॉल्स पर और सीलिंग के अक्रॉस 360 डिग्री फॉर्मेट में दिखाई जाएगी। मतलब व्यूअर्स को ऐसा लगेगा जैसे वो मूवी के सीन का हिस्सा बन चुके हैं। वेल, आई थिंक ये मैंने देखा है कहीं, लाइक यूरोप में या कहीं पे तो हो रहा था ये, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कहाँ पे, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार, अमेजिंग। इस फेस्टिवल में इमर्सिव प्रोजेक्ट क्वालिटी यूज़ की रही, जहाँ फिल्म वॉल्स और सीलिंग के अक्रॉस रखी जाएगी। फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर का कहना है कि ये ट्रेडिशनल सिनेमा एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग है और स्टोरी टेलिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। इसमें लोकल और इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स के एक्सपेरिमेंटल और आर्टिस्टिक फिल्म्स शोकेस की जाएगी। वेलिंगटन, जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड की क्रिएटिव कैपिटल माना जाता है, अब इमर्सिव सिनेमा और डिजिटल आर्ट एक्सपीरियंस का भी मेजर हब बनता नजर आ रहा है। सो यस, फिल्म फैंस के लिए ये सिर्फ मूवी नहीं बल्कि एक कंप्लीट विजुअल जर्नी होने वाली है।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
2: चलिए आईपीएल पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। व्हाट अ मैच यस्टरडे, व्हाट अ मैच यार। यू नो आरसीबी एक्चुअली ऐसे ही प्रूव नहीं कर रही है कि वो भाई ऐसे ही जीत गई लास्ट वाला कप। एक्चुअली दे आर डूइंग सो ग्रेट यार। कल फिर मैच जीत गई है 194 यानी कि 192 रन बना है नाइट राइडर्स ने पहले 20 ओवर में, जिसका जवाब में 194 रन बना दिए हैं आरसीबी ने। सिर्फ और सिर्फ 19.1 यानी कि 5 बॉलें और रह गई थी। केकेआर की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं क्या नाम है भाई अंकृश रघुवंशी, इन्होंने रन बनाया है 71 और उसके बाद रिंकू सिंह ने भी 49 बनाया है। 50 नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, 192 तक तो लेके गए। लेकिन आरसीबी की तरफ से विराट कोहली द बीस्ट द गोट, माय गॉड एक और सेंचुरी मार चुके हैं वो। 105 रन बनाए हैं 60 बॉलों में यानी कि 175 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है कल। यार कौन बोलेगा यार, ये 2008 से खेल रहा है और आज के टाइम में भी लीड कर रहा है बाकी के कंटेस्टेंट्स से। जी हाँ, वेल यस, पॉइंट टेबल की अगर बात करें, अमेजिंग यार, अमेजिंग। मैं तो बिग फैन यार, बिग फैन ऑफ विराट कोहली, और कौन नहीं होगा यार विराट कोहली का फैन। अलग ही बीस्ट है यार ये। आज वैसे पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच मैच आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में होने वाला है, सो इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। पंजाब के लिए तो ये डेफिनेटली हैज़ टू बी विन। मुंबई इंडियंस के लिए हारो जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बिकॉज वो प्ले ऑफ में नहीं जा सकती आगे। बट यस, पॉइंट टेबल्स की अगर बात करें, आरसीबी मेरे को लगता है फिर से टॉप पे आ गई। हाँ जी, टॉप पे आ गई, सिर्फ 4 मैच हारी और 8 जीती है, और उसके साथ ही गुजरात टाइटन दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। बड़ा अमेजिंग यार, अमेजिंग। वैसे आप बने रहिए, मैं एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आने वाला हूँ। एक श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे एलियन माउंटेन भी कहा जाता है। ओरिजिनल नाम क्या है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डू लेट मी नो। बट यस, बहुत ही फैसिनेटिंग है उसकी कहानी। बने रहिए, सुनते रहिए।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम May month is NZ Music Month. ये सिर्फ music नहीं, ये है emotion, passion और थोड़ा सा desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली, हर corner से निकलता है एक नया superstar. आज का local artist, कल का global sensation. तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे? Tune in करो और अपने backyard beats को दो full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: The Specsavers Specstraver Gains are store-wide sale is on now.
3: Phew, bit of a tongue twister, hey?
2: Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200, only for a limited time. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
4: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
5: With a Gem personal loan, you can give your old kitchen a makeover, combine multiple debt repayments into one, or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem personal loans and check your personalised rate in under 2 minutes, with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TCs, fees and other charges apply.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
6: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
0: Iske piche.
7: Hum.
0: Tech Talk.
6: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
0: Iske piche.
7: Hum.
0: Talk.
8: Welcome back. Well, कुछ बात करते हैं. मैं एक जैसे कि आपको बताया थोड़ी देर पहले कि श्रीलंका में ऐसा मैंने एक्चुअली रेडियो ये आज का जो शो है शुरू होने से पहले बताया था कि काफ़ी ऐसे एलियंस जो एक्टिविटीज़ होती है यूएफओ की एक्टिविटीज़ होती है वो होती रहती है और ये इन्होंने कंफर्म भी किया है फाइनली अबाउट अमेरिका फ्रॉम अमेरिका ने उन्होंने अब क्लियर भी किया है एंड एक्चुअली आधे से ज़्यादा आई वुड से 80% ऑफ द फाइल्स वर देयर विच आई फेल्ट कि वो ऑलरेडी ट्रू है और ये मैं तब सोच रहा था जब मेरे पास कुछ ऐसा प्रूफ था नहीं एंड आई वाज थिंकिंग यार हो सकता है वो सचमुच हो एंड फाइनली यूएसए ने खुद ने कंफर्म किया है काफ़ी ऐसी चीज़ कि वो ऑलरेडी ट्रू है और ये मैं तब सोच रहा था जब मेरे पास कुछ ऐसा प्रूफ था नहीं एंड आई वाज थिंकिंग यार हो सकता है वो सचमुच हो एंड फाइनली यूएसए ने खुद ने कंफर्म किया है काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे कि टिक टैक अगर आपने खाया हो टिक टैक होता है वो क्या होता है कुछ होता है चॉकलेट टाइप होती है एक दवाई टाइप दिखती है वैसा बहुत बड़ा यूएफओ टाइप दिखा था वो फट से लाइट स्पीड से भी तेज यू नो एकदम गायब हो गया था तो ये सारी चीज़ें दिखी हैं और कंफर्म भी हुई हैं बट यस उसके अलावा मैंने ये भी पूछा था कि क्यों ये सारी वहीं पे होती है एंड इट्स नॉट हैपनिंग समवेयर ऑन लाइक ओवर इंडिया या फिर कहीं और तो उस पर मेरे को मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है और एक माउंटेन है जिसे कहा जाता है एलियन माउंटेन जो श्रीलंका में है और उसे कहा जाता है उसका एक्चुअल नाम दिया है दानीगला यानी कि अगर आप सर्च करेंगे या तो आप एलियन माउंटेन इन श्रीलंका ये गूगल कर सकते हैं या फिर आप दानीगला भी सर्च कर सकते हैं एक अमेजिंग तरीके से उसको क्रिएट किया है या हो चुका है या ऐसा ही है वी डोंट नो बट देखने तो लगता है कि उसे किसी ने क्रिएट ही किया इंसान के बस की तो है नहीं तो शायद डेफिनेटली या तो सुपर पावर यूज़ होगी या फिर कोई ऐसी मशीन यूज़ होगी जो सचमुच आज के टाइम पे तो आई डोंट नो इफ दैट इज़ देयर और नॉट बट यस जो पोलोनारुआ डिस्ट्रिक्ट में है और ये जगह लोकल यूएफओ साइटिंग्स एलियन थियोरीज और एंशियन किंग रावणा की मिथ्स के लिए पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता पड़ जाएगा वेल यस एक शेप जो है वो तो यूनिक ही है बिकॉज ये पहाड़ ऊपर से एकदम गोल है हॉर्स शू जैसे दिखता है जैसे जिसे देखकर लगता है कि ये कोई आर्टिफिशियल लैंडिंग पैड हो सकता है यानी कि ऐसा होगा या फिर यहाँ पे कोई चीज़ लैंडिंग होती होगी फिर एलियन कनेक्शन के बारे में अगर बात करूँ तो लोकल्स और हाइकर्स का मानना है कि यहाँ रात को अजीब चमकती हुई लाइट्स दिखती है हमेशा नहीं बट कभी कभी मोस्टली उनको दिख ही जाती है हिस्टोरिकल कनेक्शन की अगर बात करें तो पुराने कहानियों के मुताबिक ये राजा रावणा का स्टार गेट हुआ करता था, यानी कि हम सिर्फ जानते हैं कि वो एक पुष्पक विमान पे ट्रैवल किया करते थे, बट वी हैव नो आइडिया कि उनकी पावर जो थी वो बियॉन्ड दैट थी, वो उसी विमान को लेके ही यूज्ड टू ट्रैवल इन डिफरेंट गैलेक्सीज, ऐसा कहा जा रहा है, एंड यू नो अलग अलग चीज़ों पे ट्रैवल किया करते थे। स्पिरिचुअल प्लेस की अगर बात करें तो पुराने ज़माने में यानी कि 2nd century BCE में यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क ध्यान करते थे। ये इसलिए पता चला है क्योंकि उस पहाड़ के नीचे बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, और ये भी कहा जाता है कि वो ये जो एरिया है ये गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया था, जिसके कनेक्शन कहे यू नो आज भी मिलते हैं। सबसे खास बात पता है क्या है, पहाड़ की चित्रलेखा केव के अंदर एक बहुत ही बड़ा 25x16 फुट का रॉक पैनल मिला है। इसमें पत्थरों के जो यू नो कटिंग हुई है वो ऐसी हुई है जैसे कि आज के टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल है, जो यू नो आप देख सकते हैं फोटोज़ में अगर आप गूगल करेंगे तो। और इको एस्ट्रोनॉमी श्रीलंका के रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि साउथ एशिया में पहली बार बाइंड र्यून्स जैसे सिंबल्स मिले हैं। ये कोडिंग डिज़ाइन शामैनिक कल्चर और जियोमेट्रिक पैटर्न से मिलते जुलते हैं, जो किसी पुराने ख्याली साइंस या स्क्रिप्ट की तरह लगते हैं। एंड इनफैक्ट वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें भी है जो डिज़ाइन बताती है अबाउट UFOs एंड डिफरेंट डिज़ाइन, जो आज के टाइम पर तो खुद साइंटिस्ट के पास भी जवाब नहीं है। बट व्हेनेवर यू गेट टाइम इन द इवनिंग और आफ्टर द शो, try to search this alien mountain, Danagula, Danigala, Sri Lanka mein hai ye.

0: Sevin ama ascunjeti. Throwback.
1: And that's all for today, guys. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और एक गाने. गाने तो हम चलाते ही हैं, बॉलीवुड के सबसे बड़े बिगेस्ट हिट्स. जी हाँ, वैसे इस कारवां को कंटिन्यू रखिए, आप कहीं मत जाइए. स्टिल डू वॉट यू आर डूइंग, बट स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग टू अवर शो. शो को तो चलो हम मैं टाटे करता हूँ, मैं कल मिलूंगा आपको सेम टाइम. बट यस, कॉफी ब्रेक के लिए आप स्टैंडी का इंतजार करिए, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे. एंड यस, उन्हें भी बढ़िया तरीके से आप स्वागत करिए बाय सेंडिंग सम मैसेजेस एंड ग्रीटिंग्स. बट चलिए मैं निकलता हूँ और आखिरी मैसेज पढ़ लेता हूँ. एक मैसेज आया एक्चुअली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू रवि नायडू. उन्होंने 65th बॉर्न डे. वाओ, दैट इज सो कूल. हैप्पी बर्थडे रवि जी, आपका जन्मदिन बहुत बढ़िया रहे आज का. सो कंग्रेचुलेशन एंड स्टे ट्यून एंड कीप ऑलवेज अ स्माइल. सो यस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं. 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
4: कर रहा है. बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
3: मेरे को समझ भी नहीं. एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है. एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen. Dinner made deliciously easy.
7: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
8: Schools use fibre to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
9: Global fuel prices are impacting Kiwis, so these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
0: Hum. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. New information has come to light over a decades-old Auckland cold case. For nearly 35 years, Andrew Marker's family have been looking for answers after he disappeared from a headhunter's gang pad in Henderson. Detective Inspector Callum McNeill says there has been a development.
11: It's enough to pique our interest and to have a team of investigators look at the file again.
10: $15.5 million is being injected into children's palliative care as part of the budget. And Health Minister Simeon Brown says one training position will be open to an additional specialist each year to help build up a local workforce.
12: Because we want New Zealand-based clinicians providing that care to New Zealanders up and down our country.
10: The government and Western Bay of Plenty have struck a deal to unlock future growth in the region. The partnership is part of the City and Regional Deals Program to prioritise infrastructure investment and economic growth. The number of people diagnosed with HIV in New Zealand keeps falling, but non-Europeans are overrepresented. Latest Otago Uni figures show 80 people were first diagnosed with the virus here last year. Of them, 29% were Asian, 25% Māori and 14% Pacific peoples. To sport, Premier League star Chris Wood headlines the 26-strong all-whites team for next month's FIFA World Cup. New Zealand coach Darren Baisley has had to defend the selection of experienced Tommy Smith in the squad.
13: You know, he's not staff, he's a player. You know, he's a very good player.
10: And Australia is back in the America's Cup. Sydney's Royal Prince Edward Yacht Club has signalled its intention to challenge for the first time in 25 years.
5: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17.1 डिग्री से आज को ओवरनाइट 7 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का सनी ब्राइट ब्यूटीफुल डे. सनसेट आज का 5:25 पर.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
14: 3:03 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी। और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में, और 4 बजे के बाद यहाँ पे मेरा साथ रुजबे के साथ हो जाएगा इन द ड्राइव शो। सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट इज ऑलमोस्ट फ्राइडे, देखा जाए तो थर्सडे आ चुका है। सो बृहस्पतिवार, अब तक का हफ्ता आपका कैसा गया है? एंड अगर खास अच्छा नहीं किया है तो बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते हैं, या फिर अगर आपको वेंट आउट कभी करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। लंच बॉक्स में भी मैंने सुना है कि काफ़ी लोग रेंट अपना लेके आते हैं विद केतन, बिकॉज केतन ने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जहाँ पे वो रेंट लाइन ओपन अप करता है। यू कैन ऑलवेज रेंट अबाउट योर थिंग्स, कुछ भी आपको सही नहीं लग रहा है। हमारे पास बहुत कुछ होता है कंप्लेन करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत कम चीज़ें होती है, लेकिन कंप्लेन करने के लिए ऑलवेज लिस्ट रेडी होती है। मतलब आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आज आप किसी को भी पूछ लो कि क्या सही नहीं जा रहा है, वो आपके पास ना लिस्ट लेके आ जाएगा वो पर्सन कि ये सब सही नहीं जा रहा है। एंड वर्सेस अगर आप उसे पूछोगे क्या सही जा रहा है, तो उनको बहुत सोचना पड़ेगा। हमारा माइंड थोड़ा नेगेटिव वाइज होता है, जिसकी वजह से जो नहीं सही जा रहा है वो ज़्यादा याद रहता है। एनीवे, हो गया आज का ज्ञान, शुरू करते हैं इस आवर की एंड सुनिधि चौहान की आवाज़ से।

3:08 हो चुके हैं एंड कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. इट इज 14th में. वैसे जो आज का डे है, आज गिरमिट दिवस भी है. 14th में जो है ये गिरमिट डे की जो रिमेम्बरेंस है, जो अवेयरनेस है, इसके लिए भी मनाया जाता है. एंड ऐसे मौके पे वैसे ये जो गाना है लिखा है हमारे ब्रेकफास्ट शो के होस्ट विजय वर्मा ने, हमारे कंटेंट डायरेक्टर ने, तो ये गाना आपके लिए यहाँ पे ज़रूर प्ले कर रही हूँ. एक वीडियो भी उन्होंने अपनी कुछ प्लेलिस्ट की पोस्ट की है जो कि हम के सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी. अगर इस गाने की वीडियो आप चाहते हैं, यू कैन गो एंड चेक द वीडियो ओवर देयर. एंड बात करते हैं तो वैसे गिरमिट रिमेम्बरेंस डे जो है ये सैटरडे 16 मई को ये एक इवनिंग इसकी रहने वाली है रिमेम्बरेंस की, मलायोला कम्युनिटी सेंटर में, जहाँ पे एंट्री एकदम फ्री रहती है. तो वेल हम भी वहाँ पे रहने वाले, तो आप भी वहाँ पे ज़रूर पहुँचेगा. सो मलायोला कम्युनिटी सेंटर बहुत ही बढ़िया पार्किंग भी है वहाँ पे, इनफ पार्किंग है वहाँ पे. 4:30 से लेके 16 मई को, दिस सैटरडे 4:30 से लेके 8:30 तक वहाँ पे ये रहेगा इवेंट, जहाँ पे डोर ओपन हो जाएंगे एट 4 PM. नेटवर्किंग आप कहाँ पे कर सकते हैं. टी एंड स्नैक्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे शार्प 4:30 PM. फ्री एंट्री है वहाँ पे. कुछ सीनियर्स को रिकॉग्निशन का अवार्ड भी दिया जाएगा. कल्चर परफॉर्मेंसेस रहेंगी, लाइव सिंगिंग, रोल प्ले, क्विज, स्पॉट प्राइजेस, स्पीचेस और बहुत कुछ. वैसे हमारे क्रिश वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, सो यू गोना मीट हिम एज वेल. सो वहाँ पे आप अगर पहुँचते हैं तो ऑफकोर्स आपसे मुलाकात भी होगी. सो गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, रिमेम्बर ये इसी शनिवार को मलायोला कम्युनिटी सेंटर में होने वाला है 4:30 PM onwards.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: At Bunnings, we've got a wide range of rugs to make your home cozier this winter. From plush rugs to hard-wearing styles for busy areas and fun designs to brighten the kids' rooms. We make cozy easy this winter. Lowest prices are just the beginning.
2: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
4: क्यों? क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. दैट्स 0800 564 424.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations, like LA and San Francisco from just $939 one way. Or fly to Vancouver from only $999 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
8: हाँ. अच्छा
7: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
8: मिसेस सिंह.
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
10: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है? ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार. क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.

3:17 हो चुके हैं एंड किड्स की न्यूज, बच्चों की न्यूज के बारे में बातें करते हैं तो हम अपने ऑकलैंड के बारे में ही बात करते हैं, हेस्टिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो कि न्यूज इस समय पर आप हर जगह पे देख रहे हैं। ये वीडियो आपने हम के सोशल मीडिया पर भी देखी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट अमनजोत सिंह। सो हेस्टिंग्स के बॉयज के हाई स्कूल का हेड बॉय है अमनजोत सिंह, जिसने अभी रिसेंटली अवार्ड जीते हैं। नेशनल रेस यूनिटी स्पीच अवार्ड इसने जीते, 3 अवार्ड्स एक्चुअली में टोटल जीते।

0: हम कई बार करते हैं कि कोई बात सुनते हैं, अगर पसंद नहीं है तो हम खुद ही वकील बन जाते हैं, आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं। एंड जहाँ पे इसने बोला कि कई बार हर एक साइड सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, ही सेड कि ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट द स्पीच जब इसने हॉक्स बे में एक्चुअली में उसने वहाँ पे रेसिज्म एक्सपीरियंस किया था। एंड उसके बाद उसको सेल्फ डिस्कवरी हुई, जिसके बाद उसने खुद के ऊपर एंड बाकियों को रेदर देन पिन पॉइंटिंग उनको एजुकेट करने का काम किया। सो लेकिन ये बहुत देर बाद उसमें आया, बहुत देर बाद उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई। सो स्पीच अगर आपको फुल देखनी है तो मैंने हम के सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, एंड इनफैक्ट हमारा जो ड्राइव का अनफिल्टर्ड क्रू ग्रुप है वहाँ पे भी मैंने पोस्ट की है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा बिट मैं आपको यहाँ पे सुना सकती हूँ।
1: When I was a kid, my brown skin and my turban were often the first things people saw. Before my voice, before my name. Sometimes those first impressions turned into words, words that reached me only to remind me that I was different. And when that happened, I would go quiet. And sometimes, somewhere inside myself, I still wonder, why didn't I stand up to racism? Why didn't I free myself from the shackles on my skin, rid myself of this burden I was born with, the burden of my color? But some days, I didn't have it in me to fight. Some days, I'd rather just be a human than a hero. So as a kid, I learned to turn these closed hands into promises, swallow these fists of anger back into the silence from which they were born, and from that silence, I chose to use love as my weapon. My father taught me about love. He came to New Zealand carrying in a suitcase a history, a culture, and a desire for a better life. When he arrived, he met stares, silence, and even words that tried to make him smaller. But he never let them. And when I'll tell my father at school, hands reach out and disrespectful curiosity to touch my turban, he would remind me, son, they can put a hand on your history, but they can never touch your soul.
0: Well, एक 13-year-old ने जो यहाँ पे बातें की है, it is actually amazing. So ज़रूर जाके सुनेगा, सोशल मीडिया पे जाके आप चेक कर सकते हैं, and worth 3 awards, I will say.
2: Bollywood's most wanted.
3: Gundi ghad gao, ya seedha andar aao.
4: Main laun apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हाफ पास थ्री हो चुके हैं ऑन हम 104.2 FM एंड रोवा के जरिए भी आप हमें यहाँ पे सुन सकते हैं. रोवा के जरिए जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ जीतने का मौका भी आपको मिलता है, जैसे कि फिलहाल चर्डल गेम है वहाँ पे जो आप खेल सकते हैं एंड आप जी सकते हैं $100 एवरी डे. कुछ फ्रेज है, वर्ड्स है जो आपको गेस करने हैं. सही गेस करते हैं तो आप $100 जीतने के करीब पहुँच जाते हैं. एंड ऑल्सो इसी के साथ साथ फ्लाई वे फ्रेंजी एक कॉम्पिटिशन है रोवा ऐप पे, जहाँ पे आप 1 रिटर्न एयर टिकट टू फीजी जीत सकते हैं. इसके लिए आपको करना क्या है, आज 5 बजे के बाद एक हम स्पेशल कोड देने वाले हैं. ये स्पेशल कोड आपको रोवा पे जाके फ्लाई वे फ्रेंजी के पोस्ट पे क्लिक करके एंटर करना है. जब आपको कोड दिया जाता है उस समय पर आपके पास 1 आवर का समय होता है एंटर करने के लिए एंड यू आर इन द ड्रॉ टू विन अ रिटर्न एयर टिकट टू फीजी. अगर आपको लिंक चाहिए कि कहाँ पे जाके एंटर करना है तो डबल एफ लिख के भेजिए 5599 पर, FF लिख के भेजिए 5599 पर, आपको जो लिंक है ये मिल जाएगा बहुत ही जल्दी. एक्चुअली वे ऑलमोस्ट लेस देन अ मंथ एक्चुअली में रह चुका है फीफा वर्ल्ड कप को शुरू होने में एंड ऐसे में ऑल वाइट्स की टीम जो है ये भी अनाउंस हो चुकी है. ऑल वाइट्स के जो कोच है डैरन, इन्होंने अनाउंस किया है स्क्वाड को जो कि नॉर्थ अमेरिका में जाने वाली है. न्यूजीलैंड इन 16 ईयर्स अपना पहला वर्ल्ड कप इस बार खेलने वाला है. सो लेट्स सी, रेगुलर फेसेस रहेंगे जिसमें क्रिस वुड जो है ही विल कैप्टन द साइड एंड बाकी जो प्लेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट सारे सिमिलर सेम प्लेयर्स ही, मोस्ट ऑफ जो प्लेयर्स हैं सेम ही रहने वाले हैं. लेकिन फीफा वर्ल्ड कप जो है इस बार 104 मैचेस होने वाले हैं अक्रॉस 16 होस्ट सिटीज. सो 11 जून से शुरू हो जाएगा मेक्सिको सिटी में, उसके बाद जो फाइनल है ये 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी स्टेडियम में होने वाला है.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना।
2: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
1: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो तो याद रखिए प्लास्टिक बैग ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए रिसाइकल सही करें ये आपके हाथ में है सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइक्लेबल आइटम्स टामाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ऑकलैंड

3:38 एट द मोमेंट हो चुके हैं, 22 मिनट बाकी है 4 बजने में. 4 बजे के बाद यहाँ पे ड्राइव शो शुरू हो जाएगा. ट्रेल्स के बारे में बातें करते हैं. वॉकिंग के लिए आपको कहीं पे जाना है, हाइकिंग के लिए आपको कहीं पे जाना है. वैसे एक बुश एंड वाटरफॉल ट्रेल है जो आप कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है. इसका नाम है कौरी ग्लेन रिजर्व इसका नाम है. ये नेटिव फॉरेस्ट पार्क है, नॉर्थ कोर्ट में ये है. सो नॉर्थ शोर के ऑकलैंड के नॉर्थ शोर में बहुत ही इमर्सिव बुश एक्सपीरियंस आप वहाँ पे ले सकते हैं. सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है. सो जो कौरी ट्रीज है इसके अराउंड बहुत ज़्यादा है. सेवरल सेंचुरीज ओल्ड एक्चुअली में ये ट्रीज़ हैं. यू नो, मुझे यहाँ पे ट्रेल्स में एक बहुत अच्छी बात लगती है कि इन्होंने बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगाए होते हैं, एंड नॉट जस्ट डायरेक्शन के साइन बोर्ड, वो कम होते हैं. बाकी साइन बोर्ड ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होती है या फिर आसपास के प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. वो बहुत जगह पे होता है, वो बहुत जगह पे लिखा होता है. हाँ, डायरेक्शन के साइन बोर्ड थोड़े कम होते हैं बाय द वे. सो इसलिए जब आप ऐसे ट्रेल्स कहीं पे यहाँ पे जाते हैं ना, मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द रूट. आप रूट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके कि कहाँ से जाना है, कहाँ पर निकलना है, फिर आप निकलिएगा. ये जो रिज़र्व की बात कर रही हूँ, ग्लेन रिज़र्व, ये एक्चुअली में नेटिव फॉरेस्ट है जहाँ पे डिफरेंट जो ट्रीज है, बुशेज है, ये सब कुछ भी वहाँ पे होता है. इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑकलैंड काउंसिल्स अर्बन एकोलॉजिकल नेटवर्क. सो जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है उनको प्रिजर्व भी करके रखी है. वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज है जो कि 300 या 400 साल पुराने हैं, लाइक सेंचुरीज ओल्ड ट्री है एक्चुअली वहाँ पे. सो इट्स क्वाइट रेटेड हाई, एंड एसेसिबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा ईजी है. वॉकर्स, फैमिलीज, फोटोग्राफर्स सब वहाँ पे जा सकते हैं. सो कम्पैक्ट ट्रैक सिस्टम है, रफली 2-3 किलोमीटर्स इन टोटल. सो शॉर्ट वॉक के लिए या एजुकेशनल आउटिंग के लिए, कई बार बच्चों को प्लांट ट्री में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना, तो उनको भी ऐसी वॉक के लिए आप लेके जा सकते हैं. बच्चों के लिए टोटली ओके वॉक है. स्ट्रीट पार्किंग भी अवेलेबल है, एंड ऑफकोर्स द पार्क इज़ फ्री टू एंटर. सो आप वहाँ पे ज़रूर पहुँच सकते हैं. सो नॉर्थ कोर्ट में ये एक्चुअली में लोकेटेड है, कौरी ग्लेन रिजर्व. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्शंस मिलेगी. ट्रेल चेक. लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. वैसे किरण का मैसेज आया है. किरण ने बताया है कि हैव यू ट्राइड क्लेवर्डन स्टेयरवेज टू हेवन, वेरी नाइस एंड इंटेंस. मैंने लिस्ट में लिख लिया है किरण. सो यू नो, अभी मैं लिस्ट बना रही हूँ. तो जब भी वेदर अच्छा होगा, और ये वीकेंड पे तो वेदर बहुत अच्छा रहने वाला है, दिस इज़ अ परफेक्ट फॉर हाइकिंग. मेरे पास एक जूते लेने वाले हैं प्रॉपर, तो वो मुझे ख़रीदने हैं, उसके बाद जाने वाली हूँ. सो किरण ने बताई है एक और वॉक, क्लेवर्डन स्टेयरवेज टू हेवन. शी सेड वेरी नाइस एंड इंटेंस. I will definitely check it out.

स्टेटस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: गुड आफ्टरनून. वेदर का हाल आज काफी कमाल. ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी. साउथ ईस्ट स्टिल इज डाइंग आउट इन द इवनिंग. 5:25 को होगा आज सनसेट. ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 7 डिग्रीज टुनाइट. वन लेयर ऑफ क्लोथिंग राइट नाउ इज रिकमेंडेड. कल का दिन भी बढ़िया रहेगा.
0: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी,
2: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
3: ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मनको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप द होम of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
4: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge. Ow!
1: 4:02. Good afternoon. On the 14th of May, you are listening to The Drive Show with Sandy and Rizbe. Hi, Sandy. Good afternoon.
5: Good afternoon, Rizbe. How are you?
1: I'm great, Sandy. Doing so much better. How are you doing?
5: I'm good. Not bad. By the way, आज गिरमिट रिमेम्बरेंस डे भी है.
1: आज है गिरमिट रिमेम्बरेंस डे.
5: आज है गिरमिट दिवस. 14th May.
1: That's right. Happy गिरमिट रिमेम्बरेंस डे. उन सभी लोगों को आज हम याद करते हैं जिन्होंने 147 years. पहले जो फीजी गए थे. आज वो दिन है ना.
5: आज वो दिन है. एंड वेल, इसकी हिस्ट्री तो इसके बारे में हमने कई बार बात की है. गिरमिट नाम क्यों है इसके बारे में भी हमने बात की है. मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि गिरमिट नाम क्यों होता है. पर व्हाट इज एग्जैक्टली द गिरमिट.
1: अग्रीमेंट अग्रीमेंट के लिए जगह पे वो गिरमिट हो गया था
5: क्योंकि एग्रीमेंट सही से नहीं बोला गया. गिरमिट बोला तो वो गिरमिट ही नाम हो गया. तो गिरमिटियाज ऐसा बोलते थे. बट इसके रिगार्डिंग हमने वैसे एक पॉडकास्ट भी रिमेंबर हमने रिकॉर्ड किया था कृष्ण नायडू के साथ. हमने रिकॉर्ड किया था जहाँ पे हमने काफ़ी बातें की थी इन डिटेल अबाउट गिरमिट दिवस. हिस्ट्री के बारे में हमने बातें की थी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट.
1: इफ यू वांट टू चेक आउट द पॉडकास्ट, हम लोग हमारे जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप अनफिल्टर्ड क्रू, उस पर हम लिंक पोस्ट करने वाले हैं शॉर्टली. तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं द लिंक फॉर द पॉडकास्ट जो हमने कृष्ण नायडू के साथ बात की थी अबाउट गिरमिट. आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे. इट इज थर्सडे
5: ऑलमोस्ट फ्राइडे एंड बहुत सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं. वैसे गिरमिट रिमेम्बरेंस डे जो है मलायोला कम्युनिटी सेंटर में होने वाला है ऑन सैटरडे 16th में और वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी.
1: हाँ, वहाँ पे सैंडी पहुँचने वाली है.
5: क्रिश इज नॉट क्रिश नायडू, अपना क्रिश जो है इधर का हम एफएम का जो क्रेश है जो आजकल नाइट कैफे कर रहा है वो वहाँ पे होस्ट कर रहा है उस दिन.
1: वो होस्ट कर रहा है वहाँ पे. यस, तो वहाँ पे जरूर पहुँचिएगा आप फॉर अंडरस्टैंडिंग क्या है ये गिरमिट रिमेम्बरेंस डे. सो इफ यू वांट टू नो मोर रीच फॉर द इवेंट.

0: बाकी सब फर्स्ट क्लास है. यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. ड्राइव शो आपके लिए जारी है अभी, और यहाँ पे हम आपके साथ जो देश विदेश में हो रहा है इसकी बातें भी शेयर करते हैं.
1: या कीवी रेल को फाइन हुआ है नियरली $300,000 आफ्टर टू वर्कर्स रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक्स.
0: बाप रे, वर्कर्स को लगा इलेक्ट्रिक शॉक्स.
1: या सो उनको फाइन हुआ है इन ऑर्डर टू पे मोर देन $40,000 इन यू नो वर्कर्स को एक्चुअली में जिनको इलेक्ट्रिक शॉक मिला है वाइल वर्किंग ऑन ओवरहेड ट्रेन लाइंस. सो पेयर ऑफ मेंटेनेंस वर्कर्स दे वर वर्किंग ऑन लाइंस नियर द पांडल ट्रेन स्टेशन इन ऑकलैंड, एंड ये हुआ था September 2024 में. सो उस समय पर उनको सीरियस इंजरीज हुई.
0: या ऑफ कोर्स. या
1: वन ऑफ द वर्कर्स विल बी पेड $36,000 फॉर द इमोशनल हार्म व्हाइल द अदर विल रिसीव $6,000.
0: ओह, तो एक को बहुत ज्यादा मार लगी है.
1: या अकॉर्डिंगली रहा होगा. सो या कीवी रेल को लाइक $300,000 फाइन हुआ है मैन.
0: ये चीज मुझे थोड़ी सी खटकती है काफी बार, क्योंकि ये जो फाइन लग रहा है इससे बेटर है तुम ये करो कि जो आगे के ट्रेन जर्नीज है अगले 6 महीने के वो 50% रेट पे जाएंगे. ये फाइन का क्या है यार.
1: Yeah,
0: like something that can benefit us.
1: ये फाइन के चक्कर में कहीं वो उसका वो ना बढ़ा दे,
0: रेट ना बढ़ा दे.
1: वैसे की भी रेल नॉट ट्रांसपोर्ट बढ़िया.
0: हाँ, बट हाँ जो भी है एट द एंड हमारे पास नहीं आना चाहिए कोई एक्सपेंस.
1: या ये घूम के नहीं आना चाहिए और तो कुछ नहीं है.
0: हाँ, घूम के ना तो अपने को इलाफा पड़ेगा. ये लो फाइन ना, ये ले फाइन फाइन.
1: एनीवेज दिस वाज क्वाइट अ बिग. मैंने इतना बड़ा फाइन किसी को अभी रिसेंटली मैंने सुना नहीं था. मतलब बैंक्स का रिसेंट सुना था मैंने, मतलब दैट वाज अनदर लेवल का.
0: हां, एक्सक्यूज मी, बैंक्स का ऐसा इतना चिंदी फाइन नहीं आता है बैंक को.
1: बैंक का तो खैर मिलियंस में आता है. एंड वो भी क्या आया था, कुछ तो आर्टिकल आया था ना कि कुछ हुआ है. हाँ, कुछ हुआ था बैंक को लगा था.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
5: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary राहत फतेह अली खान live in concert along with शाहजमान अली खान Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6077.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 80।
9: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
10: The Drive Show with Sandy and Rusby. Amisha.

0: मीका सिंह, अजीज कौर, यू आर लिस्निंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए ये बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड में गाना हम प्ले कर रहे थे, व्याह करवा दो जी.
1: मीका सिंह की आवाज़ में सुरत है. मीका सिंह इज बैक, मतलब कि ऐसा नहीं कि गायब हुए थे, बट उनके ऐसे ट्रेंडिंग गाने अभी नहीं जा रहे थे.
0: ये गाना, ये मूवी आ गई है जवानी तो इश्क होना है,
1: अभी नहीं आई है.
0: इसका गाना आ गया ये.
1: या
0: भाई, तो मतलब इसका वीडियो भी आया रहेगा.
1: हाँ, उस पे.
0: तो इसमें वरुण धवन है मतलब.
1: या
0: अच्छा.
1: क्या हुआ?
0: No wonder वरुण धवन समय रैना के साथ दिखा मेरे को, वो कोई गाना प्रमोट करने के टाइम पे.
1: वो वाला कर रहा था. ओ वाओ.
0: हाँ, ओ वाओ. वो गाना कहाँ पे?
1: वो भी बचता है यहाँ पे.
0: बचता है वो भी?
1: नहीं हो.
0: Oh no.
1: I think next hour में या इस hour में बजा है पहला गाना, या next hour में है पहला गाना, कुछ तो ऐसा था.
0: अच्छा.
1: या anyway, आज इतने दिनों से रुस्बे ये गाना सुन रहा है और आज
0: पता चला. Seriously, my God, did you guys know that Varun Dhawan is back with this another trending गाना? हर उसके गाने पॉपुलर हो जाते हैं यार,
1: क्योंकि डांस नंबर्स होते हैं ना. और वो डांस बहुत अच्छा करते हैं, उसके वीडियो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाने
0: डांस नंबर्स का इमरान हाशमी है वो.
1: या
0: मूवी पहले चले ना चले गाने चलते हैं,
1: गाने उसके 100% चल जाते हैं. बट या सो है जवानी तो इश्क होना है, ये आने वाली है मूवी
0: जिसमें मृणाल ठाकुर रहने वाली है अलॉन्ग विद वरुण धवन. दैट्स नाइस. मृणाल ठाकुर अच्छी लगती है मुझे. दो दीवाने शहर में अभी मृणाल ठाकुर ही है ना उसमें.
1: yes.
0: भी दैट्स राइट. ओके,
1: अभी तक देखी है वो मूवी?
0: आधी आधी आधी बाकी है.
1: आधी तो बहुत टाइम पहले देखी थी तुमने.
0: नॉट गॉट अ चांस टू कंप्लीट इट.
1: ओके कूल.
0: अभी चार्टबस्टर्स में गाना आपको सुनाएंगे और फिर उसके बाद आज

0: वैसे आज है क्या? आज है ये ड्राइव थ्रू कन्फेशंस। आज 5 बजे के बाद ड्राइव थ्रू कन्फेशंस में आप, अगर आपको कोई चीज़ है आपकी कन्फेस करने वाली, ऐसी कोई चीज़ है जो आप कन्फेस करना चाहो अनोनिमस रहकर या आपका नाम कहकर या जो भी है, तो 5599 इज़ द नंबर वेर यू कैन मैसेज अस, या फिर यू कैन गिव अस अ कॉल ऑफ एयर 0800-004-866। वी विल मेक श्योर कि हम आपकी आइडेंटिटी को हाइड करें, अगर आपको चाहिए हम हाइड करें तो।
1: या फिर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अनफिल्टर्ड क्रू, वहाँ पर जाके आपकी आइडेंटिटी वैसे हाइड हो सकते हैं बिकॉज वहाँ पे आप एनोनिमस रह के पोस्ट कर सकते हैं।
0: तो गिव अस योर कन्फेशंस।
1: या
0: करूँ? हाँ, थोड़ा तो हॉल बना दे।

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे एक से गाने भी लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी ले आते हैं।
1: वैसे फ्लाई वी फ्रेंजी का कोड आज आपके लिए हम 5 बजे के बाद शेयर करने वाले हैं, सुनते रहेगा। दिस इज अ सेकंड लास्ट डे फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड। अगर आप सही टाइम पे एंटर कर देते हैं रोवा ऐप पे जाके, तो आप जी सकते हैं रिटर्न एयर टिकट टू फिजी। सो अभी तक कितने लोगों ने कोड एंटर किया है? आपने एवरीडे एंटर किया है? कोई है जिसने एवरीडे एंटर किया है यहाँ पे कोड?
0: हर दिन का कोड अगर किसी ने यहाँ पे डाला है, हमको अभी के अभी कॉल कीजिए, मे बी योर चांसेस विल इंक्रीज।
1: इसकी बातों पे मत आओ यार।
0: लेकिन आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं आज। लेकिन सैंडी, मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेंड मेकर्स में, आप आज क्या लेकर आने वाले हो? बिकॉज ट्रेंड मेकर्स में 6 से 7 अगर आप मिस करते हो, 6 से 7 बजे के बीच हम आपके लिए ना कोई थीम लेकर आते हैं। एक पर्टिकुलर थीम, एक पर्टिकुलर जॉनर, एक पर्टिकुलर पर्सन को शाउट आउट। तो आज क्या करने वाले सैंडी?
1: सो आज क्या होने वाला है ना गाइस, क्या हो रहा है कि बैक टू बैक कुछ बर्थडेज आने वाले हैं सेलिब्रिटीज के। जैसे कि कल तो हमारी माधुरी दीक्षित का बर्थडे है। वो सबकी माधुरी दीक्षित है।
0: आप देख रहे हो सारे जो टैलेंटेड करिश्मेटिक लोग है वो टोरियंस है।
1: में है तुम्हें कहने का मतलब है वो लोग
0: टोरियन नहीं होता है।
1: हाँ, मे मंथ में काफी टैलेंटेड लोग है।
0: मे नहीं, अप्रैल में सचिन तेंदुलकर है, वरुण धवन है।
1: कल माधुरी दीक्षित का बर्थडे है एंड परसों जो कि सैटरडे है, सैटरडे को विकी कौशल। अब विकी कौशल का सैटरडे को तो हम ट्रेंड मेकर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम विकी कौशल का आज ट्रेंड मेकर करने वाले हैं। विकी कौशल के फैंस के लिए आज एक स्पेशल आवर रहने वाला है बिटवीन 6 to 7।
0: सो यस, ऑल विकी कौशल के टॉप सॉन्ग्स आपको हम आज सुनाने वाले हैं।
1: थोड़ा हिंट देना चाहोगे तुम कैसे गाने होंगे?
0: हाँ, हिंट देता हूँ ना मैं, क्योंकि एक जो गाना है लाइक फॉर एग्जांपल, ये तो मुझे लगता है बजना ही चाहिए। फॉर इंस्टेंस दिस वन,
1: सिग्नेचर डांस है विकी कौशल का एंड उससे काफी लोग तो वो डांस के फैन हो गए थे।
0: और कौन से गाने हैं विकी कौशल के?
1: काफी गाने हैं रुजबे। सो उनकी मूवीज के बारे में बात करेंगे, विकी कौशल के बारे में बात करेंगे, दिस एंड एवरीथिंग।
0: आप भी बताइए कौन सा विकी कौशल का ऐसा गाना है जो आपका फेवरेट गाना है,
1: लेकिन भेजिए अभी।
0: मेरे मन में और कोई गाना आ रहा ही नहीं विकी कौशल का यार।
1: क्या बात कर रहे हो, विकी कौशल इज मोर अबाउट एक्टिंग। उसकी पता है बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिसमें एक्टिंग क्लास है लेकिन गाना इतना पॉपुलर नहीं हुआ।
0: एक गाना बहुत बढ़िया है उसका, जो एक रिक्रिएटेड ही गाना है फ्रॉम उसकी वो मूवी, मुझे बहुत पसंद आती है यार। क्या है वो मूवी का नाम? कियारा अडवाणी है उसमें शायद से, उस मूवी में।
1: या गोविंदा नाम मेरा,
0: गोविंदा आलारे।
1: उसके सारे गाने अच्छे हैं,
0: बहुत बढ़िया गाना है वो यार, और वो मूवी भी बहुत सही है। अगर आपने वो मिस किया ना वो मूवी,
1: या
0: गोविंदा नाम मेरा शायद से ना,
1: या गोविंदा नाम मेरा,
0: गोविंदा नाम मेरा। हाँ, तो वो एक्चुअली इसमें कुछ गाने हैं ऐसे जो आज बज सकते हैं शाम को। आप बताइए कौन सा?
1: कुछ ऐसे गाने हैं जो कि उस साल के टॉप 100 में, टॉप 10 में थे। इसके अलावा दो और गाने बहुत पॉपुलर है इस मूवी के।
0: यस, और वो भी सब सब हिट गाने हैं एक्चुअली मूवी में। विकी कौशल का आपका फेवरेट गाना कौन सा है, 5599 पे लिख कर भेजिए यहाँ पे। एंड याद रखिए आज कन्फेशंस भी होने वाले, ड्राइव थ्रू कन्फेशंस।
1: सो अगर आप कुछ कन्फेस करना चाहते हैं तो अभी जाके हमारे ग्रुप में अनफिल्टर्ड क्रू में जाके एनोनिमस रह के आप एक्चुअली में वहाँ पे टाइप कर सकते हैं।
0: राहुल से बात करते हैं। राहुल, वेलकम टू द शो, बोलिए।
2: थैंक यू रुज भाई, कैसे हैं आप?
0: बहुत ही बढ़िया है भाई, कैसे हो आप? लॉन्ग टाइम नो सी।
2: ओह वेल, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन देर आए दुरुस्त आए।
0: जी हाँ, एब्सोल्युटली।
2: और बहुत ही बढ़िया गाना लग गया है। तेरे वास्ते फलक से मैं चलाऊंगा।
1: इस मूवी के सारे गाने अच्छे थे, वो भी था ना फिर और क्या चाहिए, तू है तो फिर और क्या चाहिए।
2: मेरी डॉटर इतना अच्छा डांस करती है ना इस गाने पे, वैसे एकदम बड़ा कूल से स्टेप है, इसमें कोई भागा दौड़ी नहीं है, एक ही जगह राउंड करके।
1: और बहुत सारी रील्स बनी है, मेरे को लगता है उस साल की सबसे बड़ी रील्स इसी गाने के ऊपर बनी है।
0: लोगों ने हगा भी है लेकिन ना वो डांस स्टेप,
1: वो तो अलग बात है।
0: क्या बोलते राहुल,
2: कोई भी किसी भी शादी में ये गाना ना बजे तो फिर मजा ही नहीं आता था। मतलब हमारी फैमिली में तो कुछ बच्चे ऐसे इस गाने के इतने फैन हो गए, एक बस उनको क्या करना था, बच्चों को स्टेप क्या होता था, कान पे ऐसे हाथ लगाता था ना जो लेफ्ट और राइट, खड़ा होके रहना, आपको कोई भी ये स्टेप कर सकता है। मतलब वो वाला नहीं जो बहुत
0: जो तौबा तौबा का स्टेप है ना बेसिकली, अरे तौबा तौबा तौबा, वो उसको ही वो लोग ने थोड़ा कूल बना दिया था।
2: बस बस बस, वो कोई भी इवन बड़ा आदमी भी ऐसे कंधे को ऐसे हिला के और कान को आगे पीछे, मतलब कान के पीछे दो हाथ लगा के, कान के मतलब आगे सॉरी पीछे,
1: इसको कहते हैं डांस को डिस्क्राइब करना।
2: बहुत बढ़िया, बड़ा फेमस
0: डे इन लाइफ ऑफ रेडियो जॉकी।
2: तो ये गाना बज जाएगा तो मजा आ जाएगा।
0: अरे 100%
1: सुनते रहिए, फिर आ जाओ
0: 6 से 7 के बीच, ऐसे ही सारे गाने हम बजाएंगे आपके लिए, बस आप सुनते रहिएगा। थैंक यू राहुल, थैंक्स फॉर योर कॉल। और कोई रिकमेंडेशन है तो फटाफट भेज दीजिए, लेकिन तब तक के लिए अभी सुनते हैं ये गाना थ्रोबैक में।
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: আছে।
1: Bro, look at you. Blue light screen ko itna ghoor raha hai, jaise wo tujhe promotion de dega. Aur ye coffee? Lukewarm. A taste bilkul heartbreak jaisa. Please sir, tu cubicle ke liye nahi banaye. Tu beach ke liye banaye. Tu life ko enjoy karne ke liye banaye.
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply. Hum. Accurate traffic.
3: Sell or loan against your gold at Cash Converters.
4: Partly cloudy tonight with a low of 9 degrees. We've got reports coming through of an incident, possibly a crash on the southwestern motorway at Citybound around Walmsley Road. Certainly some very heavy traffic backed up from there, almost back to the southern. And southbound, it's slow from Mangere Bridge. On the northwestern, it's busy out to Te Atatū. And the northern, heavy to Tristram Ave, 45 minutes to Constellation.
3: Visit your local store and turn your gold into sold. Valid ID, Lindy criteria and terms apply.
5: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: Big Points Blitz is on now. Get up to $30 worth of everyday rewards vouchers when you shop at Woolworths or Fresh Choice. Boost the offer in your everyday rewards app, shop in store or online and collect big bonus points. Hurry, Big Points Blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
7: Waitoa free range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that cozy family night feeling. All the feels for all the meals.
8: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
10: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. It's hoped the family of a man missing for nearly 35 years can finally get some closure. New information has come to light about the disappearance of Andrew Maka in Auckland, prompting police to reinvestigate. Detective Inspector Callum McNeill says the family deserve answers.
12: They haven't had a chance to grieve. It's been 35 years of questions. They want to know.
11: It's claimed the timeline for the government's new curriculum has been pushed back. The NZEI union says they sent an open letter to the minister last month, and now the first two learning areas won't be mandated until 2029, 2 years later than originally planned. The government is progressing with move-on orders to address rough sleeping and begging. Legislation introduced to the House today would allow police to order a person to leave an area for up to 24 hours. Donald Trump has received a grand welcome in Beijing ahead of his talks with Chinese leader Xi Jinping. The US president says they get along well.
13: We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done.
11: To sport, Premier League star Chris Wood headlines the 26-strong all-whites team for next month's FIFA World Cup. New Zealand coach Darren Bazley has defended the selection of the experienced Tommy Smith in the squad.
14: You know, he's not staff, he's a player. You know, he's a very good player.
11: Football updates brought to you by Hisense. And Manawatu 17-year-old Milan Glintmeyer has hit a World Aquatics A qualifying time and equaled a New Zealand Open record in the 100-metre backstroke.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.
10: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: वेदर का हाल आज काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे. आज ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोना बी रियली कोल्ड, एक्चुअली 7 degrees होगा आज. 1 to 2 layers ऑफ क्लोथिंग इज रिकमेंडेड. फील्स लाइक 15 degrees राइट नाउ एंड सनसेट 5:25 पे.
10: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
16: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
17: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
18: Power Drive at 5.
10: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizvi.
19: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
0: 5:02 आप सुन रहे हैं ड्राइव शो. पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए शुरू हो गया है अभी. हाय सैंडी.
1: हाय रिज़वे, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. यू नो कल हमने एक थ्योरी के बारे में बात की थी,
0: बर्न टोस्ट थ्योरी
1: के ऊपर. आज थ्योरी नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है. देयर इज अ बुक जिसका नाम है ब्लैक बुक ऑफ वेल्थ.
0: ब्लैक बुक ऑफ वेल्थ,
1: या जेम्स कोल की, या नहीं, नॉट काला धन, या ब्लैक बुक ऑफ वेल्थ, जेम्स कोल की ये बुक है. तो उसमें ना एक थ्योरी को, एक कंसेप्ट को एक्चुअली में बताया गया है. क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, तुम किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में जाते हो, खाली होता है वो, एकदम खाली,
0: और मैं जाता हूँ लक्ष्मी के पाव, सीधा फुल भीड़ हो जाती है,
1: जाते हो और उसके बाद काफी लोग वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं. ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी?
0: हुआ है,
1: हमेशा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है?
0: काफी बार हुआ है.
1: काफी बार हुआ है. ओके,
0: मतलब मेरे पाव बहुत लकी है क्या?
1: नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि उस समय पर तुम्हारी जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है, इज वेरी हाई. या यू आर इन अ वेरी हाई एनर्जी. यू आर इन एक्चुअली आसपास जो कहते हैं ना, ऑरा जो होता है तुम्हारा उस समय पर बहुत हाई होता है. वाइब्रेशंस गुड होती है. इट्स गुड टाइम टू डू समथिंग.
0: Oh.
1: Because you are attracting good vibrations.
0: Oh, nice, यार.
1: Yeah.
0: मैं
1: ऐसा उस बुक में लिखा है.
0: मैं ये सोचकर हमेशा सोचता था कि यार, you know, अगर इतना ही होता है तो मैं खुद की दुकान क्यों ना खोल दूँ और फिर लोग ही लोग होंगे, हमेशा आएंगे. लेकिन हम लोगों ने एक बार ना वो फूड स्टॉल लगाया था एक कोई इवेंट पे. कोई आया ही नहीं यार.
1: yeah.
0: बहुत पैसा डूबा उसमें. बट या सो मेरे को समझ में आ गया,
1: हमने तो खाया बहुत ना.
0: ये वाइब्रेशन दूसरों के लिए ही काम करता है.
1: वाइब्रेशन कभी कभी होती है ना, इट्स नॉट एवरी टाइम.
0: ओके,
1: सो जब भी तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो हमेशा ऐसे नहीं होता है, कोई रेस्टोरेंट खाली भी हो जाता होगा.
0: नो नहीं नहीं, खाली खाली नहीं होता सैंडी.
1: ओके,
0: बंद जरूर हो जाता है.
1: ओके, एक्सट्रीम हो जाता है. तो बताइए गाइस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है? कॉल करके यहाँ पे शेयर कीजिए कि आप कहीं पे गए हैं और उसके बाद मतलब लोगों ने आना शुरू कर दिया और आपने एक दो बार ऐसा नोटिस भी किया, बट यू डिडंट एड्रेस द फीलिंग कैसा हो रहा है. क्योंकि हम नोटिस करते हैं ये चीज.
0: कब हुआ आपके साथ लास्ट ऐसा? आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. हाँ बोलो.
20: हेलो,
0: कैसे हो?
1: बढ़िया.
20: हुआ है वैसे मल्टीपल टाइम्स पे, बट मुझे लगता है कि वो मेरे वजह से नहीं हुआ, मेरी वाइफ की वजह से हुआ.
1: ओह,
0: वेरी नाइस, गुड आंसर.
20: या बट क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर पहले भी ऐसा होना चाहिए था ना लाइफ में, जब बैचलर थे.
1: अच्छा, पहले नहीं हुआ?
20: पहले नहीं हुआ, बट शादी के बाद जैसा बहुत बार.
1: हाँ, तो डेफिनेटली योर वाइफ.
0: तो फिर वाइफ के कारण नहीं, ऐसा भी नहीं, नहीं, नहीं, ये डेफिनेटली वाइफ ऐसा नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि इनकी शादी होने के बाद इनकी एनर्जी ऐसी हो गई कि वो अभी सब
1: पॉजिटिव एनर्जी हो गई आपके पास.
0: हो सकता है ऐसा.
20: Yeah.
0: क्या बोलता है फर्स्ट?
20: या
0: कुछ भी बोलो, वाइफ की तारीफ ही हो रही है तो बोल सकते हैं.
1: अकाउंट में ट्रांसफर कर देना आप.
20: श्योर श्योर. या
1: थैंक यू.
0: अच्छा,
1: I think it's quite common phenomena, होता है काफी लोगों के साथ, और हमेशा नहीं but at times होता है.
0: Right,
1: कोई ऐसा कॉल करो जिसके साथ कभी नहीं हुआ ये.
0: Oh, wow.
1: yeah. हुआ तो काफी लोगों के साथ होगा ये, जिसके साथ कभी नहीं हुआ है
0: या
1: ये.
0: जिसके साथ कंप्लीट उल्टा हुआ है कि बहुत भरी हुई शॉप थी, जैसे तुम गए खाली हो गई
1: या बंद हो गई. आपने बोला कि यार यहाँ पे ना मुझे नेक्स्ट टाइम खाने के लिए आने, और नेक्स्ट टाइम वो है ही नहीं,
0: वो बंद हो गई है दुकान
1: या खाली हो गई. तो मतलब अगर उल्टा किसी के साथ हुआ है, मतलब जो लो वाइब्रेशन वाला फेज है, हमें वो जानना है. कॉल करके यह शेयर कीजिए 5599 पर.
0: वेल लास्ट आर जो गाने के बारे में हम बात कर रहे थे, वाओ
2: वाओ
0: सैफ अली खान, नहीं सैफ अली खान का वर्ड है ये, फीचर्ड ऑन वरुण धवन, वाओ

0: और बैकयार्ड बीट्स।
1: बैक योर बैक यार्ड बीट्स मतलब हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं यहाँ के, उनको हम शाउट आउट दे रहे हैं, उनके मन उनके बनाए हुए गाने हम प्ले कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि थोड़ा आप भी प्यार करो इनसे, थोड़ा मैसेज करो इनके लिए,
2: इनके थोड़े फीडबैक यहाँ पे दीजिएगा MM कीवर्ड के साथ, बिकॉज जब आपकी फीडबैक यहाँ पे आएगी तो उस हिसाब से टॉप 3 आर्टिस्ट कौन से हैं जो रोवा पे फीचर होंगे ये डिसाइड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। काफ़ी आर्टिस्ट जो है इन्होंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट की है वीडियोस, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं hum_FM पे, hum_FM पे।
1: आज के जो हमारे सिंगर है ये बस सिंगर ही नहीं लेकिन ये पहले एक रेडियो अनाउंसर रहे हैं इंडिया में, लेकिन इनका पैशन हमेशा से सिंगिंग रहा है। अभी ऑकलैंड बेस्ड है ये,
2: ऑकलैंड बेस्ड है ये सिंगर
1: और काफी शोज एमसी भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं ये,
2: बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं एंड लेकिन सिंगिंग एज अ पैशन हमेशा साथ में चला है। रांझा राजन, नाम राजन है लेकिन अपने नाम के साथ इन्होंने रांझा लगाया हुआ है,
1: स्क्रीन नेम,
2: स्क्रीन नेम इज रांझा। सो रांझा राजन की आवाज में ये गाना सुनते हैं। और इसी के साथ साथ वैसे रुजवे आपको बता दें कि यहाँ पे हम फ्लाई वे फ्रेंजी का जो कोड है ये देने का वक्त भी आ चुका है।
1: अरे क्या बात है, बताइए क्या है कोड फिर।
2: सो आज का जो फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड है ये आपको रोवा ऐप पे जाके एंटर करना है। आज का कोड है लगून,
1: लगून
2: या एल ए, वो लगान नहीं, लगून वाला अपना ये LAGOON
1: लागी दिल से दिल की लगन, लगन नहीं लगून,
2: लगून या सो LAGOON लगून इज अ वर्ड ऑफ द डे। अभी आपको रोवा ऐप पे जाना है, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन यू विल गेट फ्लाई वे फ्रेंजी का पोस्ट, उसके ऊपर क्लिक करो, एंटर द कोड, आपके पास 60 मिनट्स का समय है इस कोड को वहाँ पे एंटर करने के लिए।

0: मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे एंड अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
1: हम एक्यूरेट ट्रैफिक,
2: kitchenmania.co.nz.
3: Partly cloudy tonight with a low of 9 degrees. We've got reports coming through of an incident, possibly a crash on the southwestern motorway at Citybound around Walmsley Road. Certainly some very heavy traffic backed up from there, almost back to the southern. And southbound, it's slow from Mangere Bridge. On the northwestern, it's busy out to Te Atatū. And the northern, heavy to Tristram Ave, 45 minutes to Constellation.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
5: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
4: The Vibe Mix Events presents
5: the Grand Musty Night in conjunction with the Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboard from 6 PM. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satyanand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Guest Manurewa and Wicked Chicken Botany.
4: Don't miss out. The Drive Show with Sandy and Rusbi.
6: Hamesha saath dene wale dost.
7: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
8: Power Drive at 5.
9: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
10: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
11: Main laau apna A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The Drive Show with Sandy and Rusbe.
1: Hamesha saath dene wale dost.
0: Jahan sab chup hai, hum hai zara loud.
1: Hum.
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Aaj drive-through confessions mein ab tak hamare paas koi confession aaya nahi hai. But if you are interested to confess something, and that could be something very simple, easy, light. जैसे हमें एक confession आया था, जहाँ पे एक father ने call किया था और बोला था कि मैंने अपनी बेटी का जो takeaway था वो खा लिया और बोला
3: कि उसका favorite takeaway खा लिया और बोला कि वो गिर गया.
2: गिर गया वो. So yeah, that is like a harmless confession.
3: वो गाना फिट होता है ना, दिल तो बच्चा है जी.
2: दिल तो बच्चा है जी. And I think sometimes it's okay to prioritize yourself. Yeah.
3: 100%.
2: But yeah, anyway.
3: बिल जो है, विच इज पेविंग द वे फॉर डिजिटल ड्राइवर्स लाइसेंस, हैज पास्ड हिज थर्ड एंड फाइनल रीडिंग इन पार्लियामेंट. रिस्पे
2: अच्छा.
3: या सो दे आर लीगल नाउ. सो रेगुलेटरी सिस्टम जो है अमेंडमेंट बिल, सो वो शिफ्ट कर रहे हैं पेपर बेस्ड एंड फिजिकल प्रोसेस टू डिजिटल वन. सो जिसमें हम डिजिटल लाइसेंस को आगे जाके यूज कर सकते हैं.
2: सो इसका मतलब एक नया ऐप बनेगा शायद यहाँ पे भी.
3: yeah.
2: जहाँ पे आप आपके लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ सेव कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली एक बात बोलूँ क्या, मुझे लगता है कि पुलिस हैव बीन वेरी काइंड. काफ़ी बार ऐसा होता है जहाँ पे मैं अपना वॉलेट भूल जाता हूँ और मेरे पास लाइसेंस नहीं होता है, तो मुझे पता है देयर इज अ फाइन इफ यू डोंट हैव योर लाइसेंस ऑन यू. आई थिंक $50 का फाइन होता है या कुछ ऐसा होता है. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लेट गॉन कि कोई बात नहीं.
3: ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है.
2: ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है. एंड यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज मुझे क्या लगती है, यहाँ पे जब भी सिटी में बहुत बार वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करते हैं तो भी लाइसेंस नहीं चेक करते.
3: ओ या,
2: तब सिर्फ वो ब्रेथ ही चेक करेंगे.
3: या
2: तो वो मेरे को काफी स्ट्रेंज लगता है. बट या एनीवे, सो दिस डिजिटल का देखते हैं और क्या अभी इसके बारे में न्यूज आती है.
3: लेकिन आप क्या अपना डिजिटल कार्ड यूज करते हैं, बेसिकली अपना वॉलेट यूज करते हैं आप डिजिटल? कितने लोग हैं हमारे लिसनर्स में से जो डिजिटल वॉलेट यूज करते हैं? तुमने कभी यूज किया है
2: डिजिटल वॉलेट?
3: या
2: मतलब वो अपना पे वेव और वो सब करने के लिए
3: फोन? अपने फोन से. या
2: हाँ, वो मैं यूज करता हूँ.
3: कितना फ्रीक्वेंट यूज करते हो?
2: जब भी सरचार्ज नहीं हो तभी फोन से कर लूंगा.
3: ओके. मैंने रिसेंटली शुरू किया बिकॉज मेरे को मेरा कार्ड नहीं मिल रहा था.
2: ओ, तो मिला कार्ड की नहीं मिला?
3: नहीं, कार्ड वो घर पे है, कहीं पे है, लेकिन अच्छा. लेकिन या सो
2: इट्स इंपॉर्टेंट टू लॉक योर कार्ड इफ यू डोंट हैव योर कार्ड विद यू.
3: या या 100%. लेकिन या मैंने, इट्स वेरी इजी एक्चुअली. मैं
2: बहुत सही हो जाता है.
3: बहुत सही है. एंड मोस्ट ऑफ द शॉप्स में
2: अपने आईफोन से, वो अपना आई वॉच से भी करते हैं ना,
3: कई उससे भी करते हैं. एग्जैक्टली. तो आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यूज किया है अभी तक या नहीं यूज किया है, तो शेयर कीजिए 555 लाइन पर.

0: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
1: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe with Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
2: Breakfast show with VJ and Pooja.
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब
5: क्या है अपनी पत्नी से रमन?
4: मेरे को समझ में नहीं. एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने.
5: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Weekdays 6 to 10 a.m.
1: Hum, accurate traffic.
6: Club Rebel.
7: Partly cloudy down to a low of 9 tonight. Out of Auckland City on the Southern Motorway, it's pretty much heavy all the way to Drury, an hour and 20 minutes to get there from town. And the Southwestern is not a good alternative. Really slow both ways south of Mangere Bridge, 40 minutes to the airport. On the Northwestern, it's busy out to Te Aratu, and the Northern quite heavy through to Esmond Road.
6: Club Rebel. Shop and be in the draw to win ultimate VIP sports experiences. T's and C's apply.
1: Auckland, this weekend, $100 spend karo in-store at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson or power $20 Mitre 10 gift card. Sirf Saturday and Sunday, T's and C's apply. More value, more projects, more savings. Jaldi kijiye, Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
8: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
9: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
11: Award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
12: Kahani of Indelible Homes.
13: Martin didn't think he needed a DVS system.
14: I've got a brand new home.
13: Does your brand new home have condensation?
14: Yeah.
13: New homes are often built tight, but a healthy, comfortable home needs to be able to breathe.
14: Is that what DVS does?
13: Yeah. DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology will make your home drier, healthier and more comfortable.
15: The heart of a healthy home, DVS.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
0: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
1: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe with Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
16: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
5: पावर ड्राइव एट 5 आप सुन रहे हैं अभी 104.2 एफएम और रोवा ऐप के जरिए. वैसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाहेंगे. कल इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट डे एंड ग्रेट डे बिकॉज टुमारो अगर आपका होता है ग्रोसरी शॉपिंग वाला डे या तुम्हारा आपका छुट्टी वाला दिन अगर कल का होता है तो कल सुबह 11 से 2 के बीच फ्री रहिएगा बिकॉज वी आर कमिंग टू फूड फॉर लेस सुपर मार्केट इन न्यूलिन.
4: या फूड फॉर लेस अंडर न्यू मैनेजमेंट ये कल ओपन अप हो रही है. ये कल रहेगी 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलिन में. वहाँ पे पहले सी थी लेकिन अभी अंडर न्यू मैनेजमेंट है. सो
5: नए ओनर्स है बेसिकली. लेकिन फूड फॉर लेस नया खुल रहा है, फिर से नया खुल रहा है, वही नाम से खुल रहा है. बट वहाँ पे हम आने वाले हैं क्योंकि आपको हम देने वाले हैं एवरी आवर एन अपॉर्चुनिटी टू विन $100.
4: या $100 का वाउचर आपके नाम हो सकता
5: है. वाउचर या कैश है पता नहीं लेकिन $100 का कुछ है.
4: $100 का कुछ है जो आपके नाम हो सकता है. एंड सेकंड थिंग, ग्रोसरी बैग्स. आप शॉपिंग करेंगे वहां पे, ग्रोसरी बैग के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा. ये भी एक बैग के लिए पे नहीं करना पड़ेगा. सो ये भी आपके नाम हो सकता है. प्लस कुछ और सरप्राइजेस भी हो सकते हैं. ब्रेकफास्ट शो की टीम रहने वाली है और ड्राइव शो की टीम रहने वाली है.
5: मजा ही मजा आने वाला है. ड्राइव शो की टीम रहने वाली है ना, पूरी टीम रहेगी ना.
4: So, मैंने इतना बोला ड्राइव शो की टीम रहने वाली है.
5: मतलब क्या होता है?
4: ब्रेकफास्ट शो की टीम रहने वाली है.
5: टीम का मतलब क्या है?
4: अभी देखो 11 से 2 के बीच में होगा कुछ,
5: ठीक
4: कोई
5: है,
4: कोई ना कोई होगा वहाँ पे।
5: चलो ठीक है, देखो मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं तो रहने वाला हूँ
4: वहाँ पे, तो 100%
5: है, मैं तो 100% हूँ वहाँ पे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप विद ऑल ऑफ यू एज वेल। तो अगर आप का शॉपिंग वाला डे होता है कल का, तो आप आ जाइएगा न्यू लिन, फूड फॉर लेस, अंडर न्यू मैनेजमेंट,
4: 13 वेरोनिका स्ट्रीट। ये वैसे लिन मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट है,
5: लिन मॉल के ऑपोजिट
4: वाली लाइन में।
5: हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया जगह है वो, वहाँ पे पार्किंग वार्किंग भी अवेलेबल होता है काफी बार,
4: सब कुछ है, या सॉर्टेड है।
5: सो या वी विल सी यू देयर एंड वी विल हैव थोड़ा फन, मस्ती करेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए शो में और भी सारी चीजें लेकर आएंगे।
4: बाय द वे एयर न्यूजीलैंड ने कट किया है 5% ऑफ फ्लाइट्स को अगेन,
5: हाँ तो अभी
4: सो काफी रूट्स को फिर से कैंसिल किया है।
5: अपने एक मेन टॉपिक तो बात ही नहीं की सैंडी,
4: क्या
5: मोदी जी ने कहा है कि किसी ने अभी फ्लाई नहीं करना चाहिए इंडिया से,
4: ओके
5: मतलब नो ट्रैवलिंग, नो बाइंग गोल्ड, वो सब के बारे में तो बात करो यार।
4: अरे बताओ ना, तुम्हें पता है ना इंडिया के बारे में पॉलिटिक्स का, स्पेशली तुम्हें पता होता है।
5: हाँ लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ अभी बात करने के लिए, लोग सेंसिटिव हो जाते हैं ना हर एक इसको लेकर।
4: ये तो इन्फॉर्मेशन है ना।
5: हाँ ये मैं तो, मैं आई एम तो भाई I am pro commentating.
4: Yeah, so अच्छा वहाँ पे ऐसा announcement हुई है कि ये नहीं करना है, सब नहीं करना है।
5: But मेरे को लग रहा है कि ऐसा पहले
4: reason is because of the fuel.
5: हाँ, fuel prices and ऐसा कुछ तो भी global scenarios को consider करते हुए, क्योंकि news ऐसी भी आ रही है कि शायद सबको work from home का फिर से मिलेगा chance. Because fuel का shortage and fuel prices are going to go up again.
4: इंडिया में कभी ऐसी अनाउंसमेंट होती है ना, वो थोड़ा ऐसा वरी होता है उन लोगों के लिए जिनके पास होम
5: डेली वेज पे जो रहते हैं,
4: डेली वेज पे रहते हैं, एंड आल्सो उनका सबका काम ऐसा काम नहीं है वर्क फ्रॉम होम वाला, बिकॉज वहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस बहुत होते हैं एंड वहाँ पे जैसे ठेले वो सब चीजें, स्ट्रीट वेंडर्स जो है ये बहुत सारे रहते हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा ऐसा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, सबसे ज्यादा ट्रबल होता है एक्चुअली में, एंड वो बहुत ज्यादा लोग हैं वो,
5: एंड इट्स अ डिफिकल्ट वन। या सो या मेक श्योर कि आप भी, यहाँ पे भी काफी सारे जगहों पे अभी काफी सारी चेंजेस रहे हैं, सो या मार्केट इज टफ ओनली। अभी बीच में मैं एक और न्यूज देख रहा था कि हाउस प्राइसेस भी बढ़ने का नाम नहीं ले रहे, इनफैक्ट और ड्रॉप होने वाले हाउस प्राइसेस, मिनिमम
4: कागिल में बढ़े हैं,
5: सिर्फ मिनिमम कागिल में बढ़े हाउस प्राइसेस। सो या देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस दैट्स हैपनिंग अराउंड, उसके अपडेट्स आपके तक हम पहुंचाएंगे, बट अभी के लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना फहीम अब्दुल्ला की आवाज में।

0: You are listening to Humpling Bollywood's biggest hits. ये बहुत ही बढ़िया सा गाना आपको हम सुनाएंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कॉम्पिटिशन खेलने का टाइम यहाँ पे आ गया है आपके साथ.
1: कॉम्पिटिशन में क्या है कि ग्रैंड मस्ती नाइट होने वाली है रुजबे, और ग्रैंड मस्ती नाइट जो है जहाँ पे ढेर सारे लोग फिजी से आके यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, आपको एंटरटेन करने वाले हैं, तो इस नाइट की टिकट आपके नाम हो सकती है, डबल पास आपके नाम हो सकता है. आपको यहाँ पे लिख के भेजना है ड्राइव स्पेस फिजी का सबसे पॉपुलर फूड कौन सा है.
0: फिजी का सबसे पॉपुलर फूड कौन सा है?
1: या द मोस्ट पॉपुलर फूड जो आपको पता है फिजी का.
0: नारियल पानी.
1: फूड.
0: फूड होना चाहिए.
1: या प्रॉपर फूड कौन सा है? 5599 पर.
0: ये
1: इट्स नॉट कि आई नो कि एक पर्टिकुलर आंसर होगा, डिफरेंट टाइप आंसर्स भी हो सकते हैं,
0: बट आपके हिसाब से कौन सा मोस्ट पॉपुलर है?
1: मोस्ट पॉपुलर फूड कौन सा है फिजी का?
0: आपके हिसाब से क्या है मोस्ट पॉपुलर फूड?
1: यार मुझे उसका नाम भूल गया, कसावा आई थिंक, या कसावा कहते हैं उसको.
0: अच्छा.
1: या मुझे लगता है कसावा.
0: कसावा.
1: या वो मैंने पहले कभी नहीं खाया था ना ही कभी देखा था, तो यहाँ पे बनाते हैं कसावा ना.
0: ओके.
1: तो कसावा मुझे लगता है कि कसावा. व्हाट आपको क्या लगता है? कॉल करके बताइए या फिर मैसेज कीजिए. मैसेज कीजिए तो ड्राइव कीवर्ड के साथ बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट पॉपुलर फूड ऑफ फिजी क्या है. So, अभी तक तो मैसेजेस नहीं आए किसी के. तुम्हें हाँ, क्या लगता है रुजबे?
0: मेरे को ज्यादा ऐसे नॉलेज है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रोस्ट है और वो सब ना, वो बहुत पॉपुलर, बारबेक्यूज और रोस्ट बहुत पॉपुलर होता है. लोवो कुछ आया? लोवो
1: वो होता है ना, मेरे को लगता है वो जो अर्थ ओवन वाला होता है, जो
0: वो जैसे हांगी होता है वैसा,
1: जैसे हांगी होता है शायद वैसे.
0: कसावा एंड तारो विद ब्लैक टी.
1: सी, ऑलमोस्ट राइट. कसावा एंड तारो विद ब्लैक टी.
0: लोलो. लोलो की लोवो.
1: लोवो
0: मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम क्रिस ने भेजा है.
1: लोवो काफी लोगों
0: ने भेजा है. शबाना भी ने.
1: सो लोवो कोई कॉल करके बताओ, वही है ना जो हम सोच रहे हैं, लाइक अर्थ ओवन जो होता है. मैं सोच रही हूँ अर्थ ओवन जिसे कहते हैं, वो जो क्या होता है हांगी होता है जैसे यहाँ पे,
0: हांगी जैसा होता है वैसा.
1: सो इज इट लोवो द सेम वन या कुछ और होता है? तो प्लीज कोई हेल्प करके अगर बताएगा तो बढ़िया रहेगा.
0: कसावा विद टारो लीव्स. लोलो एंड हांगी. लोलो अलग चीज है मेरे को लग रहा है. फिश इन लोलो इज डिफरेंट इन कोकोनट मिल्क, और लोवो अलग है.
1: लोलो
0: संध्या
1: अलग
0: ने भी भेजा है लोवो, ऐसा मुझे लग रहा है अभी, ऐसा अजम्पशन है.
1: लोलो अलग है. सो एक ने लिखा फिश इन लोलो इन कोकोनट मिल्क. ओके.
0: शिवानी ने भी बोला है लोवो.
1: हाँ, फिश भी हो सकता है ना मोस्ट पॉपुलर.
0: लोवो क्या? लोवो आप बोल रहे हो वो है हांगी जो बोल रहे हो आप, वो है लोवो. और लोलो क्या है फिर? फिश इन लोलो
1: तो लोलो क्या है वो नहीं पता.
0: लोलो तो करिश्मा कपूर है ना.
1: बैड वन. सो या
0: लोवो इज हांगी.
1: लोवो इज हांगी. ठीक है, लोवो का पता चल गया कि वो हांगी है. तो लोलो क्या है? जो मेरे पास डिफरेंट आंसर्स है, देखो ना कितने लोगों ने भेजा है यहाँ पे लोलो. तो या तो उनका स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑटो करेक्ट है, या लोलो कुछ और है.
0: टारो लीव्स लोलो इन हांगी. ओके, पता नहीं. एनीवे, आप यहाँ पे जरूर हमें मैसेज करते रहिए. अभी के लिए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गाना.

0: बड़ा ही प्यारा है दिल का रिश्ता।
1: काफी लोगों ने मैसेज किया है, रोनिता का कॉल भी आया था। क्रिस्टीन ने भी मैसेज किया है कि फिश तारुका इन लोलो विद डालो। ओके, लोलो इज फिश एंड वेजिटेबल कुक्ड विद फ्रेश कोकोनट क्रीम।
0: और भी बहुत मैसेजेस आए सैंडी। लोवो इज द अर्थ ओवन एंड लोलो इज फिश इन कोकोनट क्रीम एंड कैन ऑल्सो बी रॉ रॉ विच इज टारो लीफ इन कोकोनट क्रीम एंड पोलोसामी इज रॉ रॉ इन कोकोनट क्रीम एंड मीट ऑल्सो कुक्ड इन लोवो और इन ओवन। सलेश फ्रॉम अपर हट वेलिंगटन ने यह भेजा है। थैंक यू सलेश।
1: एक दो और मैसेज आया, उन्होंने बोला कि लोलो इज फिश कुक्ड इन कोकोनट मिल्क एंड लोवो एंड हांगी आर सिमिलर बट लोवो इज कुक्ड अंडर ग्राउंड विद हॉट स्टोन्स। ओके,
0: एंड लोलो इज वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मीट एंड कोकोनट मिल्क।
1: और वे भी होता है ना हर किसी का बनाने का, बट द बेसिक जो है वो यही है, कोकोनट मिल्क का कॉम्बिनेशन वहाँ पे।
0: जी, सो थैंक यू सो मच आपके यहाँ पे मैसेजेस के लिए, रियली मीन्स अ लॉट यार। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड यू नो एक्सप्लेनिंग इट टू अस, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको नहीं होता है ना आइडिया, कुछ
1: डिफरेंट कल्चर का कई बार नहीं पता होता है।
0: एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग हियर, बिकॉज आपका प्यार यहाँ पे हमें इतना मिलता है कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है। एनीवे, आपको फिर से क्विक रिमाइंडर, कल हम रहने वाले हैं फूड फॉर लेस अंडर न्यू मैनेजमेंट फ्रॉम 11 AM टू 2 PM, ब्रेकफास्ट शो एंड ड्राइव शो दोनों वहाँ पे रहने वाले हैं फॉर डबल धमाका।

0: Chris Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Switch to AMI car insurance.
3: Partly cloudy and down to 9 degrees overnight. Out of Auckland City on the northern motorway, it's pretty slow through to Tristram Ave, 40 minutes out to Constellation Drive. A similar time to Massey on the northwestern. Traffic right the way through to Tautu. On the southwestern, it's slow both ways south of Mangere Bridge and heavy northbound in the Waterview Tunnel. And the southern is pretty heavy out to Tuckanini.
2: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
4: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
5: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
6: Auckland, this weekend $100 spend karo in store at Mitten Mega Westgate and Henderson or power $20 Mitten gift card. Sirf Saturday and Sunday, T's and C's apply. More value, more projects, more savings. Jaldi kijiye Mitten Mega Westgate and Henderson.
7: Cooking ka asli flavor chahiye? Switch to Kashish Foods ginger garlic paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 6. The Finance Minister has clapped back at Chris Hipkins' claims that Aucklanders have largely moved on from raising questions about lockdowns. Labour's leader made the comment after delivering a State of Auckland speech this morning. Nicola Willis says Hipkins' mistakes led to Aucklanders suffering.
9: And to dismiss that as something that's only the concern of the fringe shows a complete lack of understanding what everyday Aucklanders think and have experienced.
8: The government wants to reduce barriers for the entry of new products across agriculture, horticulture and veterinary care. It's introducing a bill to allow more reliance on the assessments of overseas regulators and for lower risk items to be processed faster. The British Prime Minister's leadership looks to be under increasing pressure from within. It is widely reported Health Secretary Wes Streeting is preparing to launch a challenge against Sir Keir Starmer. Opposition leader Kemi Badenoch has taken full advantage at Parliament.
10: I suppose the Health Secretary has been a bit distracted lately, hasn't he? Yeah, hasn't he? Yeah. There's no point him giving me dirty looks. We all know what he's been up to.
8: Shakira, Madonna and K-pop superstars BTS will headline the first ever World Cup final halftime show. FIFA has just announced the lineup for the July event. To sport, English Premier League star Chris Wood will lead the All Whites in the FIFA World Cup starting next month. The Nottingham Forest striker wants New Zealand supporters to be proud.
11: It's been a long time, 16 years since we've been in the World Cup, so I can't wait and hopefully create some history.
8: Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup. And the Cleveland Cavaliers have taken a 3-2 lead over the Detroit Pistons in the NBA Eastern Conference semis, winning 117-113 in overtime.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
13: Vidit kiya jata hai. Balwant Mistri, Arvind Vallabh, Madhuben Mistri aur Jayaben Mistri ki maa. फीजी में नाउआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वनमले भाई वल्लभ की पत्नी जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार शुक्रवार 15 मई को दोपहर 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. बलवंत मिस्त्री, अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयाबेन मिस्त्री की माँ फीजी में नाउआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वनमली भाई वल्लभ की पत्नी जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार कल 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। The Drive Show with Sandy and Rusby.
14: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
6: Brought to you by Bedzaras, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
15: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
13: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Trendmakers में आज विकी कौशल का हम लोग प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
16: Because birthday is on 16 जो कि सैटरडे है और इसलिए कल एक और एक्ट्रेस का बर्थडे है तो उसका सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज हम विकी कौशल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. विकी कौशल काफ़ी लड़कियों के दिल की धड़कन है
13: जी. आई थिंक वो डार्क टॉल एंड हैंडसम वो जो होता है ना, क्या वो टॉल डार्क एंड हैंडसम,
16: टॉल डार्क एंड हैंडसम,
13: वो टॉल डार्क एंड हैंडसम वाला क्राइटेरिया ये परफेक्ट फिट करता है.
16: या और मुझे लगता है कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो फीमेल तक लिमिटेड नहीं है, लाइक काफी लाइक मेल्स जो है उसको
13: काफी यंग बच्चे विकी कौशल के दीवाने हैं.
16: 100% उसके डांस के, उसकी मूवीज के, यू नो विकी कौशल की मेरे को खास बात क्या लगती है, गिनके मूवीज है रुजबे विकी कौशल ने जो बॉलीवुड में की है. बहुत ज्यादा मूवीज नहीं की है बट हर एक मूवी के साथ कोई ना कोई मार्क छोड़ा है.
13: आई लव्ड हिज फर्स्ट मूवी आल्सो जो नेटफ्लिक्स. ओह
16: मसान इज द फर्स्ट मूवी.
13: मसान इज द फर्स्ट मूवी बट एक्चुअली मैं मसान में आई डोंट थिंक ही वाज इन द लीड.
16: या बट
13: फर्स्ट मूवी एज अ लीड उसकी थी लव पर स्क्वायर फुट.
16: ओह आई लव दैट मूवी. उसमें चिकन सॉन्ग भी है.
13: चिकन सॉन्ग है उसमें. बहुत सही वो मूवी भी बहुत सही थी. वो
16: बहुत अच्छी मूवी है.
13: और उसमें एंड में कैमियो होता है जो रणबीर कपूर का होता है.
16: ओह या
13: रणबीर कपूर आता है उस मूवी में. सो नेटफ्लिक्स पे आप अभी भी देख सकते हो. या ओह क्यों कनेक्शन है सर.
16: I mean, Katrina Ranbir, Vicky Kaushal.
13: Oh, right. Okay. Yeah.
16: Anyway, Bollywood छोटा सा है. ऐसे connection वहाँ पे होते रहते हैं. But Vicky Kaushal, before entering Bollywood, ये electronics and telecommunication में इन्होंने engineering की थी.
13: 2009 में ये graduate हुए थे और during an industrial visit to an IT company in a second year, वो देख रहे थे 9-to-5 office cubicle life के लिए. और फिर तभी उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा.
16: कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी लेकिन ऑफिस लाइफ वाज नॉट विकी कौशल.
13: या सो समवन हु टोर अप हिज ऑफर टू गेट इनटू बॉलीवुड.
16: Quite a risk,
13: but his father also belonged to the industry. काफी उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया था. ही यूज्ड टू बी द एक्शन डायरेक्टर.
16: या श्याम कौशल.
13: या सो एंड आई थिंक वीरु देवगन के साथ काफी काम किया था उन्होंने.
16: ओके
13: because Veeru Devgan also was an action director.
16: Yeah.
13: So yeah, और भी बातें करने वाले हम विकी कौशल के बारे में. आज सुनते रहिए आप Trendmakers only on Hum.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे ये बहुत ही बढ़िया सा गाना जो काफी ट्रेंड किया था. विकी कौशल के गाने हमेशा अक्सर काफी ट्रेंड करते हैं, उनके
1: सिग्नेचर स्टेप उनके ट्रेंड कर जाते हैं.
0: और मेरे को लगता है वो इतने ईज के साथ परफॉर्म करते हैं कि ऐसा लगता है कि यार
1: नॉट जस्ट मूवी सॉन्ग्स. रिज़्बे विकी कौशल ने कुछ सिंगर के गानों के ऊपर डांस किए हैं अपनी रील्स पे, जो वो गाने बाद में ट्रेंड किए हैं.
0: कौन सा एक गाना था ऐसा जो बहुत ही ज्यादा फटा था?
1: बहुत. और वो सिंगर के बारे में किसी को पता ही नहीं था.
0: हाँ, और ये इसने नाचा था और फिर उसके बाद भाई लोग दीवाने हो गए थे.
1: मैसेज करो यहाँ पे 5599 का, किसी को याद है क्योंकि हम भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं जब तक आप मैसेज कर रहे हैं.
0: मुझे आज भी याद है वो ना, उसने एक इस पे नाचा था, एक कुछ स्टेज पे कुछ शो चल रहा था और वहाँ पे उसने परफॉर्म किया था
1: वो उसी गाने के ऊपर,
0: उसी गाने के ऊपर, और वो फुल वायरल हो गया था गाना उसके बाद. बट एनीवे एक्चुअली सैंडी
1: साहब का वो गाना था ऑब्सेस्ड.
0: छोटा सा रोल इन 2012 फिल्म लव शव ते चिकन खुराना.
1: ओ या,
0: उसने एक यंग वर्जन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट प्ले किया था ओमी. और छोटा सा रोल था एज एन इंस्पेक्टर इन बॉम्बे वेलवेट. बॉम्बे वेलवेट में भी काम किया है.
1: सो विकी कौशल का देखा जाए तो राइस एकदम से नहीं हुआ है. जस्ट लाइक मेनी एक्टर्स, उसने धीरे धीरे छोटे छोटे रोल्स किए. इवन अनुराग कश्यप के साथ गैंग्स ऑफ वसेपुर में ही वर्कड एज असिस्टेंट डायरेक्टर.
0: काफी स्ट्रगल किया है,
1: काफी स्ट्रगल किया है एंड फाइनली वो एक जगह पे पहुंचे हैं. सो या जहाँ पे उन्होंने यू नो धीरे धीरे जो क्या कहते हैं कामयाबी हासिल की. बट आई लाइक्ड, मुझे ना उनकी बहुत सारी मूवीज रुज़्बे पसंद है. अगर तुम्हें टॉप पे कोई मूवी हो विकी कौशल की पसंद अगर करनी होगी या विकी कौशल की, ना ये मूवी
0: उरी,
1: आई थिंक उरी मेरी लिस्ट में है. राजी, सैम बहादुर,
0: राजी तो बहुत ही बढ़िया मूवी इसने एक्टिंग किया.
1: इवन सैम बहादुर में वो करेक्टर में गया है पूरा.
0: सैम बहादुर में तो बहुत ही
1: शहीद उद्धम सिंह रोंगटे खड़े होते हैं वो मूवी देख के, जिस वजह से रोल किया है. सो ऐसी मूवीज है विकी कौशल की जिनके गाने इतने बड़े हिट, जैसे सैम बहादुर, शहीद उद्धम सिंह, उनके गाने ज्यादा बड़े बड़े हिट नहीं है बट मूवीज आर क्लासिक.
0: आई वुड वांट टू सी लाइक अ वेरी नाइस लाइक यू नो ड्रामा थ्रिलर काइंड ऑफ मूवी विद विकी कौशल, रणवीर सिंह इन इट.
1: ये दोनों एनर्जीज अच्छी लगेंगी.
0: बहुत ही आई थिंक बढ़िया. मेरे को मालूम है विकी कौशल का एक और रोल बहुत पसंद आया.
1: मैंने दोनों का डांस देखा हुआ है एक्चुअली में
0: साथ में.
1: देयर वाज सम वेडिंग, किसी की वेडिंग थी
0: रणवीर की होगी.
1: हाँ नहीं नहीं नहीं, रणवीर सिंह की ही फ्रेंड सर्कल में कोई है एंड कॉमन फ्रेंड है विकी कौशल भी. सो विकी कौशल एंड रणवीर सिंह ने डांस किया था सिद्धू मूसेवाले के गाने के ऊपर.
0: वाओ,
1: या
0: बट I was saying कि मेरे को विकी कौशल का एक और मूवी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था जिसमें उसका एक कैरेक्टर रोल था एंड दैट वाज संजू.
1: ओह या,
0: संजू मूवी में ही वाज आउटस्टैंडिंग.
1: वो बोलता है ना उसमें डायलॉग होता है, उसके डायलॉग्स बड़े फेमस जाते हैं कि तू शेर है.
0: बढ़िया. एनीवे और भी बातें करेंगे लेकिन अभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना स्वानंद किरकिरे ने गाया है इस गाने को फ्रॉम द मूवी मसान आपके लिए.

0: $25 each. Plus warm up with 15% off oil-free column heaters. Ends 27th of May, T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
1: Professional Financials has saath aapke loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
5: What do you make this kebab special, Chef Alex?
4: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Every kebab is made with love and passion.
5: Wow! These kebabs are amazing! Spices are them right and meat is so juicy.
4: This is Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's Food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
5: 100% authentic and pure as mother's love.
6: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukeko Hay, where dreams begin.
7: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. सिर्फ 44,990 plus on road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: The Drive Show with Sandy and Rusby.
10: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
7: Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
11: ट्रेंड मेकर्स जारी है आपके लिए और आज हम शाउट आउट दे रहे हैं विकी कौशल को जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं ऑन सैटरडे
12: 16 मई को. एंड विकी कौशल की बात करते हैं, ये डायलॉग तो विकी कौशल का ऐसा फेमस हुआ कि इंडिया में पॉलिटिशियंस क्या हर कोई इसको यूज करना शुरू हो गया. जो फ्रेज था एक्चुअली में हर किसी ने यूज किया.
11: उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का ये डायलॉग चलो सुनते हैं. यार ये मूवी मैं फिर से आके देखूंगा सैंडी यार.
12: ब्रिलियंट मूवी, बड़ी अच्छे से बनाया है इस मूवी को
11: और जिस हिसाब से इसने एक्टिंग की है इस मूवी में, आई थिंक इट्स जस्ट बीन फैबुलस.
12: या
11: उरी मूवी अगर आपने नहीं चेकआउट की है, 2018 की ये मूवी है, आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए.
12: ये एक्चुअली अंडरवेंट अ मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग इस मूवी के लिए.
11: एंड इट वॉज अ ट्रू स्टोरी. जो भी सब कुछ वहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमेटेड दिखाया लगा, लेकिन जो उसमें फैक्ट्स दिखाए,
12: जो इंसिडेंट्स है वो ट्रू है,
11: वो ट्रू है. और ये भी है कि इट इज एन ऑपरेशन जहाँ पे देयर वाज नो कैजुअल्टी.
12: या
11: एंड इट वाज अ बिग थिंग.
12: बट यू नीड टू वॉच द मूवी अगर आपने नहीं देखी है टू नो द होल स्टोरी.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे आज विक्की कौशल के फेवरेट विक्की कौशल के गाने लेकर आ रहे हैं, और अगर विक्की कौशल आपके फेवरेट है तो आई होप यू एंजॉयिंग द शो. अभी जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं ये है फ्रॉम द मूवी राजी.
1: ये भी अनदर बहुत अच्छी मूवी है, बहुत चैलेंजिंग मूवी थी.
0: इसमें एक्चुअली आलिया भट्ट ने बहुत अप्रिसिएशन लिया अपने लिए, बट विक्की कौशल का रोल वाज अमेजिंग. मतलब जो उसने प्ले किया दैट वाज आल्सो क्वाइट आउटस्टैंडिंग.
1: वैसे विक्की कौशल के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अपनी वेडिंग विद कैटरीना कैफ बहुत ही प्राइवेट रखी थी, लाइक अल्ट्रा प्राइवेट जिसे कहते हैं ना, वैसी वाली वेडिंग रखी
0: थी. भाई का डर था क्या उसको?
1: नहीं, दे हैड नो फोन पॉलिसी ना, बिकॉज़ उसने इंटरव्यू में बोला था ना कि दे हैड कॉन्ट्रैक्ट था किसी के साथ कि वो फोटो से रिलीज करेंगे.
0: ओह राइट, ऐसा था.
1: या इस वजह से, एंड आल्सो बिकॉज़ उसने एक शेयर भी किया था, आई थिंक कपिल शर्मा में उसने शेयर किया था कहीं पे, तो उसने शेयर किया था कि हमारी जो फोटोज होनी थी लाइक जूता वाली रस्म वो सब बहुत फास्ट कर दी कैटरीना ने, बिकॉज़ जो सालियाँ थी वो जूता दे नहीं रही थी वापस जूता चुराने के बाद, तो कैटरीना फोर्स देम टू गिव द जूता बिकॉज सनसेट का टाइम निकलता जा रहा था और उनको फोटो अच्छी चाहिए थी. शी इज लाइक भाई फोटो मेरी अच्छी होनी चाहिए, जूता भी वापस करो.
0: वाओ यार, और आई कैन इमेजिन कैटरीना बहुत ही ज्यादा फर्म होगी, और क्योंकि वो थोड़ी ऐसा वो रहती है ना, मतलब
1: वो ऐसा स्ट्रिक्ट है थोड़ी चीजों को लेके कि ये चीज ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है बेसिकली, एंड विक्की कौशल इज लाइक अनऑर्गेनाइज्ड वन.
0: ओह अच्छा, ओके.
1: या
0: लेकिन अभी एज ऑफ 2026 विक्की कौशल एंड कैटरीना कैफ रिसेंटली उनका फर्स्ट चाइल्ड वेलकम किया उन्होंने. एंड इसके साथ साथ आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात. सो विक्की कौशल के भाई सनी कौशल, मेरे को वो भी बहुत पसंद है.
1: गुड एक्टर,
0: ग्रेट एक्टर. डिड यू नो दैट विक्की कौशल और सनी कौशल दोनों ने एक सेम रोल के लिए ऑडिशन किया था?
1: ओह वाओ.
0: या फॉर द
1: मूवी,
0: फॉर द मूवी गोल्ड.
1: तो गोल्ड को नहीं मिली.
0: नहीं, सनी कौशल ने किया फिर एंड में वो रोल, बिकॉज विक्की वॉज बिजी विद संजू एट दैट पॉइंट.
1: गोल्ड में वो था ना अक्षय कुमार?
0: नहीं, वो तो मेन लीड में था ना, ये तो दूसरे सपोर्टिंग दूसरे भी लोग थे ना गोल्ड में, बहुत सारे एक्टर्स थे ना.
1: हाँ, मेरे को उसका रोल नहीं याद है.
0: सनी कौशल वाज वन ऑफ देम. आई थिंक हॉकी के ऊपर थी ना ये मूवी, हॉकी या फुटबॉल.
1: या
0: फुटबॉल, वन ऑफ द टू. एनीवे, अभी के लिए राजी मूवी का ये गाना आपके लिए, एंजॉय कीजिए.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे आज ट्रेंड मेकर्स में विकी कौशल के गाने आपको सुना रहे हैं और थोड़े बहुत उनके डायलॉग्स भी सुना रहे हैं. And it's time for the final song.
1: Yeah, final song. And ये movie मुझे बहुत पसंद आई थी रुज़बे. And you know, ये movie किसी platform पे अभी नहीं है, किसी OTT platform पे नहीं है ये movie.
0: Oh,
1: I really want to watch this movie again. लेकिन मेरे को मिलती नहीं है movie ये. अगर है तो शायद मैं उस OTT platform पे नहीं हूँ.
0: Okay.
1: I'm talking about मनमर्जियाँ.
0: मन मर्जिया, जिसमें विकी कौशल, तापसी पन्नू एंड अभिषेक बच्चन, सबका बहुत बढ़िया रोल था.
1: सबका बहुत, एंड विकी कौशल इसमें टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ रोल था इसमें.
0: यू कैन रिकॉग्नाइज हिम ओनली.
1: या द जो उसका यू नो गेटअप था पूरा का पूरा, जिस वजह से वो ड्रेस था, बोलने का स्टाइल, एवरीथिंग वाज टोटल डिफरेंट. बेसिकली उसकी ना जर्नी एक करेक्टर के बड़ी अच्छे से दिखाई थी, एक बिंदास केयरफ्री लड़का, लेकिन कैसे लाइफ उसको एक झटका देती है, देन इट बिकम समथिंग.
0: काफ़ी मेथड एक्टर हैं ये भी विकी कौशल, तो हमेशा काफ़ी रोल्स में घुस जाते हैं, बहुत अपने डिटेल में काम करते हैं. जैसे कि एक मूवी है, अब मुझे पता नहीं ये मूवी जुबान पता है आपको?
1: नहीं पता.
0: एक शायद नई मूवी आ रही है, उन्होंने एक स्पीच थेरेपिस्ट के साथ काम किया टू लर्न के रियलिस्टिकली स्टैमर कैसे कर सकते हैं.
1: ओह,
0: सो ही रियली पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन हिज shoots. But अभी एक आपको एक डायलॉग सुनाते हैं फ्रॉम द मूवी मन मर्जिया. सुनिए और यू नो जस्ट क्योंकि कहीं OTT पे तो देख नहीं सकते,
1: तो डायलॉग सुनिए.
0: डायलॉग से काम चलाते हैं.
2: ये वाली बात करके ना तूने तोड़ के रख दिया मेरे को. जब तुझे पहली बार मिला था तब से ऐसा हो, तब क्यों नहीं बोला कुछ?
3: तब नहीं समझ में आता था ना मुझे.
2: मुझे अब भी समझ नहीं आता रूमी, तो क्या मैं गलत हो गया? और नहीं समझ आती जिम्मेदारी मुझे, इसलिए कहता हूँ मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता. पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता. जितना प्यार और जितना प्यार मैं करता हूं ना तुझसे रूमी, कोई किसी से ना कर सके. जा कर ले शादी तू किसी जिम्मेदार आदमी से. गुड़िया की तरह ना सजा के रखेगा तुझे ड्राइंग रूम में, पर तेरे एक फोन कॉल पे ना छते टाप के नहीं आएगा तुझसे प्यार करने. और जे मैं तेरे को दिन में दो बार प्यार ना करूँ तो पूरा अमृतसर जला दे. इतना है तेरे अंदर.
1: मतलब फुल ऐसा रोल था इसमें विकी कौशल का, बट वाज वेरी इंटरेस्टिंग यार, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल.
0: वेल विद दैट अभी आपको सुनाएंगे हम इसी मूवी का बहुत ही बढ़िया सा गाना. एंड आपको आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि कल टिमाने का टाइम भी यहाँ पे आ गया है.
1: या सो टाटा बाय बाय, कल आपसे मुलाकात होगी. एंड हम कोशिश करेंगे ट्रेंड मेकर्स का ये जो हम सेगमेंट लेके आते हैं आपके लिए, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी लेके आए जहाँ पे अगर आप मिस आउट करते हैं तो आप इसको फुल ऑन सुन सके.
0: सैंडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बोलना ही रह गया हमारा. तो कल हम सुबह रहने वाले हैं कहाँ पे? फूड फॉर लेस सुपरमार्केट में,
1: फूड फॉर लेस अंडर
0: न्यू मैनेजमेंट.
1: या सो ब्रेकफास्ट शो टीम एंड ड्राइव शो की टीम को आप वहाँ पे बिटवीन 11-2 देखने वाले हैं.
0: और हर घंटे आपको जीतने का मौका मिल रहा है
1: $100
0: का शॉपिंग वाउचर.
1: ये आप वहाँ पे जी सकते हैं. स्टोर में बहुत सारे स्पेशल्स होने वाले हैं, आप वहाँ पे हम के ग्रोसरी बैग्स भी जीत सकते हैं. सो फ्यू एक्स्ट्रा सरप्राइजेस भी हो सकते हैं आपके लिए. फूड फॉर लेस न्यू लेन अंडर न्यू मैनेजमेंट, सो वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी. दिस इज एट 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लेन.
0: तो मिलिएगा जरूर वहाँ पे. बाय.
1: Bye.

आप सब मेरे दोस्त माय फ्रेंड्स, जब भी किसी फाइव स्टार होटल जाते हैं या तो खाने के लिए या किसी से मिलने के लिए और या किसी और काम के लिए, तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आज आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप

चरम में खदर था बुखार वन वन मुझे खाने की वन गोली मैंने बोला यो जोनी जोनी मैनेजर कुछ पूछा सुनते हैं आप मैंने मांगा नहीं खाना तुम चीनी मुझे लगते वो लंगूरी वो हैपनिंग मैन बोला सर सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी मैं यहां हूं एम्प्लॉई मुझे नौकरी ना भाई फिर भी मैं करूंगा बोलिए बोलिए क्या आपको चाहिए।

ड्रीम लाया मेरा सर चकराया मैंने बोला फ्लैग लाल लाया और गुर्राया कॉल द प्रेसिडेंट सब घबराया जब प्रेसिडेंट आया मेरा मन मचला देखा सोनी सोनी की साड़ी वाली आगे खड़ी है मैडम क्या समस्या हुई है।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Rhythm and Romance only on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. प्यारे प्यारे गाने और शेरो शायरी भी आपके लिए हम लेकर आते हैं. थर्सडे नाइट को रोमांटिक माहौल सा बन जाता है क्योंकि वीकेंड के और भी करीब हम आ जाते हैं और फ्राइडे को तो पार्टी सॉन्ग्स और सैटरडे को तो और भी बड़ी लिस्ट ऑफ पार्टी सॉन्ग्स आपके लिए होता है हम पर. थर्सडे नाइट में नाइट कैफे जारी है, रिदम एंड रोमांस जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अर्ज करता हूँ आपके लिए, खामोश रातों में एक आवाज़ सी रहती है, खामोश रातों में एक आवाज़ सी रहती है, दिल के कोने में एक प्यास सी रहती है. वो जो कभी अपना था अजनबी सा लगता है, वो जो कभी अपना था अजनबी सा लगता है, यादों में उसकी एक तलाश सी रहती है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपको सुनाते हैं.

0: Cafe on Hummel.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pokekori, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
7: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 125 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
8: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
9: Night Cafe on Hum.
0: Whispers of Ishq.
10: नाइट कैफे में जारी है रिदम एंड रोमांस आपके लिए और रात 12 तक मैं चलता मैं आपका साथ देता रहूंगा और ये प्रोग्राम चलता रहेगा आपके लिए और सामाजिक सूचना भी आप तक हम लेकर आएंगे क्या कुछ हो रहा है हमारे बीच कुछ इवेंट्स भी आपके लिए है जो आप फ्री इवेंट्स भी अटेंड कर पाएंगे जैसे कि ये है श्री वेंकटेश्वर देवाष्टनम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना है कि एक भोजन मेला की आयोजना की गई है फूड कार्निवल ये है 17th मई को होने जा रहा है इसी संडे को 11 AM टू 4 PM 378 अरारिमू रोड रामा और इसका पर्पस है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरज टेंपल प्रोजेक्ट फीचर्स और अट्रैक्शंस ऑफ दिस भोजन मेला इज कि यहाँ पर फ्री एंट्री होगा फ्री फूड ड्रिंक्स होगा फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट इडली सांबर भी होगा विच इज़ माय फेवरेट ज्वेलरी क्लोथिंग और अदर स्टॉल्स यहाँ पर होंगे हीनस्ट आर्टिस्ट फेस पेंटिंग बाउंसी कासल और साइट विजिट यहाँ पर होगा वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स ये सूचना है इनकी ओर से स्पॉन्सरशिप स्टॉल्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शिवानी अरोरा को 021-870012 पर या फिर शांति रवि को 021-294-6394 पर मैं कृष आपका साथ दे रहा हूं और भी ऐसे सामाजिक सूचना है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा खासतौर पर 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे ये होने जा रहा है दिस सैटरडे 4:30 PM टू 8:30 PM मलयोला कम्युनिटी सेंटर में इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा फिलहाल आगे बढ़ते हुए और भी बहुत सारे रोमांटिक गाने मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो आप बेहद इन्जॉय करेंगे

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one humping Bollywood's biggest hits, Rhythm and Romance. ये segment आपके लिए जारी है और 30 minutes of non-stop music. Hopefully आपने बहुत ही enjoy किया होगा. I'm sure आपने enjoy किया होगा क्योंकि I was looking at the playlist जो मैंने आपके लिए रखा था. पहले प्यार का पहला गम कविता कृष्णमूर्ति, फिर तनहाई सोनू निगम, amazing song it is, रेत जरा सी अरिजीत सिंह, एक और बहुत ही प्यारा गाना, फिर बर्बाद जुतिन जुबिन नौटियाल की आवाज में हमने लिया था, फिर हमदर्द अरिजीत सिंह. तो अलग अलग वैरायटी आर्टिस्ट के आवाज़ में अगर हम बैक टू बैक रोमांटिक गाने सुनते हैं तो मूड बन जाता है. और ये सारे गाने बहुत ही प्यारे थे और उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा. बहुत ही जल्दी 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे पर बातें करेंगे जो इसी सैटरडे को होने जा रहा है 16th मई को मलयोला कम्युनिटी सेंटर में. फाइनल डिटेल्स पर जानकारी बहुत ही जल्दी. और फिलहाल अभी अगले गाने पर हम याद करना चाहेंगे हमारे तमाम लिसनर्स को जो अभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. टीम हम की ओर से बहुत सारे बेस्ट विशेज, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत सारा प्यार आप तक पहुँचे. एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, यही हम शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे. ये प्यारा गाना सुने उसके बाद में और भी जानकारी आपके लिए.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: यू गेट मनी गेट कैश
3: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
4: Bunnings has lowest prices nailed.
5: Burnett's 1kg Green Supreme Uncoated Lawn Seed, just $10.89. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
6: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
7: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
0: Night Cafe on Hum. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
8: Whispers of Ishq.
0: Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
9: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Hits, rhythm and romance jari hai aapke liye sare romantic songs ek ek karke main lekar aaunga aur raat 12 tak ye chalta rahega aapke liye. 147th Gurmit Remembrance Day ye hone ja raha hai, ek evening of remembrance aur recognition ye hoga. 16th May ko hoga, yani isi Saturday ko Malayola Community Center, address yaad rahe, 16 Wayakauri Place, Mangri, 4:30 PM to 8:30 PM ye hoga. Doors open at 4 PM. नेटवर्किंग टी और स्नैक्स यहाँ पर होगा शार्प 4:30 PM. फ्री एंट्री है ये, बिल्कुल फ्री इवेंट है आपके लिए और बहुत ही शानदार तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. कैंडल कमेमोरेशन होगा, आर्टिफैक्ट डिस्प्ले होगा, सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड होगा, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे, लाइव सिंगिंग, रोल प्ले, क्विजेज, स्पॉट प्राइजेज, स्पीचेज और बहुत कुछ यहाँ पर होगा. fijigirmitnz@gmail.com पर आप ईमेल करना कर सकते हैं अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं. तो 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे में आप ज़रूर भाग ले. फिजी तक जो पूर्वज हमारे आए थे फ्रॉम इंडिया, उनको याद किया जा रहा है, उनके स्ट्रगल्स को याद किया जा रहा है और सलाम किया जा रहा है कि उनकी वजह से बाकी जो पीढ़ी उनके बाद आए उन्होंने बहुत ही अच्छा लाइफ बिताया है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी रोमांटिक गाने आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं रिदम एंड रोमांस में.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: रिदम एंड रोमांस जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रात 12 तक हमारा साथ है. और एक और बहुत ही प्यारा शेर आपके लिए मैं पेश करना चाहूँगा. मोहब्बत नाम है एक गहरा एहसास का. मोहब्बत नाम है एक गहरा एहसास का, जो लफ्ज़ों में नहीं आता किसी राज का. जिसे मिल जाए वो खुश नसीब होता है, जिसे मिल जाए वो खुश नसीब होता है, और जो खो दे वो शायर बन जाता है. जैसे कि हम और आप शायर बन गए अभी फ़िलहाल. एक और प्यारा रोमांटिक सॉन्ग आपको सुनाते हैं. अगले घंटे पर मिलते हैं और भी तमाम जानकारी और रोमांटिक गानों के साथ में.

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free Power Shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
3: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
4: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
5: Showerdome.co.nz.
6: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good evening. For latest at 10, I'm Alexander Goldsmith. The finance minister has clapped back at Chris Hipkins' claims that Aucklanders have largely moved on from raising questions about lockdowns. Labor's leader made the comment after delivering a State of Auckland speech today. Nicola Willis says Hipkins' mistakes led to Aucklanders suffering.
8: And to dismiss that as something that's only the concern of the fringe shows a complete lack of understanding what everyday Aucklanders think and have experienced.
7: The government wants to reduce barriers for the entry of new products across agriculture, horticulture and veterinary care. It's introducing a bill to allow more reliance on the assessments of overseas regulators and for lower risk items to be processed faster. NetSafe has published a digital guardian guide to help talk to kids about online safety. It says over half of teens' parents are struggling to keep up with their children's digital lives. CEO Brent Carey says teenage reluctance to listen to advice doesn't mean parents shouldn't try.
9: Digital safety is part of everyday parenting now, and people need to connect and start these conversations around what good looks like online.
7: And in sport, football updates brought to you by Hisense. All Whites coach Darren Baisley has revealed a squad for next month's World Cup in North America. EPL star Chris Wood will captain New Zealand.
10: It'll be an absolute privilege to be leading the side out as captain at this year's World Cup. There's going to be thousands of Kiwis out supporting over in America, Canada and New Mexico. And I hope that we can do you all proud and show the world what we're capable of.
11: Sports News.
6: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
12: वेलकम बैक एवरीवन, नाइट कैफे में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ। इट्स पास्ट 10 न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में चलो शुरू करते हैं आपके लिए रिदम एंड रोमांस। आपको बता दूं कि नाइट कैफे में बहुत कुछ इस घंटे पर रहेगा। खासतौर पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ अबाउट द ग्रैंड मस्ती नाइट जो होने को है। साथ ही में चेडल और फ्लाई अवे फ्रेंजी और बैक योर बैकयार्ड बीट्स जो हमारे प्रमोशंस है आपके लिए, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है टू आवर लोकल स्टार्स, इस पर भी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, आपसे बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल देर करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए रिदम एंड रोमांस ऑफ दिस आवर।
6: जज्बात की नरमी, मोहब्बत की राज,
11: विस्पर्स ऑफ इश्क।
12: नाइट कैफे सेगमेंट तो जारी है लेकिन रिदम एंड रोमांस भी आपके लिए 8 to midnight जारी रहेगा। और 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक में रिदम एंड रोमांस हम लेकर आते हैं। और रिदम ऐसे, रोमांस ऐसे, रोमांटिक गाने, सेंशुअस गाने, वो सभी कुछ रहता है आपके लिए। बैक टू बैक हम पेश करने जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। आप ये इन्जॉय करें क्योंकि लवली सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स का बहुत ही प्यारा लाइन आप मैं आपके लिए लाया हूँ और एक के बाद एक वो प्ले करूँगा आपके लिए बगैर कोई डिस्टर्बेंस के. हम बातें नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स ताकि आप इन गानों को एंजॉय कर सके. मिलते हैं 30 मिनट्स के उस पार. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. एंजॉय एवरीवन.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. उम्मीद करता हूँ कि 30 minutes of non-stop music आपने enjoy किया होगा. मैं भी इन गानों को सुन रहा था और interesting lineup मैं भी देख रहा था कि गाने बहुत ही मज़ेदार मैंने आपके लिए चुना है. फिर कभी अरिजीत सिंह, खैरियत अरिजीत सिंह, फिर बाजीगर कुमार सानूवाल का याग्निक, हम तुम बाबुल सुप्रियोवाल का याग्निक, और तू मुझे सोच कभी कह के वेहानिया डैनी, और फिर इश्क मुबारक अरिजीत सिंह. वॉट अ वंडरफुल चॉइसेस जो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स मैं आपके लिए लाया हूँ, और आई एम श्योर आपने भी पसंद किया होगा क्योंकि ये गाने बहुत मज़ेदार है. अलग अलग आर्टिस्ट की आवाज़ में एक के बाद एक सुनना और भी मज़ेदार होता है. चलो आगे बढ़ते हुए और भी बहुत कुछ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, खासतौर पर वाइब मिक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द ग्रैंड मस्ती नाइट. 23 मई को ये होने जा रहा है नेटबॉल मनुरेवा में, फीचरिंग फीजीज रिनाउंड आरजेज, सत्यानंद, जय भैया जी, राउडी नमन और डांसिंग लेजेंड चरफर कमिंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर 17 ईयर्स. 5 to 6 मसाला मिक्स किट्स होगा ऑन स्टेज, कॉमेडी और डांस और मस्ती मैडनेस रहेगा ऑन स्टेज. ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा को भी आप सुन पाएंगे. अमेजिंग मोंटो मोनिका परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, और ये बहुत सालों से परफॉर्म करते आए हैं. लाजवाब डांस इनका होता है. युवा डांस ग्रुप NZ टॉप DJs होगा. लॉट्स ऑफ गिवअवेज टू बी वन. टिकट्स आप हंटर्स फूड टाउन पापटोए, जय फ्रेश मार्ट पापटोए, गेट फ्रेश सुपर मार्केट, केस हेयर एंड ब्यूटी सलोन, विकेट चिकन और जेंडर हेयर एंड ब्यूटी सलोन से आप ले पाएंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. एक और बहुत ही प्यारा गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ. आई एम श्योर ये गाना बहुत एंजॉय करेंगे.

0: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars with big deals, big choices and big savings. On now but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
2: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. On now at Auckland Showgrounds. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta go to the
3: boat show. Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
4: Night Cafe. You're listening to Krish.
6: Let's go.
7: रिदम एंड रोमेंस जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. क्या आप कीवी वर्ड विजिट है? पुट इट टू द टेस्ट फॉर योर चांस टू विन कैश विद चेडल. ये आपको ज़रूर करना है. बहुत आसान होता है और कीवी वर्ड विजिट अगर आप है तो आपके लिए और भी आसान होगा. कीवी वर्ड सेइंग या फ्रेज आपको गेस करना है, क्रैक करना है एंड यू आर इन द ड्रॉ. $100 अ डे जीतने का मौका रहेगा. जल्दी जवाब देते हैं विदाउट हिंट्स तो आपको बोनस एंट्री भी मिल सकता है, $7,000 टू बी वन. और जितना ज़्यादा डेज आप खेलते हैं द बेटर योर ऑड्स आर. आज ही रोवा ऐप डाउनलोड कीजिए अगर नहीं है और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए शामिल कर रहे हैं रिदम एंड रोमेंस में. ये जो गाना है मुझे बेहद पसंद है, सुनो ना संगमरमर. अरिजीत सिंह की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया है. एक टाइम था जब इस गाने को ऑन रिपीट में सुनता था क्योंकि अरिजीत के गाने और वो भी रोमांटिक गाने बहुत अच्छे लगते हैं और रिदम एंड रोमांस के लिए इनके गाने परफेक्ट होते हैं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ke saath hai. Hum fly away frenzy ke baare mein to aapne suna hoga. Return air trip to Fiji jeetne ka mauka rahega. Imagine kijiyega ki aap yahan ka cold winter escape karke ja rahe hain to sandy beaches, crystal clear waters aur Piwa Island vibes jo Fiji mein hoga. Ultimate tropical getaway ke liye yahan par aapko jana hoga. Subah 8 baje, din mein 11 baje, sham ko dopahar ko 1 baje aur sham 5 baje hum special code words aapko diye jayenge. जैसे ही ये कोड आप सुनते हैं 60 मिनट्स के अंदर आपको ये कोड रोवा में डालना होगा और ड्रो में आप शामिल हो जाएंगे टू विन रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, हमारी वेबसाइट आप विजिट कर पाएंगे. इमेजिन कीजिए कि आप स्ट्रेस को और कोल्ड को स्वैप कर सकते हैं फॉर सनसेट्स. आई वुड डू दैट एनी डे. तो कीप लिसनिंग, स्टे रेडी एंड योर आइलैंड गेट अवे कुड बी जस्ट वन कोड वर्ड अवे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, जारी है आपके लिए रिदम एंड रोमांस ओनली ऑन हम.
3: ना आजमाएंगे तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार.

0: Cafe on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
4: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
3: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: The Breakfast Show with VJ

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इंटरेस्टिंग खबरें भी आप तक हम लेकर आते हैं, स्पेशली हमारे लोकल आर्टिस्ट के लिए जो बहुत ही अनोखा किया गया है एनजेट म्यूजिक मंथ. आपके लिए बैकी और बैकयार्ड बीट्स जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है कि उनके टैलेंट को भी आगे लाया जाए. तो 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM, 10 PM वीकडेज इनके गाने पेश किए जाएंगे. आपको वोट करना होगा क्योंकि आपके वोटिंग के आधार पर ही टॉप 3 आर्टिस्ट को चुना जाएगा. और 5599 पर कीवर्ड MM के साथ अब आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट के नाम भेज पाएंगे. और इट डजंट स्टॉप देयर, ऑन एयर के अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाए, आर्टिस्ट के वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाए. विनर की घोषणा टोटल एंगेजमेंट से होगी, विच मींस योर रेडियो वोट्स प्लस सोशल लव. तो आज ही ये करें. अगर आप एक लोकल आर्टिस्ट हैं, आपके पास आपका बेस्ट ट्रैक और बायो है, आप भेजें हम एट buzz@humfm.com पर और MM टेक्स्ट करें 5599 पर. आपको डिटेल्स मिल जाएगा ताकि आपके गाने को हम रेडियो पर पेश करें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. फिलहाल ये गाना बहुत ही प्यारा है, आप ये एंजॉय करें. सोनू निगम ने गाया है और गाने के लिरिक्स बहुत ही प्यारे हैं.

0: Today on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
9: City flair or mountain air? Enjoy both with Jetstar's Explore Local Sale on now. Plan a New Zealand trip with fares like Auckland to Christchurch from just $63 or Christchurch to Hamilton from just $71.
10: That's choice.
9: It's time to explore your own backyard. Hurry, sale ends midnight 18th May unless sold out. One way, excludes checked bags, travel dates and conditions apply. Book now at jetstar.com.
11: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
12: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
11: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
12: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
13: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Rhythm and Romance aapke liye jaari hai aur kuch hi der tak aur hum aapka saath denge. Vakt ke saath sab kuch badal jata hai. Vakt ke saath sab kuch badal jata hai. Par kuch dard dil mein hi reh jata hai. Muskurahat chehre par aa jati hai zarur. Muskurahat chehre par aa jati hai zarur. Par andar ka tufaan chup jata hai. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. अगर आप भी किसी को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अगर कोई आपसे दूर है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी आप रीयूनाइट होंगे, बहुत जल्दी आप जुड़ेंगे और आपका ये अलग दुनिया फिर शुरू होगा. प्यार से भरा दुनिया ये शुरू होगा और आप हैप्पीली एवर आफ्टर, ये जो हम हमेशा कहते हैं हैप्पी एंडिंग के लिए, तो ऐसा ही आपके साथ हो. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ये जो प्यारा गाना आप सुने, बहुत ही मज़ेदार गाना है, बहुत ही रोमांटिक है, आप इन्जॉय करें. और जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स और नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, आपको भी याद करते हैं अगले गाने पर.

नाइट कैफे रिदम एंड रोमांस यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. बहुत ही प्यारा लगा आपका साथ, बहुत ही मज़ेदार था. हमारी मुलाकात होती है अब सैटरडे मॉर्निंग को. मैं आ जाऊँगा सुबह 6 बजे आपका साथ देने के लिए सैटरडे ब्रेकफास्ट शो. अपना बहुत ही ख्याल रखे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, क्रिश का बहुत सारा प्यार. कल फ्राइडे अच्छी तरह बीते और सैटरडे को तो मुलाकात होती है और वीकेंड में भी संडे को भी संडे इवनिंग को मुलाकात होती है 6 बजे शाम 6 से लेकर 12 तक. अपना बहुत ही ख्याल रखे, क्रिश का बहुत सारा प्यार. नमस्ते.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. You won't want to miss this on the 16th and 17th of May at Mitre 10.

0: flight on Hum.
1: मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे एंड Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Auckland, this weekend, $100 spend karo in store at My Titan Mega Westgate and Henderson or power $20 My Titan gift card. Sirf Saturday and Sunday, T's and C's apply. More value, more projects, more savings. Jaldi kijiye, My Titan Mega Westgate and Henderson.
3: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepy head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: नाइट फ्लाइट

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
6: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब
3: क्या अपनी पत्नी से रमन?
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
4: है।
0: 6 to 10 AM. Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good morning, I'm Lucy Walker with the latest at 6. One person is dead and another critically injured after a house fire in Christchurch's Marehō. The blaze, reported at around 8:30 last night, is now under control. Three other people have moderate and serious injuries and two have minor injuries. Cordons are in place around Whitehall Street and Hills Road for a scene exam. A new ASB survey shows global uncertainty is making many Kiwis feel less confident about their money. It's found investor confidence dropped during the March quarter as global tensions grew. Economist Chris Tennant-Brown has a word of advice.
6: It's a really complicated and challenging environment for many investors at the moment. There's a lot of negative headlines, but it shouldn't get in the way of sticking with long-term, well-planned out goals.
5: US host Stephen Colbert says it's sunk in that The Late Show has only 1 week left. Last year, CBS decided to axe the show after more than 30 years. Colbert told his late-night peers on a podcast that the last show was on May 21st.
7: I think the set has longer, or the crew has time to wrap, but I think they're going to start tearing it out immediately. I know my staff is not paid like the next day, like they're out. I'm already packed.
5: In sport, Kiwi golfer Ryan Fox has slipped down the leaderboard after a promising start to the US PGA Championship in Pennsylvania. At one stage, he sat in second, but is in 11th spot near the end of his opening round. Aldridge Podgieter, Stephen Yeager and Minwoo Lee are the pace setters. And in rugby league with Machinery House, the Warriors have scorched any talk of Luke Metcalf leaving the club this year. He signed a deal to play with the Dragons, but Warriors CEO Cameron George says he'll play out the season with them.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
8: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Ann's Funeral Home and On-site Cremations.
9: सूचित किया जाता है कि मनुरेवा के अरविंद भाई वल्लभ की मां मीताबेन की सास यानी नावो सेंट्रल स्टोव फिजी के मालिक स्वर्गीय वनमाली भाई वल्लभ की पत्नी जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई. अंतिम संस्कार आज 4 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. मनुरेवा के अरविंद भाई वल्लभ की मां यानी मीताबेन की सास नावो सेंट्रल स्टोर पीजी के मालिक स्वर्गीय वनमाली भाई वल्लभ की पत्नी जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई. अंतिम संस्कार आज 4 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा.
8: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: जबरदस्त हिट्स
10: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
10: हम
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: 7.5 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 18 degrees hoga aur overnight kam se kam 8 degrees aaj aap feel karne wale hain. Mausam saaf rahega aur aaj kafi chilly start to the day aap experience karenge. Sunset 5:24 PM par hoga.
0: With Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
9: 3 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर. नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका. वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज फ्राइडे है 15th of May. आज की ये सुबह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. वापस आ गए हैं एक बार फिर आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज के इस दिन की शुरुआत आपके साथ हम करने के लिए तैयार हैं. आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और आप सभी को भी आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। माय गॉड, इतनी ज्यादा ठंडी है बाहर, ऐसे उंगलियों में दर्द होना शुरू हो गया मेरे तो।
9: हाँ, अभी 7.5 degrees आप फील कर रहे हैं ना?
2: But it's not exactly 7.5 degrees. I wonder why is it like that? की टेम्परेचर होता है कुछ और फीलिंग होती है कुछ और।
9: अच्छा,
2: या I don't know what the situation with weather is, yaar. Seriously, har subah to itni zyada thandi hoti hai and later on the situation changes, but anyways, aaj bhi aisa hi rahega. Aaj what's the highest temperature jo feel kar around 19 degrees, yeah. So around 19 degrees tak aaj rahega baad mein.
9: Aur aaj ki raat bhi kal ki tarah thandi aap mehsoos karne wale hain, aur kal ka mausam bhi saaf aur suhana. Kal to overnight kam se kam 7 degrees jo hai ye hone wala hai. To aaj ke din aur is weekend ke bare mein kafi baatein karne ke liye hum aa gaye hain, aur abhi se 4 ghanton tak aapka saath hum dene wale hain on the breakfast show with Vijay and Pooja. Hopefully kal ka din aapka acha gaya hoga, badhiya gaya hoga, aur is nayi subah ko aapke liye badhiya banane ki apni or se hum koshish zarur karte rahenge.

0: सनी साइड अप।
1: तो आज सनी साइड अप जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं, और ये जो स्टोरी है इट्स कनेक्टेड टू टुडे द 15th ऑफ मई, क्योंकि न्यूजीलैंड में 15th ऑफ मई को एक बहुत जरूरी दिन जो है ये मार्क किया जाता है। नाउ बिफोर आई एक्चुअली रिवील, जस्ट इन केस इफ यू फॉरगॉटन कि आज कौन सा दिन मार्क किया जाता है, आज की स्टोरी पहले आपको सुनाते हैं, देन आई विल यू नो कि क्या कनेक्शन है इनके बीच में। सो फ्लोरिडा यूएसए में 2019 में घटना जो है ये घटी थी। अपेरेंटली वहां पर यूनिवर्सिटी स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए कॉलेज कलर्स इवेंट जो है ये होता है। एंड व्हाट इज कॉलेज कलर्स इवेंट इफ यू मे आस्क, सो दिस इज बेसिकली जहां पर लोग अपने फेवरेट कॉलेज का जो टी शर्ट है या कलर्स है ये पहनते हैं, या फिर जो ऑफिशियल मर्चेंडाइज है ये पहनते हैं। एंड द डे इज बेसिकली अ फन वे टू शोकेस जो स्कूल का स्पिरिट है एंड टू कनेक्ट विद अदर्स जो सेम कॉलेज को पसंद करते हैं या फिर उनमें बहुत प्राइड लेते हैं।
2: ओके,
1: सो नेशनल कॉलेज कलर्स डे जो है ये इनफैक्ट यूएस में मार्क होता है हर साल आई थिंक अगस्त महीने में। एंड 2019 में जब ये कॉलेज कलर्स इवेंट जो है ये हुआ था, तो फ्लोरिडा के एक स्कूल में जहाँ पर फोर्थ ग्रेड का एक स्टूडेंट है, इन्होंने अपने फेवरेट कॉलेज का जो टी शर्ट है ये पहनने का फैसला किया। एंड उनका टी शर्ट वॉज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी। नाउ अपेरेंटली उनके पास उस स्कूल का या फिर उस कॉलेज का कोई एक ऑफिशियल मर्चेंडाइज नहीं था, सो दैट्स व्हाई इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी का जो साइन है UT, ये उन्होंने एक वाइट पेपर पर ड्रॉ किया और फिर उस पेपर को एक ऑरेंज शर्ट पर चिपका लिया। व्हेन ही वो दिस टू हिज स्कूल, अपेरेंटली ही वॉज शेम्ड एंड बुलीड फॉर वेयरिंग अ होममेड टी शर्ट एंड नॉट एन ऑफिशियल मर्चेंडाइज और नॉट अ प्रॉपर वन, क्योंकि उन्होंने खुद ड्रॉइंग कर ये पहनी थी। एंड फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट्स इज लाइक ये फोर, इट्स लाइक वेरी यंग स्टूडेंट्स, बहुत छोटे होते हैं। इमेजिन दैट यंग चाइल्ड फेसिंग बुलिंग फॉर वेयरिंग समथिंग ही फेल्ट प्राउड अबाउट बिकॉज ही हैड मेड इट हिमसेल्फ, इजंट इट। तो जब ये घटना घटी तो उनके जो टीचर हैं उन्होंने इनकी स्टोरी ऑनलाइन शेयर की, और ऑफ कोर्स इस वजह से उनको क्विकली अटेंशन भी मिला फॉर बोथ द बुलिंग जो उन्होंने फेस किया था, और साथ में जो क्रिएटिविटी थी उनकी बिहाइंड द डिजाइन ऑफ द टी शर्ट यूटी का, जो उन्होंने ड्रॉइंग कर पेपर में डालकर इन पेपर अपने ऑरेंज टी शर्ट पर चिपकाया था। द स्टोरी सून टर्न इनटू अ पॉजिटिव मोमेंट जब जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी है उन्होंने उस लड़के के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे, और उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी जो हैंडमेड ड्रॉइंग थी उसे वो अपना ऑफिशियल टी शर्ट लोगो जो है ये बनाएंगे। एंड इट वॉज सोल्ड थ्रू इट्स कैंपस स्टोर, जो डिजाइन है इट बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर विद टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शर्ट्स सोल्ड एंड नियरली $1 million जो है ये इकट्ठा हुए थे फॉर एंटी बुलिंग कॉजेज। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी है बाद में चलकर उन्होंने उस स्टूडेंट को, उस फोर्थ ग्रेडर को इनफैक्ट 4-year स्कॉलरशिप भी दिया फ्यूचर के लिए, मेकिंग द स्टोरी अ वाइडली सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस विनिंग ओवर बुलिंग। सो आज इस स्टोरी के पीछे, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी आई वुड से, शेयर करने का रीजन ये भी है क्योंकि आज न्यूजीलैंड में मार्क किया जाता है पिंक शर्ट डे, अ डे जहां न्यूजीलैंडर्स दे स्टैंड टुगेदर टू स्प्रेड काइंडनेस, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी और एक्सटेंड लेते हैं अगेंस्ट बुलिंग। एंड पिंक शर्ट पहनकर दे शो देयर सपोर्ट टुवर्ड्स दिस डे दैट यस, हम इस फेवर में है, इस आइडिया के फेवर में है कि कोई भी स्पेस हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, इट शुड बी सेफ फॉर एवरीवन एंड देयर शुडन्ट बी बुलिंग इन्वॉल्व्ड। इनफैक्ट न्यूजीलैंड में ज्यादातर इसे स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में बढ़ते हुए देखा गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ बुलिंग हैपेंड इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस, और इसी के रिगार्ड में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो पिंक शेड डे है इसकी शुरुआत की गई थी।
2: ये बहुत ही खास और ज़रूरी दिन है, इसके बारे में जानना समझना, और अगर आप सही तरीके से समझते हैं तो समझाना भी उतना ही ज़रूरी है। जो लोग आपके आसपास हैं, जो आपकी फैमिली में हैं, आपके घर पर बच्चे हैं अगर, तो उनको इसके बारे में बताना और समझाना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अ वेरी इम्पोर्टेंट डे फॉर एवरीवन बेसिकली, कि एक तो जो इसका शिकार होते हैं और दूसरा जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को भी ये बताना और समझाना और सही रास्ते पर लाना बहुत ही ज़रूरी है. सो अ क्रूशियल डे फॉर ऑल ऑफ अस टू मार्क एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आज पिंक शर्ट डे. एंटी बुलिंग के बारे में जहाँ तक जितनी हो सके बातें आप करें और सही बातें करें, ये भी बहुत ही ज़रूरी है.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chubo jao, papio. Chubo jao.
0: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
0: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09-846-993. Or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
6: The Red Hot sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
7: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
8: अच्छा,
7: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
13: Global Headlines.
2: आज सुबह ग्लोबल हेडलाइंस में चाइनीज लीडर शी जिनपिंग ने यूएस चाइना रिश्ते को दुनिया का सबसे जरूरी रिश्ता बताया और प्रेसिडेंट ट्रंप को वॉर्न किया कि ताइवान का मामला मिसहैंडल करने से एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकता है. समिट के दौरान ईरान वो और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पर बात हुई, जहां दोनों नेता स्ट्रेट ऑफ होमूस को पूरी तरह से खोलने पर राजी हुए ताकि तेल की सप्लाई नॉर्मल हो सके. जी ने जंग खत्म करने में मदद करने की पेशकश की है और आज दोनों लीडर्स चाय और लंच पर दोबारा मिलेंगे, जिसके बाद ट्रंप वाशिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे. ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक यूएस अथॉरिटीज भारतीय बिलियनेयर गौतम अदानी के खिलाफ चल रहे फ्रॉड चार्जेस को जल्द ही खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उन पर साल भर से चल रहा क्रिमिनल केस बंद हो सकता है. जस्टिस डिपार्टमेंट इस हफ्ते ही चार्जेस को ड्रॉप करने का अनाउंसमेंट कर सकता है, जबकि एसईसी भी नवंबर 2024 के सिविल फ्रॉड मामले को मॉनेटरी पेनल्टी के साथ सेटल करने पर विचार कर रहा है. केसेस खत्म होने से अदानी ग्रुप को बड़ा फायदा होगा, जिससे उन्हें इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में वापस लौटने और अपने एक्सपेंशन प्लान्स को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा. फिजी में चीफ जस्टिस सलेसी तेमो ने भूतपूर्व अटोर्नी जनरल अय्याज सैयद खय्यूम और भूतपूर्व सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम के केस का फैसला 26 जून तक टाल दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अपना जजमेंट तैयार करने के लिए और वक्त चाहिए. सैयद खय्यूम पर अब्यूज ऑफ ऑफिस और सनीम पर करप्ट बेनिफिट लेने के आरोप हैं, जिनमें जुर्म साबित होने पर 10 सालों तक की जेल की सजा हो सकती है. आईपीएल के एक मैच में आज सुबह मुंबई इंडियंस की जीत पंजाब किंग्स के खिलाफ हुई। इस मैच में पहले पंजाब किंग्स ने बैटिंग की और 8 खिलाड़ी खोकर 200 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने 19.5 ओवर्स में 4 खिलाड़ी खोकर 205 रन बना लिए थे। कल सुबह लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगा। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
14: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
15: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Jasmine Sandler's Meet Brothers को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अभी 6:30 बज रहे हैं और आज 15th of May ऑल्सो वेरी स्पेशल क्योंकि टुडे इज द फाइनल डे ऑफ हम फ्लाई अवे फ्रेंजी.
1: Yes, हम आपको रिमाइंड कराते आ रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक. दिस इज द फाइनल वीक. दिस इज द फाइनल वीक. और अगर आपने पार्ट नहीं लिया है तो जरूर पार्टिसिपेट कर लो बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विन अ रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. अभी जितने लोगों ने भाग लिया उनके लिए तो गुड, अच्छी बात है इफ यू विन, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो है जीतने के लिए. पर जिन्होंने पार्ट नहीं लिया है उनके लिए टुडे इज द लास्ट डे टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट.
0: ओके, सो मेक श्योर यू कीप लिस्टिंग. आज 8 बजे के बाद, दिन में 11 बजे के बाद, फिर 1 बजे के बाद और शाम 5 बजे के बाद जो कोड वर्ड्स हैं ये रिवील किए जाएंगे और उसके बाद 1 घंटे का वक्त आपके पास होगा टू एंटर दिस कोड ऑन कोड वर्ड ऑन रोवर. और जब ये आप सही तरीके से कर लेते हैं, क्या पता आज आखिरी दिन आपकी जो एंट्री हो ये सबसे लकी हो. इसीलिए स्टे ट्यून. फिलहाल बॉलीवुड में भी तमाम चीज़ें हो रही हैं, कई रिपोर्टें आ रही हैं और धुरंधर 2 जो है इसके OTT रिलीज को लेकर काफ़ी बातें जो है ये हो रही थी. 56 डेज जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी चली है धुरंधर 2 की.
1: तो अभी कुछ कंफर्मेशन आया कि कब तक OTT रिलीज होगी?
0: जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक धुरंधर 2 जो है इसे ओवरनाइट इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करना शुरू होना था.
1: मतलब आज से ये अवेलेबल था, होना चाहिए था.
0: हाँ, होना चाहिए इंटरनेशनली, क्योंकि मैंने तो अभी चेक नहीं किया है. लेकिन इंडिया में जो लोग हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि द फिल्म इज स्लेटेड टू ड्रॉप ऑन जियो हॉटस्टार लेटर.
1: इंटरनेशनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है लेकिन इंडिया में ये जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल रहेगा.
0: यस,
1: हाउ कम दिस टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कैसे चूज हो गया?
0: बिकॉज़ आई थिंक जियो हॉटस्टार जो है दे हैव एक्वायर्ड द राइट्स.
1: हां,
0: वो सारी चीजें. और जियो हॉटस्टार आई एम नॉट श्योर ग्लोबली ये अवेलेबल है या नहीं.
1: अवेलेबल है
0: तो अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं तो फिल्म अवेलेबल होनी चाहिए. तो शायद नेटफ्लिक्स के साथ उन्होंने कोई डील किया होगा कि आप इंटरनेशनली इसको रिलीज करो,
1: इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटरनेशनल डिजिटल पार्टनर्स बन जाओ और ये नेशनल बन जाएंगे.
0: हाँ, और इंडिया में हम अपना संभाल लेंगे, खुद का देख लेंगे.
1: हम देख लेंगे. ओके, इंटरेस्टिंग. बट ऐसा कभी हुआ नहीं ना कि दो डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो है दे केम ऑन बोर्ड फॉर वन पर्टिकुलर मूवी एंड दैट टू सच अ बिग मूवी. सो लेट्स सी कि आफ्टर इट्स रिलीज इसे अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कितना कंज्यूम किया जाता है और उस हिसाब से ये किस नंबर पर यू नो रहता है.
0: आप चेकआउट करें नेटफ्लिक्स को और देखें कि क्या वहां पर ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल.
1: I can do it now if you give me a few minutes. Not a few minutes in fact, yeah, just give me 1 minute and I can find it out for you.
0: Okay.
1: कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स, क्योंकि आज से आपने बोला ये होना चाहिए था ना.
0: हाँ, इंटरनेशनली 14th May जो है डेट है ये दिया गया है, बट टाइम जोन की वजह से दे माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस हियर एंड देयर.
1: नहीं है, है अवेलेबल है, इट्स ऑलरेडी देयर.
0: ओके, इट्स ऑलरेडी देयर.
1: या
0: सो इंटरनेशनली अब धुरंधर 2 OTT पर अवेलेबल है. अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं
1: नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. ए देखो हम आ गए.
2: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी Luke warm. A taste बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
3: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.

0: accurate traffic.
1: You gotta go to the boat show.
2: Fine weather all day, lots of sunshine, got a high of 18 degrees. No major delays on motorways. Northern, pretty quick all the way in. 17 minutes from Constellation Drive, 32 from Silverdale. Northwestern, 23 minutes in from Massey. Now we're a little slow at the other two, heavy on the causeway, but otherwise fine. Southern, 23 minutes in from Monaco. Slow at Manurewa and slowing at Mount Wellington. Southwestern, all good.
1: Don't miss the Hutch Wilco New Zealand Boat Show this Thursday to Sunday at Auckland Showgrounds.
3: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your hop card, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
4: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping aid beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
8: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code Big Switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
9: Forget counting sheep, count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric blankets, 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: Breakfast Catch Up.
12: 24 मिनट रह गए हैं अब 7 बजने में और आज फ्राइडे 15th ऑफ मई का दिन आपके लिए और भी स्पेशल हो सकता है प्रोवाइडेड आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं क्योंकि आज दरवाजे खुल रहे हैं फूड फॉर लेस सुपरमार्केट न्यूलिन अंडर न्यू मैनेजमेंट 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलिन में
13: और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर पहुँचे और ढेर सारे इंस्टो स्पेशल्स जो है ओपनिंग डे के तहत आप इनसे फायदा उठा सकते हैं एंड ऑफ कोर्स देयर इज सम मोर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी क्योंकि हम की टीम यहाँ पर रहेगी दिन में 11 से लेकर 2 बजे के बीच एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एवरी यावा आप जितने लोग यहाँ पर आएंगे शॉपिंग करने आप में से कोई एक $100 का शॉपिंग वाउचर जो है ये जीतेगा एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब सम हम टोट बैग्स शॉपिंग बैग्स जो बोलते हैं ना ये भी आप हमसे ले सकते हैं
12: तो आप भर भर के आराम से शॉपिंग करें और जब शॉपिंग करेंगे तो 3 विनर्स होंगे इनफैक्ट एक विनर होगा 11 से 12 बजे एक होगा 12 से 1 और तीसरा विजेता 1 से 2 जिनको $100 ईच जो है ये मिलने वाला है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं आपको बताऊँ आज अगर आप आएंगे फूड फॉर लेस सुपर मार्केट न्यूलिन 5 लीटर डायनस कैनोला ऑयल इज ओनली $14.99
13: Oh, nice.
12: Just imagine, $14.99 में ये आपको मिलेगा और उसके अलावा अन्य तमाम स्पेशल्स जो है यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं एम्बर राइस जो है $8.99 केजी जो है ये आपको मिलने वाला है और उसके अलावा तमाम इंस्टो स्पेशल्स आपको आज दिए जाएंगे ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल्स जो है ये फ्रेश टेस्ट के जो नमकीन है जो लोग यू नो मिक्स क्या बोलते हैं भुजिया जो खाते हैं मुरकू जो खाते हैं दे आर ऑल गोइंग फॉर $4.49 ईच टुडे
13: वेरी नाइस सो देयर आर सो मेनी स्पेशल्स एंड ऑफ कोर्स इट्स द फर्स्ट डे इट्स द ओपनिंग डे तो बेहतरीन स्पेशल्स तो होंगे ही होंगे एंड इफ यू वांट टू चेक देम आउट या फिर उनसे अगर आपको फायदा उठाना है तो डेफिनेटली आज आपको पहुंच जाना है एट 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलिन जहां पर फूड फॉर लेस ये ओपन हो रहा है अंडर न्यू मैनेजमेंट
12: दिन में 11 बजे से हम यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद वी होप टू मीट यू देयर जहाँ पर इनक्रेडिबल डील्स एंड ऑफर्स आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ओपनिंग स्पेशल्स में
13: फिलहाल चलिए एक सवाल आपके लिए है और इसका जवाब देते हुए आप हमारे साथ प्रोग्राम में जरूर शामिल हो सकते हैं विल फाइंड आउट कि आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया अभी नहीं ये थोड़ी देर बाद रहेगा बट एटलीस्ट अभी आप कोशिश कर सकते हैं अपना आंसर हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन इज वेरी सिंपल आपको बस ध्यान से सुनना है फिर जवाब देना है. आई एम बिटवीन 4 and 6. आई एम नॉट 5. वट एम आई?
12: आई एम बिटवीन 4 and 6 बट नॉट 5.
13: वट एम आई?
12: अच्छा,
13: तो जल्दी से अपना जवाब आप भेजिए. बी एफ लिखिए सबसे पहले और फिर उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम लिखकर 5599 पर हमारे पास आप सेंड कर दें.

0: अभी 12:30 रह गए हैं 7 बजने में ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। सवाल आपने पूछा, दो ही लोगों ने अटेम्प्ट किया।
1: आई नो यार, इतना सिंपल क्वेश्चन, उसके बावजूद ऐसा रिजल्ट इज हार्ट ब्रेकिंग, डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग।
0: तो आप सवाल फिर से पूछ लो, शायद किसी और को इंटरेस्ट हो जाए जवाब देने में।
1: Yeah, and probably अगर आपने मिस कर दिया था when I asked the question, so here we go. The question is very simple. I am between 4 and 6. I am not 5. What am I? It's really simple because सवाल में ही जवाब है. So I am between 4 and 6. I am not 5. What am I? Let's see if you can figure out कि क्या है आज का इस सवाल का सही जवाब।
0: BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं। और 7 बजे न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद जो करेक्ट आंसर है ये हम आपको देंगे। तमाम खबरें जो है ये भी आ रही हैं, और अगर आपने मिस आउट कर दिया है, क्राइस्टचर्च में एक घर में लगी आग में एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि 5 और लोग जो हैं ये घायल हुए हैं। 3 अदर पीपल हैव मॉडरेट एंड सीरियस इंजरीज, 2 को माइनर इंजरीज आई हैं। सुपरिटेंडेंट लेन टोड जो कि क्राइस्टचर्च मेट्रो एरिया कमांडर है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस आग में एक व्यक्ति की जान चली गई है। कल रात 8:30 के वक्त इस आग की जानकारी जो है ये दी गई थी, और अभी सीन इन्वेस्टिगेशंस जो है ये चल रहा है। इसके बारे में जैसे ही कुछ और खबरें हमारे हाथ लगती हैं ये भी हम आपके लिए हम पर ज़रूर लेकर आएंगे और इसके बारे में डिटेल्स ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपको देंगे। दूसरी तरफ एक अमेरिका में एक क्या बोलते हैं, टेक्नीशियन है या टैकी है, जो भी आप कहना चाहें वो हैं, जिन पर सोशल मीडिया और दुनिया भर के लोगों का ध्यान जो है ये चला गया क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं कि ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस भेजे हैं।
1: 2000 से ज़्यादा?
0: यस। And he is a software engineer with 25 years of experience. और उनका कहना है कि he was having a hard time believing कि वो unhireable हैं, और बार बार बार बार ये apply करते हैं लेकिन इनको कोई response ही नहीं आता।
1: My goodness. So it's something that people are facing everywhere. It's not just a story of one particular country.
0: फिलहाल गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस आपके आए हैं, थैंक यू सो मच आपको। सबसे पहले मैंडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए।
1: और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज हमारे पास मैसेज आया था राज का। राज, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, आपके साथ के लिए।
0: मिस्टर मठा मठा, राम राम, जय माता दी, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, आपको भी ये दिन ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
1: और उसके साथ साथ आज हमारे पास कुछ और भी मैसेजेस आए हैं, इनफैक्ट जस्ट लाइक एवरी मॉर्निंग बॉबी मान जी का भी गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। हेलो पूजा एंड विजय, सुप्रभात, आपका शुक्रवार शुभ हो, सप्तांत का आनंद ले, जय माता दी, माँ की आशीर्वाद आप पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच बॉबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए और आपके साथ के लिए भी। फिर हमने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब इन्होंने दिया और कुछ और लोगों के आंसर्स आए हैं, सो विल डेफिनेटली हैव अ लुक वेरी क्विकली। आज सबसे पहले जवाब हमारे पास जो हमारे सवाल का दिया था वो थे कुशाल, कुशाल के बाद राज, रोनिल राज, इनका आंसर जो है ये आया था। एक और एक मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है, सफर कटता नहीं तेरे साथ के बिना, हर खुशी अधूरी लगे तेरे बिना, तू पास हो तो रास्ते भी गुलजार लगते हैं, वरना ये दुनिया भी वीरान लगे तेरे बिना। टू माय हस्बैंड जगमोहन जो इंडिया में है लेकिन बहुत ही जल्द न्यूजीलैंड आने वाले हैं, करण की ओर से ये मैसेज आया है।
0: ओके, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। अभी 9 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और आज का पहला थ्रोबैक आप एंजॉय करें, इसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम लेकर आएंगे।

0: Go.nz. 3 minute today. Hey, Sat Bajkar. Welcome to Morning Madness on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Aapke liye jari hai 104.2 FM aur Rover par aap duniya ke kisi bhi kone se hamare saath jude hain. Good morning and welcome.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते. आप सभी का स्पेशल वेलकम है आज के सफर में. सो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच इफ यू जॉइनिंग अस फ्रॉम लास्ट आवर. और अभी भी हमारे साथ आप हैं. हमने पिछले घंटे क्वेश्चन भी पूछा था तो उसका जवाब जो है ये भी आया. सो फटाफट वो भी चेकआउट कर लेते हैं. सेल्विन ने हमारे पास अपना आंसर भेजा था बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत हो गया. सोम, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एज वेल. उसके अलावा सुनील है, शाहिल है, इन्होंने भी अपना आंसर भेजा गलत हो गया. रोनल्ड है, विकास है, विकेश है, रिहान, आपका भी आंसर मिला है. जिया, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा जी, माय नेम इज जिया. आई थिंक कि आंसर ये है. थैंक यू सो मच जिया. नव, थैंक यू फॉर ट्राइंग बट अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग हो गया आंसर. और इसके अलावा कुतुब, आपका भी जवाब हमें मिला है. प्रणीत है पपटोटो से, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एज वेल. एंड द करेक्ट आंसर for the question ki I am between 4 and 6, I am not 5, what am I? So right answer is end. It's between 4 and 6 na
0: ji.
1: So end is the correct answer.
0: Bahut easy tha. Thank you so much jitne bhi logon ne attempt kiya hai is ghante. Mat bhule birthday aur anniversary greetings hum aapke liye lekar aayenge. Agar messages aapne nahi bheje hain wo aap hame bhej sakte hain 7:30 baje ke baad aapko wish karenge. Lekin thodi der baad is program mein aapke liye rashi vibes aaj ke aur 7:30 news headlines bhi hoga.

0: Rashi Vibes.
1: So here are your Rashi Vibes for today. सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज कुछ नए प्लान्स आप बनाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज कुछ मिल सकती हैं, ऑफिस में कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर आप वरीड रह सकेंगे या वरीड रहेंगे। समय बाकी चीजों को लेकर अच्छा है और जहां तक हो सके आपको इसका फायदा उठाना चाहिए।
2: और इसके अलावा वृष ने टोरस, आज आपके लिए कहा गया है कि प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो फायदा होगा जरूर, बस थोड़ा ध्यान उस काम पर आप लगाएं। अगर आपका अटेंशन जो है ये डाइवर्ट हुआ तो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसे कि आप चाहते हैं, सो ऑब्वियस इजंट इट। और उसके साथ आपके लिए ये भी कहा गया है कि आज किसी शुभ काम में भाग लेने का मौका मिलेगा जिसकी वजह से आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा।
1: मिथुन यानी जेमिनी, आज किसी एंटरटेनिंग इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं, घर बाहर खुशियां होंगी आपके लिए, क्रिएटिव कामों में सक्सेस हासिल करेंगे और आज आपके बिहेवियर से और आपकी कैपेबिलिटी से आपके सुपीरियर्स जो है काफी इम्प्रेस्ड रहेंगे।
2: एंड देन कम्स कर्क ने कैंसर, आपके लिए आज कहा गया है गुस्से पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, हेल्थ का ध्यान रखें और कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है तो इसी वजह से उसके लिए आपको तैयार रहना है।
1: सिंह यानी लियो, आज पैसे आपको मिल सकते हैं, लोग काफी जानना चाहेंगे आपके बारे में, रुके हुए काम बनते जाएंगे लेकिन ख्याल रखें कि आज किसी तरह का रिस्क ना लें।
2: एंड साथ में आज कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि घर पर मेहमान आ सकते हैं जिनके साथ काफी अच्छा समय बीतेगा एंड दे विल ब्रिंग सम गुड न्यूज फॉर यू। आज वैसे एक और एक आपको सलाह दी जा रही है कि कोई भी काम अगर आज आप कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ इट, तो उस काम को करने में जरा भी जल्दबाजी ना करें।
1: तुला यानी लिब्रा, आज ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा, ट्रेवल भी सक्सेसफुल रहेगा, कोई बड़ा काम आपका बनेगा जिससे आप काफी खुश होंगे, बिजनेस में उन्नति करेंगे और आज जितनी कोशिश करेंगे फायदा उससे कई गुना ज्यादा होगा।
2: एंड उसके साथ साथ आज वैसे बताया जा रहा है वृश्चिक ने स्कॉर्पियो के लिए, बातों पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, आज कुछ खर्चे हो सकते हैं अचानक से, इनफेक्ट ये खर्चे आपके सामने आएंगे, यहाँ तक कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको कर्ज तक लेना पड़ सकता है। और सलाह दी जा रही है जिस किसी काम में पैसे इन्वॉल्व है उसमें आज किसी भी तरह का रिस्क आप ना लें।
1: धनु यानी सेजिटेरियस, बिजनेस अच्छा चलेगा, पैसे मिलेंगे आज आपको, बच्चों के काम से आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपके लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं इसकी वजह से आज कई अच्छे काम आपको मिल सकते हैं।
2: मकर यानी कैप्रिकॉन, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि मेहनत का फल मिलेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी लेकिन आप खुश रहेंगे इनसे क्योंकि आपको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिल सकती है। आज जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपका गलत चाहते हैं, वो थोड़ा शांत रहेंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इनसे।
1: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं ये आपके फेवर में जाएंगे, आपको पैसे जो हैं ये भी मिल सकते हैं लेकिन हेल्थ आज थोड़ा कमजोर रहेगा, भाइयों से सपोर्ट मिलेगा और प्रॉपर्टी का कोई भी डील है ये करते समय थोड़ा सावधान रहें।
2: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, गाड़ी चलाते समय किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल करते समय सावधान रहे यानी केयरफुल रहे, दूसरों के काम में दखल ना दे, इफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद सर्टेन थिंग्स तो आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं लेकिन आप उनको प्रेशराइज ना करें तो इसमें आपकी भलाई है, अदरवाइज आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और एक सलाह भी दी जा रही है कि कीमती चीजों को संभाल कर रखें, गुम हो गए या चोरी हो गए तो बहुत परेशानी होगी आपको।
1: So this way your Rashi Vibes, थोड़ी देर बाद आज देखेंगे कि सेलिब्रिटी अलार्म में किस किन की आवाज जो है ये आपको पहचाननी है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ।

0: एट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
2: Big Points Blitz is on now. Get up to $30 worth of everyday rewards vouchers when you shop at Woolworths or Fresh Choice. Boost the offer in your everyday rewards app, shop in store or online and collect big bonus points. Hurry! Big Points Blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
3: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
9: brought to you by

0: अब वक्त है आज का सेलिब्रिटी अलार्म, हम आपके लिए लेकर आए इस प्रोग्राम में। और आज का सेलिब्रिटी अलार्म बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम लुकिंग फॉर टू कितने लोग आज इस आवाज को पहचान पाते हैं।
1: You know, मेरे लिए भी एक चैलेंज जैसा हो जाता है, and that's why even I look forward to it, and I don't want to find out beforehand कि क्या है सही जवाब, ताकि मेरा भी थोड़ा टेस्ट हो जाए ना। So quite excited क्योंकि कल, इनफैक्ट पिछले दो दिनों से हम जो आवाज लेकर आ रहे थे, finally someone got it right yesterday, and that was Ananya Pandey। उनका जो वेब शो आया था on Amazon Prime, Call Me Bae, उसी का एक सीन का एक डायलॉग था जो हमने आपके लिए चुना था। दो दिनों के बाद लोगों ने इनकी आवाज फाइनली पहचानी, सो आज एक नई आवाज। लेट्स सी कि क्या इनकी आवाज आज कोई पहचानता है, या फिर ये आवाज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे टिल मंडे।
0: तो अच्छी तरह से आवाज जो है ये आप सुने।
2: खामोश। मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती, जिससे वो अपनी मनमानी करे, रोंदे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की।
0: तो ये है
1: आज। I know this voice and I even know that movie जहां से ये डायलॉग ली गई है।
0: तो अब आप ट्राई करें आइडेंटिफाई करने का आंसर जो है, क्योंकि आपने दो दिन पहले बड़ा एक्साइटेड होकर कहा था आई नो दिस वॉइस, और मुझे ये भी पता है कि कहां किस शो से आपने पिक किया है वॉइस। उसके बाद किसी का सही जवाब ही नहीं आया।
1: हाँ, पर मुझे ये वाला तो पता, ये तो बहुत पॉपुलर है यार, ये तो एकदम highly popular one है।
0: तो एक बार फिर हम आवाज आपको सुना रहे हैं, अच्छी तरह से आप सुन लें।
2: खामोश। मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती, जिससे वो अपनी मनमानी करे, रोंदे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की।
0: तो अब अपना आंसर जो है ये आप हमारे पास भेजें कि सेलिब्रिटी अलार्म में आज आवाज किसकी है।
1: I feel like I want to give the answer.
0: हाँ, तो आप थोड़ा इंतजार करके जवाब दे सकती हैं।
1: पर मेरे जवाब देने से अभी थोड़ी ना कुछ वो होगा। I mean, let's see how many if you can figure it out. Let's see.
0: BF अपना आंसर और नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं।
3: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: रात 8:30 के वक्त लगी थी और अभी इस मामले की तहकीकात की जा रही है। सितंबर 2024 में दो वर्कर्स के 25,000 वोल्ट्स की ओवरहेड लाइन से झटके लगने के मामले में क्यूबी रेल पर $290,000 का जुर्माना और $42,000 का कॉम्पेंसेशन लगाया गया है। पानेल स्टेशन के पास मेंटेनेंस के दौरान दोनों कर्मचारी गलती से तैयारी के दायरे से बाहर निकल गए थे, जिसमें से एक वोका को चेहरे, गर्दन और अपर बॉडी पर सीवियर बेंस आए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंडर 16 बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले लेजिस्लेशन को अभी के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। नेशनल पार्टी के इस प्रपोजल को लेबर का समर्थन मिला था, लेकिन ग्रीन्स और एक्ट ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस नियम से बचना बहुत आसान होगा। एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड के मुताबिक सरकार इस मामले पर एक बड़ा प्रोग्राम तैयार कर रही है, इसलिए कैथरीन वेड की इस बिल पर आगे का फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। सुपर रग्बी कंपटीशन के अंतर्गत इस राउंड में भी जबरदस्त मैचेस खेले जाएंगे। आज रात 7:00 चीफ्स हाइलैंडर्स को होस्ट करेगा। कल 4:35 PM पर फिजी में फिजियन रुआ वारटस से खेलेगा। कल रात 7:00 ईडन पार्क पर ब्लूज हरिकन्स को होस्ट करेगा और 9:35 PM पर फोर्स और रेड्स का मैच खेला जाएगा। आई लीग के रिटेन लीग के सेमीफाइनल्स इस सप्ताह अंत खेले जाएंगे। आज 9:35 PM पर एडलेड यूनाइटेड ऑकलैंड FC को होस्ट करेगा। प्रथम मैच में दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर ठहरी थी। दूसरे सेमीफाइनल में कल रात न्यूकासल जेट्स की भिड़ंत सिडनी FC से होगी। पिछले हफ्ते इन दोनों टीमों के बीच जो मैच हुआ था वो भी एक एक गोल से बराबर ठहरा था। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे।
1: Driving you home. Drive. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from $449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Accurate traffic.
5: FlixEven, your skip in a bag.
6: Fine weather all day, light southerlies, a high of 18 degrees. Southern motorway, 29 minutes, Manukau to the city, just 42 from Drury. We're slow at Manurewa, Papatoetoe, then most of the way east Tāmaki to Remuera. Southwestern, little slow southbound at Hillsborough, northbound through Whitty. Northwestern, 26 from Massey, slow on and off from Te Aratu. Northern, 22 from Constellation, slow at Silverdale and Takapuna to the bridge.
5: Visit flixeven.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
7: With Qantas Points, you can turn your everyday into a holiday. Turn supermarket checkouts into holiday check-ins with everyday rewards. Turn drives into flights by earning points on car hire with Avis. And turn short stays into staying longer when you earn points with Qantas Hotels. Become a Qantas frequent flyer today and start earning Qantas Points towards your next holiday. Join for free at Qantas.com. T's and C's apply.
8: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 May तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
9: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए। रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है। सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
10: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
11: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
12: Kyun? Kya hua?
11: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gaye.

0: इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत, एक हफ्ता हो गया नो रिस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune.

0: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: 15th of May, आज आपका बर्थडे है या शादी की सालगिरह है, ये दिन मुबारक हो आपको। सबसे पहले बी एन कौर जी फ्लैटबुश में, मंजीत ओबेरॉय कौर मनुरेवा में हैं और साहब सिंह हुडा जी ग्लेन ईडन में अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं। आप सभी को ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी सेकंड बर्थडे दिव्या वशिष्ठ, 2 साल की हैं। यू ऑलरेडी ऑन द हाउस, कंट्रोल द टीवी रिमोट एंड डिसाइड व्हेन एवरीवन स्लीप्स। वी आर बेसिकली योर अनपेड स्टाफ नाउ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन माय लवली डॉटर। पेरेंट्स हैं आपके नव और परी बहन राशि हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके ब्रिज और कुसुम, तमाम अन्य जितने भी परिवार वाले हैं सभी आज आपको याद कर रहे हैं और सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। हमारी ओर से भी यह स्पेशल डे आपको मुबारक हो। एक और मैसेज आया है, टुडे माय सन जयविन सिंह 6th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। माँ हैं आपकी मंजीत कौर, पापा हैं जसविंदर सिंह, बहन जेसिका सिंह हैं और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आज खुशी के इस मौके पर आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी की ओर से यह दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो। हैप्पी 11th बर्थडे आर्या, आज आप भी अपनी सालगिरह मना रही हैं। लव एंड बेस्ट विशेस हैं मम एंड डैड की ओर से। बहन हैं आपकी मिया, साथ में नाना नानी हैं, आजी कजन्स और जितने भी परिवार वाले हैं और आपके जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं सभी की ओर से ये स्पेशल डे आपको मुबारक हो। वी लव यू छोटू, ये मैसेज आपके लिए आया है। सो ये दिन आपको भी अनेकों बार शुभ और मुबारक हो। अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आपके साथ आज और भी जितने लोग जहां कहीं पर भी अपना बर्थडे या शादी की सालगिरह मना रहे हैं ऑन द 15th ऑफ मई, ये दिन आपको शुभ हो।

0: www.co.nz। अभी 22 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में। और आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म, क्या हम जवाब देने वाले हैं या नहीं देंगे? आप में से कई लोगों ने अपने आंसर्स जो है ये हमारे पास भेजे, और द गुड न्यूज इज कि इनमें से ज्यादातर जवाब जो है ये सही आए थे। कुछ लोगों ने लिखा था सुनील दत्त, ये सुनील दत्त साहब की आवाज नहीं थी। और उसके अलावा किसी ने मिथुन दा भी हमारे पास लिखकर भेजा था, सागर, तो मिथुन दा की आवाज़ ये नहीं थी। नवजोत, आपने भी मिथुन आंसर जो है ये लिखकर भेजा था। और बाकी और सगुन, आपने कहा था जितेंद्र फ्रॉम हिम्मत वाला, तो जितेंद्र की भी ये आवाज़ नहीं थी। और आज जो डायलॉग हमने आपके लिए पेश किया था, इट वॉज दिस डायलॉग जिसको आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये आवाज किसकी थी।
1: खामोश, मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती, जिसे वो अपनी मनमानी करे, रोंदे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की।
0: तो ये आवाज आपको पहचाननी थी, एंड द करेक्ट आंसर टूडे वॉज रजनीकांत। रजनीकांत जो है कमाल के कलाकार, बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर ग्लोबली ये हैं, और आज उनकी आवाज़ आपके लिए हमने पेश की। और इसी के साथ अब 21 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। मत भूले अगले घंटे आज का हमारा पहला कोड वर्ड रिवील होगा हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए। इट्स द फाइनल डे ऑफ हम फ्लाई अवे फ्रेंजी। और अगर आपने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, मेक द मोस्ट ऑफ द फाइनल फोर अपॉर्चुनिटीज जो आज हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट्स गोना हैपन इज द ड्रॉ, जब पता चलेगा कि आप में से किसने रिटर्न एयर टिकट टू फिजी जीता है। और भी कई इनाम जीतने के मौके हैं आपके पास। अभी आपको क्या करना है, वाइल यू आर कम्यूटिंग, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, यू आर ए पैसेंजर, तो हमारा फेसबुक पेज जो है ये आप विजिट करें। अभी से अराउंड 26 मिनट्स पहले हमने कुछ पोस्ट किया है हमारे फेसबुक पेज पर। ऑल यू गॉट टू डू इज लाइक दैट पोस्ट एंड शेयर इट। अराउंड लगभग 26 मिनट्स अगो एक पोस्ट जो है ये हमने किया है। यू हैव टू गो टू आवर फेसबुक पेज, हम 104.2 FM विद अ ब्लू टिक, और जो सबसे ऊपर आपको पोस्ट मिलेगा जो आज किया गया है, उसे आप लाइक करें और उसे शेयर करें। इसके बारे में और भी बातें बाद में चलकर हम जरूर करेंगे।

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: So, आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस हम लेकर आ रहे हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स एंड ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा. आज ये सफर हम तय कर रहे हैं फ्राइडे 15th ऑफ मई को. इनफैक्ट आज के ये दिन जिसके बारे में हमने आपसे बातें भी की है और बहुत स्पेशल भी है कि किम ने कहा ना कि दिस इज द डे जहाँ पर न्यूजीलैंड में मार्क किया जाता है पिंक शर्ट डे. सो इफ यू हैव यू नो नॉट येट गॉटन रेडी और आप अगले घंटे घर से निकलने वाले हैं तो आपको हम ये बता दें कि आप यू नो पिंक शर्ट जरूर पहनकर आ जाइएगा इन सपोर्ट ऑफ एंटी बुलिंग डे. आज ये मार्क किया जा रहा है न्यूजीलैंड में. या फिर इफ यू कैन वे समथिंग पिंक यू नो विजिबली टू शो योर सपोर्ट टूवर्ड्स इट. नाउ आज एक स्टोरी भी आपके लिए हम लेकर आए हैं एंड दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग स्टोरी आई वुड से. सो अपेरेंटली ये कहानी है गुजरात के एक फार्मर की और गुजरात में इनके बारे में बता दें इनका नाम है उका भाई भट्टी. इन्होंने नियरली 25 ईयर्स जो है ये लगा दिए इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टेक्निक्स कि कैसे ये एक इनक्रेडिबल मैंगो ट्री जो है ये उगाए जिसमें 14 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो जो है ये उगे एक ही पेड़ पर.
1: 14 टाइप्स ऑफ मैंगोज,
0: 14 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज ऑन वन ट्री. पिछले 25 साल इन्होंने बिताए हैं इन ग्राफ्टिंग एंड ग्रोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द होल टेक्निक बिहाइंड इट. ट्रेडिशनल देसी मैंगोज से लेकर प्रीमियम हाइब्रिड वेराइटीज तक ये इस एग्रीकल्चरल वंडर में जो है आपको देखने को मिलेगा एंड इट प्रूव्स हाउ पेशेंट इनोवेशन एंड डेडिकेशन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ये क्रिएट कर सकता है. बहुत ही रिमार्केबल एग्जाम्पल है इंडियन फार्मिंग का और नॉलेज का ब्लेंडिंग परफेक्टली विद हॉर्टिकल्चर साइंस और दिस इज ऑल्सो नेचर्स क्रिएटिविटी एंड द फार्मर्स हार्डवर्क जिसका एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट जो है ये लोगों को अब देखने को मिल रहा है. इट्स लाइक अ मैंगो मिरेकल और मैंगो जिसे इनफैक्ट यू नो क्या बोलते हैं फलों का राजा. It's like the king of fruits, right? तो बहुत पॉपुलर है ये. Different न्यूज चैनल्स ने इन्हें रिपोर्ट किया बिकॉज इनिशियली मेरा रेड दिस स्टोरी आई वाज लाइक कि शायद कुछ यू नो हो सकता है. आजकल बहुत ऐसे फॉल्स स्टोरीज जो है ये भी ग्राफ्ट किए जाते हैं ताकि लोग उसे अटेंशन दे, उसे व्यूज मिले, उस पर्टिकुलर अकाउंट को और भी लाइक्स और फॉलोज मिले. लेकिन आई डिड माई रिसर्च एंड अपेरेंटली दिस इज अ ट्रू स्टोरी क्योंकि मल्टीपल इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने इसे रिपोर्ट किया है अबाउट उका भाई भट्टी जिन्होंने यू नो एक ही पेड़ पर 14 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज जो है ये उगाए हैं. एंड आई थिंक ये अरमेली डिस्ट्रिक्ट से है इन गुजरात. इनके गांव का नाम है दितला या दिताला, ऐसे तो कुछ प्रोनाउंस होता है इनके गांव का नाम. सो इमेजिन सम वेरी पॉपुलर इंडियन मैंगो वेराइटीज आर केसर, अम्रपाली, लंगरा, हापुस जिसे एल्फेंसो के नाम से भी जाना जाता है मेरे ख्याल से, तोतापुरी. ये कुछ रेयर ओरिजिनल टाइप्स भी हैं जो एक ही पेड़ पर मिलेंगे और इनके इस अचीवमेंट के बारे में पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं. बट यू शुड ऑल्सो सी एंड अंडरस्टैंड द मेहनत बिहाइंड इट कि इसमें इतने साल लग गए. डेकेड्स, 25 years is not a very small amount of time, na?
1: Yeah, that's a very long time. लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी समझनी जरूरी है कि अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आप अचीव करते हैं. आप कुछ ना कुछ अचीव करेंगे और अगर आपने रिजल्ट नहीं अचीव किया जो आप डिजायर करते हैं तो कम से कम कुछ नया सीखेंगे जरूर.
0: Imagine, and farming has such scopes. Aajkal bahut se log, in fact, they are turning towards farming because they are seeing such amazing results. And of course, aise miracles jo hai, jabki ho rahe hain, to dunya bhar mein iske baare mein baatein honi to banti hai.

0: Accurate traffic.
1: Auckland Airport, park and ride.
2: Staying fine and sunny all day long, a high of 18 degrees. Pretty quick motorways into the city. Northern 23 minutes in from Constellation Drive, 36 from Silverdale. Slow at Silverdale, Constellation and Takapuna to the bridge. Northwestern 27 minutes in from Massey. Slow from the causeway on and off to the CBD. Southern half an hour in from Manukau. Slow at Manurewa, Papatoetoe around Prince's, then all the way from Mount Wellington.
1: Park and ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
3: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World online same day click and collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
4: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: Lace up and lock in, it's game time at Rebel with 30% off New Balance clothing and footwear and 30% off all Adidas adult clothing plus 30% off all Adidas kid shoes. Hurry, these deals and more end Sunday only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
6: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. Sirf 44,990 plus on-road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
7: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter any size aur pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
8: Good morning, it's 7:08 baj rahe hain.
9: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good morning, I'm Lucy Walker with the latest at 8. National grid operator Transpower won't be prosecuted over its fallen pylon that cut power to tens of thousands in Northland. The pylon toppled over during routine maintenance in June 2024. The Electricity Authority lodged a formal complaint against Transpower, alleging a breach for not maintaining its assets appropriately. However, the authority has dropped its complaint after Transpower provided evidence that it did meet required standards. A large fire has ripped through a two-storey house in Auckland this morning. Three fire trucks attended the blaze in Redhill just after 3 a.m. It has since been extinguished and no injuries have been reported. A new ASB survey suggests global tensions are starting to affect how we feel about investing. It found investor confidence dropped in the March quarter, even as major international share markets continued performing well. Economist Chris Tennant-Brown isn't surprised.
11: A lot of the offshore events really dominate the news headlines, whereas share markets at record highs won't be hitting the screens as frequently as some of the more concerning stories.
10: In sport, one of the NRL's highest profile commentators has criticised the Warriors' decision to release playmaker Luke Metcalf to the Dragons. He signed a rich deal to move to Sydney next year, and Matty Johns isn't sure the current halves are as good.
12: Tanner and Chanel have been outstanding, but not over a long period of time. Chanel really just started to find himself last year, had a break from the game. Tanner Boyd has been brilliant, but this year...
10: Rugby League with Machinery House. And Kiwi Ryan Fox is in a tie for 33rd after his opening round at the USPGA.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: Almost 9 degrees temperature ho chuka hai aaj ka high 18 overnight kam se kam 8 degrees rahega aur aaj bahut hi chilly shuruaat hogi is din ki baad mein chalkar mausam saaf rahega. Sunset aaj ka 5:24 p.m. par hone ko hai.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
8: The Rush Hour में आपका स्वागत हम कर रहे हैं और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे हैं. गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू. द फाइनल डे ऑफ वर्क कई लोगों के लिए आज होने वाला है, सो ऑल द बेस्ट हम आपको कहना चाहेंगे. लेकिन इस घंटे द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा का जो आखिरी कोड वर्ड है ये रिवील होगा. कितने दिनों से ये खेल हम खेलते आए हैं या फिर अपॉर्चुनिटी आपको देते आए हैं जहां आप कोड वर्ड्स जो है ये रोवर पर एंटर करके अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं टू विन ए रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. और ब्रेकफास्ट शो का आखिरी कोड वर्ड इसी घंटे किसी भी टाइम पर रिवील होगा, सो मेक श्योर यू कीप लिस्निंग.
0: तो तैयार रहिएगा और टू फाइंड आउट कि आज का फाइनल कोड वर्ड फॉर फ्लाईओवर फ्रेंजी क्या है, आपको हमारे साथ इस सफर को एंजॉय करते रहना है. फिलहाल आज का ट्रेंड पेट्रोल. आज ट्रेंड पेट्रोल में पता है क्या ट्रेंड कर रहा है ऑनलाइन?
8: नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे पता चलेगा?
0: मैं बताती हूँ आपको, एक पिंक बफलो है, पिंक भैंसा, पिंक कलर का.
8: अच्छा.
0: यस, अपेरेंटली एक रेयर पिंक कलर्ड बफलो जो है नारायणगंज बांग्लादेश में, इनफैक्ट नारायणगंज में एक फार्म है वहाँ पर यह है बांग्लादेश में, और वहाँ से इनकी अपीयरेंस को कैप्चर किया गया इन फोटोज एंड वीडियोज एंड ऑनलाइन इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है ये मिल रहा है. क्योंकि नॉर्मली जो बफलोज होते हैं उनका कलर पिंक होता नहीं है, अनयूजुअल यू नो कलर है लोगों के लिए. और ये बफलो का जो पिंक अपीयरेंस है इसने क्विकली कुछ क्यूरियोसिटी ऑनलाइन स्पार्क की, जिसमें बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये सच में इनका नेचुरल कलर है या आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है. और बहुत से लोग जो है अब इस फार्म को विजिट करना इन्होंने शुरू कर दिया टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द एनिमल, टर्निंग इट इनटू अ लोकल अट्रैक्शन एंड लोकल सेलिब्रिटी ऑलमोस्ट ओवरनाइट. एंड अकॉर्डिंग टू कुछ लोकल रिपोर्ट्स कहा गया है कि ये जो भैंसा है इसे दरअसल नारायणगंज में एक फार्म में बड़ा किया जा रहा है फिलहाल, जो कि इज इन अ डिस्ट्रिक्ट नियर ढाका. वाइल सम सोशल मीडिया यूजर्स स्पेकुलेटेड कि ये जो एनिमल है मे हैव बीन डाइड, अदर्स ये सजेस्ट करते हैं डाइड एज इन उनको कलर किया गया है, आर्टिफिशियल कलर लगाया गया है. नहीं, जिस तरह से आपने देखा मुझे लगा मैंने गलत प्रोनाउंस किया.
8: नहीं, समझ गया मैं.
0: ओके. एंड अदर्स सजेस्टेड कि इनका जो अनयूजुअल कलर है इट कुड बी लिंक्ड टू अ रेयर स्किन या फिर पिगमेंटेशन कंडीशन, या इसकी वजह से हो सकता है.
8: ओके.
0: सो जो वायरल अटेंशन है ये हाईलाइट करता है हाउ यूनिक एनिमल्स कैन ऑफन बिकम एंड इंटरनेट सेंसेशन, स्पेशली जब उनका अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट हो, अनकॉमन हो. और ये जो पिंक बफलो हैज बिकम अ ट्रेंडिंग टॉपिक अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ड्रॉइंग फैसिनेशन फ्रॉम बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली. लेकिन कमाल की बात ये है कि इस बफलो के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो ये पता चला कि इस बफलो का नाम पता है क्या रखा गया?
8: नहीं, क्या क्या नाम है इसका?
0: इसके पास मतलब इसका स्किन तो है ही पिंक, लेकिन ब्लॉन्ड बार भी है.
8: Hey.
0: दिस बफलो हैज गॉट ब्लॉन्ड हेयर. और जिस तरह से पटिशन करके इनके बालों को सेट किया गया है, बफलो का नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया है.
8: ओके ओके. तो आप इस पिंक बफलो को ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हैं और इसकी कहानी जो है ये पढ़ सकते हैं. थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक में हिस्सा लेने का मौका हम आपको देंगे.
14: कुछ पिए क्या?
15: ये साले खून पी रहे हैं हमारा, हम रसीद तो पी सकते हैं. बाजी ये शादी है ना,

0: celebrating local artists.
1: Back your backyard beats.
2: आज एक बार फिर न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ के दौरान एक और आर्टिस्ट को हम आपके लिए लेकर आए हैं. ये इनफैक्ट सिबलिंग्स हैं फ्रॉम पुकेकोहे इन साउथ ऑकलैंड. और क्रिस्टी और जेकब सहोटा आज इनको हम पेश करने जा रहे हैं. नौन सहोटा विजन. और कोशिश है कि इनकी हमेशा से कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे थ्रू देयर म्यूजिक. रिमाइंड देम दैट नो मैटर हाउ डार्क लाइफ मे सीम दे इज ऑलवेज अ वे टू फाइंड लाइट एंड स्ट्रेंथ. तो लीजिए आज न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में इन्हें हम पेश कर रहे हैं.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox. Hum. Whether you start the day with cereal, slide into it with a smoothie, or wake up with a coffee, do it right. Packed with calcium, vitamins, and protein, nothing beats the goodness of real milk. Grab some Anchor. Real milk. Real good.
1: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free Power Shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis. With you. For you.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
6: With Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
6: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
8: What's your take?
9: 16 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक का टाइम अब हो चुका है और द नंबर टू कॉल वुड बी 0800-004866 इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा आज प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और इसको हम शुरू कर रहे हैं एक डायलॉग से ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं शादी भी एक बार होती है और प्यार एक ही बार होता है ये डायलॉग जो है इसको अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने अब चैलेंज किया है अपने एक रिसर्च के थ्रू किन्से इंस्टीट्यूट इन्होंने अमेरिकन का एक सर्वे किया वो 10,000 अमेरिकन और उनसे सिंपल एक सवाल पूछा इन योर लाइफ टाइम हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन पैशनेटली इन लव जिंदगी में कितनी बार आपको प्यार हुआ है या सच्चा प्यार हुआ है तो जब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी इंडिया टुडे की तो मैंने सोचा कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही इसके बारे में आज कुछ बातें कर लेते हैं इट्स गोना बी लाइट उतना भारी भरकम टॉपिक भी नहीं होगा और आप अपना जो टेक है ये भी हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है जिंदगी में एक इंसान को पैशनेटली कितनी बार प्यार होता है या हो सकता है जो सर्वे किन्से इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया उसके मुताबिक पीपल रिपोर्टेड फॉलिंग पैशनेटली इन लव अबाउट ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम और अगर टू बी प्रिसाइज 2.05 टाइम्स सर्वे में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया तो आज यही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है ये थोड़ा अलग हो सकता है गुड मॉर्निंग परविंदर
10: गुड मॉर्निंग
9: कैसी हैं आप
10: मैं
8: अच्छी, आप कैसे हो?
9: हम भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। फ्राइडे है ना?
8: हाँ, बहुत बढ़िया। पहले आप बताओ, आपको पैशनेटली कितने बार प्यार होता है?
9: मुझे तो हर दिन प्यार होता है।
8: मुझे ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा बार हो सकता है।
9: अच्छा, एक से ज्यादा बार?
8: हाँ, क्योंकि मतलब एक बार कभी ऐसा होता है ना कि नहीं बनती है, और कभी ऐसा लगता है गलत डिसीजन है, एंड ड्यू टू सम रीजंस यू हैव टू मूव ऑन, बट देन व्हेन यू गेट द राइट पर्सन, आपको दोबारा मतलब सेम इंटेंसिटी शायद कम ज्यादा हो, पर दोबारा हो जाता है।
9: अच्छा, दोबारा हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितनी बार हो सकता है, मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है? कोई मैक्सिमम लिमिट है, कोई सीलिंग है इसका?
8: मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम एक या जीरो भी हो सकता है, पर मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है।
9: अच्छा, तो आप कहती हैं कि
8: मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक एक्टर का, वो अनुपम खेर का ब्रदर है।
9: हाँ।
8: वो किसी शो में आया था, उसके मतलब थे दो तीन अफेयर थे, और वो उसके बाद एक काफी यंग लड़की के साथ उसका अफेयर था, तो उसको जब उसने पूछा यू थिंक आपको फिर ड्रीम गर्ल मिल गई है, वो कहता नो, अभी तक ड्रीम गर्ल नहीं मिली है।
9: अच्छा, ढूंढ रहा है?
8: ढूंढ रहा है अभी तक।
9: That's nice. चलो, थैंक यू सो मच परविंदर आपके कॉल के लिए। 800-00 हम 800-00-4866 इस नंबर पर आप भी कॉल कर सकते हैं टू शेयर व्हाट्स योर टेक कि एक शख्स को जिंदगी में कितनी बार पैशनेटली प्यार हो सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बातें जो है ये की हैं। US में जो रिसर्च किया गया है, जो रिजल्ट सामने हैं उसके मुताबिक कम से कम दो बार लोगों ने कहा है कि ज़िंदगी में, या ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि दो बार उनको प्यार जो है ये हुआ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग शायद ऐसा भी कहेंगे कि भाई ये हमारा कल्चर नहीं है, या हम लोगों के साथ, इंडियंस के साथ ऐसा नहीं होता है। तो चलो, अगर आप इसको डिस्प्यूट भी कर रहे हैं तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन आपको लगता है, हाउ डज इट वर्क आउट, क्या एक से ज़्यादा बार प्यार किसी को हो सकता है, और मैक्सिमम अगर हो सकता है तो कितनी बार हो सकता है, ये आपको बताना है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक थ्योरी के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल गुड मॉर्निंग आपको।
10: हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप लोग?
9: हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हो सर?
10: जी बिल्कुल ठीक हूँ
9: जी।
10: पता नहीं है लोग, एक तो अमेरिकन का सर्वे का कोई खास भरोसा होता नहीं।
9: हाँ, अच्छा, चलो ठीक है।
10: और दूसरी बात ये साहब, हम तो आपको अपनी जवानी की बात बता सकते हैं।
9: हाँ बताइए।
10: जब बॉय स्कूल में पढ़ते थे, गर्ल स्कूल मतलब लड़कियों सिर्फ देखने को मिलती थी, वो भी बहुत कम, तो हमारा बिल्कुल क्लियर था सर, हर लड़की से हमको तो प्यार हो जाता था, 50% तो पक्का, फुल पैशन उसकी तरह से हो या ना हो। अब 44-45 साल हो गए शादी के, तो अब तो खैर सोचना बेकार है।
9: अच्छा, आपने कहा कि आपको तो प्यार हो ही जाता था, कितनी बार हुआ लगभग?
10: पता नहीं, गिन थोड़े सकते, कितनी लड़कियां दिखाई दी होंगी।
9: सबसे प्यार हो ही जाता था?
10: अब दिख जानी चाहिए।
9: अच्छा, कमाल है। थैंक यू सो मच।
10: आप वास्तव में किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं यदि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते।
9: हाँ, वो भी सही।
10: अगर आप अपने आप को पसंद करते हैं तब आप शायद एक बार से ज्यादा न कर सकते।
9: ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। गुड मॉर्निंग। हेलो।
11: हेलो
9: जी मैम।
11: हाय, आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करता है कि आपका पहला प्यार छूटा क्यों है या टूटा क्यों है।
9: अच्छा, उस पर डिपेंड करता है आपको लगता है कि दूसरी बार होगा या नहीं?
11: क्योंकि अगर आपने धोखा खाया है, ठीक है, तो दूसरी बार पैशनेटली होना तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि वो आपके वो अलर्ट मोड आपका हमेशा रहता है, आपको वो डर हमेशा रहता है कि जो पहले प्यार में हुआ है वो इसमें भी ना हो जाए। बट अगर लव्ड वन पास्ड अवे हो गए हैं या कुछ ऐसी वो हो गए, देन यू कैन, बिकॉज अगेन जो पहला प्यार है वो इनोसेंट होता है, नेव होता है, उसमें कोई चेकलिस्ट नहीं होती है। बट दूसरी बार या तीसरी बार जब भी प्यार होगा वो उसमें चेकलिस्ट आ जाती है।
9: अच्छा, तो उस समय पर यू नो फूक फूक कर कदम रखते हैं।
11: हाँ जी, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, क्योंकि प्यार तो पहले भी किया था पैशनेटली, और अगर दूसरी बार भी किया तो दूसरी बार में नया क्या है या अलग क्या है। तो आपको हर कोई इंसान कोशिश करता है कि जो पहले उसमें रिश्ते में गलतियां हुई हैं वो दूसरे में ना हो, या जो पहले रिश्ते में मैंने सहा है वो दूसरे में ना सहूं, बाउंड्रीज पहले से ही क्लियर रहे। तो वो पैशनेटली नहीं हुआ, वो तो फिर सोच समझ के वाला प्यार हुआ।
9: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपनी राय जो है ये शेयर करने के लिए। और 800-00 हम यानी और 800-00-4866 ये हमारा नंबर है जिस पर आपने कॉल करना है और बताना है व्हाट्स योर टेक। कभी कभार ये भी होता है कि प्यार और इन्फेचुएशन के बीच में फ़र्क जो है ये हम नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि भाई हमें तो प्यार हो गया है, दरअसल वो प्यार था ही नहीं या प्यार है ही नहीं। इन्फेचुएशन जो है यू नो कुछ और होता है और प्यार जो है कुछ और होता है। तो हम आपको, हमने कहा था आपको हम बताएंगे अबाउट एक थीरी। 1986 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टेनबेग ने ट्राइंगुलर थीरी ऑफ लव जो है ये इसके बारे में बातें जो है ये की थी कि लव यानी प्यार जो है तीन एसेंशियल चीज़ों पर बेस्ड होता है, पैशन, इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। और ये स्टडी जो है इट फर्दर बिल्ड्स कि पैशनेट लव जो है इज अ फाउंडेशनल डायमेंशन ऑफ रोमांटिक एक्सपीरियंसेस दैट मे अराइज मल्टीपल टाइम्स अक्रॉस अ पर्सन्स लाइफ। एक इंसान जिंदगी में कई बार इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। सम पीपल मे एक्सपीरियंस पैशनेट लव वाइल अदर्स एक्सपीरियंस यू नो उतना ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस करते होंगे, या कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि प्यार होता ही नहीं। हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट नज़रिया होता है, सोशल फैक्टर्स अलग होते हैं। ये जो अमेरिका में जो सर्वे किया गया उसमें 14% जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कहा कि उनको कभी भी सच्चा प्यार जो है ये नहीं हुआ। 28% ने कहा कि हाँ एक बार तो हुआ है, एक बार सच्चा प्यार हुआ है। और 30% ने कहा कि उनको दो बार सच्चा प्यार हुआ है या पैशनेटली दे फॉलन इन लव। और ये काफ़ी उस एवरेज 2.05 के पास आ जाता है। 17% ने कहा कि दे हैड एक्सपीरियंस्ड इट 3 times। और 11% ने कहा कि उनको 4 या उससे ज़्यादा बार प्यार हुआ है। और डॉक्टर अमेंडा गैसलमैन जो हैं ये किन्सी इंस्टीट्यूट की एक साइंटिस्ट हैं और इस रिपोर्ट या स्टडी की लीड ऑथर हैं। और उन्होंने कहा कि लोग प्यार की बातें हमेशा करते हैं लेकिन ये पहली मर्तबा है एक्चुअली जहाँ पर पूछा गया लोगों से कि हाउ मेनी टाइम्स दैट हैपन्स अक्रॉस लाइफ टाइम। तो ये सवाल उनका कहना है कि पहली बार पूछा गया, जिसके बाद एवरेज रिजल्ट जो सामने आया है कि 2.05 times इंसान को प्यार हो सकता है। और हर एक इंडिविजुअल पर जैसे कहा गया है कि ये वेरी करेगा, अलग डिफरेंस जो है ये रहेगा। तो आपकी भी जो राय है वो 5599 पर अब आप हमारे पास टेक्स्ट करके बता सकते हैं। किसी ने टेक्स्ट किया है, SRK हैड फॉलन इन लव हिमसेल्फ ट्वाइस इन द मूवी इटसेल्फ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट माई सिस्टर डिड फॉल इन लव ट्वाइस, मैरिड ट्वाइस एंड नाउ वेरी हैप्पी। तो आपकी भी जो राय है या व्हाट्स योर टेक, आप 5599 पर अब हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं। एक लाइफ टाइम में इंसान को कितनी बार प्यार हो सकता है, क्या एक ही बार सच्चा प्यार होता है या एक से ज्यादा बार सच्चा प्यार हो सकता है।
6: Bollywood's most wanted.
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
13: मैं लाऊं अपना A game.
6: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: So been cleared quickly, but heavy patches on the southern from East Tāmaki to the city. Northwestern 28 in from Massey, we're slow from the causeway, heavy point Chev to St Luke's, northern pretty quick.
1: Park and Ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
2: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
4: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
5: The Vibe Mix Events presents
6: the Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Low Finity in Wicked Chicken, Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netball from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhaiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken Botany.
5: Don't miss out.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
8: हम playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. The Rush Hour आपके लिए जारी है और जैसे हमने पहले बताया, आज दिन में 11 बजे से मत भूले हम रहेंगे Food for Less Supermarket, 13 Veronica Street, New Lynn under new management और opening specials यहां पर आपको दिए जाएंगे, जिसके साथ हर घंटे पर आपके लिए 11 से 2 बजे के बीच $100 का शॉपिंग वाउचर जो है ये जीतने का मौका भी होगा. सो इन इनक्रेडिबल ऑफर्स से फायदा उठाने के लिए मेक श्योर यू आर द फर्स्ट वंस आज हमारी टीम के साथ यहां पर आप शॉपिंग कर सकेंगे.
12: तो तैयार रहिएगा इसके लिए और पहुंच जाइएगा आज दिन में 11 बजे से 13 वेरोनिका स्ट्रीट और फूड फॉर लेस के ग्रैंड ओपनिंग में अंडर न्यू मैनेजमेंट. हमारे साथ शॉपिंग जरूर कीजिएगा. पर फिलहाल के लिए चलिए वादे अनुसार आज का फाइनल कोड वर्ड ये हम आपको दे रहे हैं फॉर फ्लाई अवे फ्रेंजी एंड द कोड वर्ड इज.
11: कोड वर्ड आज का है ईसा.
12: ईसा मतलब अगेन एन एक्सप्रेशन ना.
11: हाँ, ईसा ले
12: मतलब ओ ओ हो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन.
11: तो आई एस आई दैट्स द स्पेलिंग आई एस आई. ज्यादा मुश्किल भी नहीं है. अब अभी से एक घंटे का वक्त है और ब्रेकफास्ट शो का ये आखिरी कोड वर्ड है.
12: फाइनल वन. रिमेंबर द लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द ब्रेकफास्ट शो जिसके तहत आप इनफैक्ट एक रिटर्नियर टिकट टू फिजी जीत सकते हैं.
11: तो अभी से एक घंटे का वक्त है. यू विजिट रोवा या हम डॉट रोवा डॉट एन जेड पर जाए, वहां आपको मिलेगा जहां पर आपको कोड एंटर करना है. और अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं उस पेज का लिंक जहां आपको कोड वोड एंटर करना है, तो डबल एफ एफ एफ लिखकर हमारे पास 5599 पर जल्दी से आप भेज दें और ये लिंक आपको मिल जाएगा. सो दैट यू कैन वेरी इजीली गो एंड एंटर द कोड वर्ड. टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे. याद रखिए आज का कोड वर्ड आई एस आई. बस तीन अल्फाबेट्स हैं जो आपको एंटर करने हैं.

किसी ने जानना चाहे कि क्या लिखकर आपको भेजना है टू गेट द लिंक स्ट्रेट टू हम फ्लाई अवे फ्रेंसी पेज, तो डबल एफ एफ एफ, दोनों एफ जो है उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, डबल एफ लिखे और उसे 5599 पर भेजे, लिंक आपको मिल जाएगा और आसानी से आप जो आज का हमारा पहला कोड वर्ड है ये हम फ्लाई अवे फ्रेंसी के लिए एंटर कर सकते हैं।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 10.5 degrees temperature. Abhi Auckland mein aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 18 overnight, kam se kam 8 degrees rahega. Fine day. Sunset aaj ka 5:24 PM par hoga.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on? क्या बकते हो?
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: आज का क्या बकते हो स्टोरी इज नथिंग वियर्ड, नथिंग स्ट्रेंज, नथिंग यू नो अनबिलीवेबल. बट व्हेन इट कम्स टू अस पीपल लिविंग इन न्यूजीलैंड, हमारे लिए थोड़ा अनबिलीवेबल है ये. तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में बातें करें हम. कहानी जो है आज की इज फ्रॉम इंडिया, जहाँ पर एक शादी के दौरान हवन जो है ये हो रहा था. एंड मिड हवन इमरजेंसी हो गई, क्योंकि जो हवन की लकड़ियां हैं वो खत्म हो गई थी या खत्म होने वाली थी. एंड नियरली मिड वे द हवन वॉज अबाउट टू गेट स्टॉप्ड बिकॉज लकड़ियां नहीं थी. अब क्या करते, कहाँ से लाते? सो समवन हु अटेंडेड द वेडिंग, आई थिंक द ब्राइड इनफैक्ट, इन्होंने किसी तरह से किसी से फोन वोन मांग कर स्विगी इंस्टामार्ट से फायरवुड डिलीवरी जो है ये करवाई.
1: अच्छा.
4: एंड विद इन सम मिनट्स उनका जो डिलीवरी है ये आ गया. एंड फिर शादी जो है आराम से हो गई. और यू नो लकड़ियाँ जो है शादी के बीच में, हवन की लकड़ियाँ जो है शादी के बीच में, हवन के बीच में इनफेक्ट आना इतनी जल्दी, इट लेफ्ट सम सोशल मीडिया यूजर्स अम्यूज्ड कि यार इतना फास्ट डिलीवरी. और मैंने जैसे कि कहा कि इफ़ यू लिव इन न्यूजीलैंड तो आपके लिए है थोड़ा हैरानजनक वाली बात, क्योंकि यहाँ पे तो डिलीवरी को 3-4 दिन लग जाते हैं. कभी कभी बोलते हैं कि यू नो 3-4 working days, तो फिर भी एक हफ्ता लग ही जाता है. और यहाँ पर विद इन मिनट्स डिलीवरी हो गई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो कंपनी है स्विगी इंस्टामार्ट, इन्होंने इस वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी किया, और कुछ चाहिए.
1: That's amazing. और इंडिया में जो ये ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी का जो
4: डिलीवरी सर्विसेज है,
1: it's absolutely amazing. और ग्लोबली इसके बारे में बातें जो है ये हो रही हैं, लोगों का अटेंशन इसकी ओर गया है. नॉट ओनली इंडियंस, लेकिन जो लोग इंडिया से नहीं हैं वो भी काफी अमेज्ड हैं कि किस तरह से इंडिया इस तरह का सर्विस जो है ये डिलीवर करता है.
5: शादी कर सकते हैं
6: क्वीन विक्टोरिया की तरह.
5: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिलफरिया.
6: किस

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: So, kya kuch ho raha hai hamare aas paas, hamari community mein? Let's find out. There are so many events jo isi weekend hone ko hai, and some real important ones jinka hissa aap zarur ban sakte hai. Starting off with kal, 16th of May ko, 147th Girmit Remembrance Day mark kiya jayega, and it's happening at Malayola Community Center, 16 Waukari Place, Mengri. Iske liye aap ja sakte hai. 4:30 PM to 8:30 PM yahan par jo official event hai ye hoga, but the doors will open at 4 PM for networking, tea and snacks jo aap enjoy kar sakte hai. सबसे जरूरी बात, यहाँ पर एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री, सो आपको अगर इसका हिस्सा बनना है, डोंट हैव टू पे एनी एंट्री फी फॉर इट. कल यहाँ पर कैंडल कमेमोरेशन होगा, आर्टिफैक्ट डिस्प्ले रहेगा इन रिगार्ड्स विद द गिरमिट दिवस, और सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड्स जो है ये भी मिलेंगे. कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगे, लाइव सिंगिंग होगा, रोल प्ले होगा, बहुत सारे ऑन स्पॉट प्राइजेस भी जीतने के मौके आपको मिलने वाले हैं. सो इट्स अ इवेंट जिसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं, थैंक्स टू फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड. और रिमेम्बर, 4:30 PM टू 8:30 PM ऑफिशियल इवेंट रहेगा, बट 4 PM से डोर्स विल ओपन फॉर नेटवर्किंग एंड टी एंड स्नैक्स.
3: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट का भोजन मेला इसी रविवार को होने जा रहा है. ये होगा दिन में 11 से शाम 4 बजे तक, 378 आरारीमू रोड, रामारामा में. और ये जो मेला है, इसे आयोजित करने का मुख्य कारण है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट. यहाँ पर एंट्री आपके लिए फ्री होगी, मुफ्त में सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्री खाना है, लेकिन देर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टॉल्स जहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकेंगे. बच्चों के लिए फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स, ये सब कुछ रहेंगे. तो संडे को आप जा सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अ डे आउट इन रामारामा, ये भी इंजॉय कर सकते हैं और इस टेम्पल प्रोजेक्ट को अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं.
2: और इसके साथ साथ आपको हम बता दें, देयर इज वन मोर इवेंट दैट्स हैपनिंग एंड यू कैन डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ इट. इट्स हैपनिंग नेक्स्ट वीक सैटरडे को. वाइब मिक्स इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं. द ग्रैंड मस्ती नाइट 23rd ऑफ मई को रहेगा एट नेटबॉल हॉल मानुरेवा, एंड फिजी से बहुत सारे जाने माने जो रेडियो पर्सनैलिटीज हैं, जिनमें SN हैं, जय भैया जी हैं, और ऑफकोर्स राउडी नमन, ये सब स्टेज पर आपको एंटरटेन करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे. एंड ऑफकोर्स द डांसिंग लेजेंड चर्फर आफ्टर 17 ईयर्स न्यूजीलैंड आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए. तो यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेगा. बेसिकली ऑन स्टेज बहुत सारा कॉमेडी, मस्ती, मजा, डांस, फुल ऑन मैडनेस दैट यू कैन एंजॉय अलोंग विद सम अदर परफॉर्मर्स, जिनमें मनी डिसूजा शामिल हैं. ही इज ड्यूअल वॉइस सिंगर जो मेल एंड फीमेल वॉइस दोनों में गाने जो है ये गाते हैं. एंड अनदर अमेजिंग डांसर विच इज मोंटो मोनिका, ये भी परफॉर्म करने वाली है. युवा डांस ग्रुप ये यहाँ पर रहेंगे, आपके लिए लेकर आने वाले एक अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस. लाइव डीजे परफॉर्मेंस तो रहेगा ही. एंड टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, देन आवर वेरी ओन केतन लंच बॉक्स होस्ट करते हैं आपके लिए ये मंडे टू फ्राइडे, ये भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट सैटरडे को. एंड लेट मी रिमाइंड यू, there are so many vouchers and prizes that you can win. जैसे मलाबार गोल्ड एंड डायमंड की ओर से vouchers जीतने का मौका, रॉयल गोल्ड हैम्पर पैक्स जीतने का मौका, ग्रीन हॉर्न की ओर से गिफ्ट हैम्पर्स जीतने का मौका, एंड विकेट चिकन बोटनी डाउन्स ब्रांच यहाँ की ओर से जो फूड vouchers है ये भी आप जीत सकते हैं. पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रैबिंग द टिकट्स, आप हंटर्स फूड टाउन पापाटोईटोई, जेस फ्रेश मार्ट पापाटोईटोई, गेट फ्रेश सुपर मार्केट मेंगरी, केस हेयर एंड ब्यूटी सलून, मनुरेवा साउथ मॉल ब्रांच या विकेट चिकन बोटनी डाउन्स ब्रांच, ओ जेंडा हेयर एंड ब्यूटी सलून, कैवेंडिश ड्राइव, यहां से टिकट्स ले सकते हैं.
3: तो आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है जो आप चाहते हैं कि ये और लोगों तक पहुंचे, buzz@humfm.com, buzz@humfm.com पर अपने ईमेल से आप हमें जरूर भेजें.
0: Mornings made better.
4: Two frienda, char toast, butter jam, aur ek special chai.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.
5: Keep calm because Punjabi swag is on.
6: Hey, hey, maje diye, maje diye, mobatti hai hai. Pehle dinon tere utte aankh rakhiye hai. Tere bina area ch aur kudi da na dil mangiye te na.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: With a Gem Personal Loan, you can give your old kitchen a makeover. Combine multiple debt repayments into one. Or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem Personal Loans and check your personalised rate in under 2 minutes with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TCs, fees and other charges apply.
3: Farmers Mega Home Sale is on now with all Sleepyhead beds half price. Super deals on chiropractic bed sets and mattresses from $999. And super deals on all Balance Plus Queen bed sets and mattresses. Shop Sleepyhead beds at Farmers. Conditions and exclusions apply.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
9: हाँ. अच्छा,
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
9: मिसेस सिंह.
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
11: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
14: What's going on?
15: What's going on में अभी 20 मिनट हो रहे हैं. 9 बजकर याद रखें कि रोवर पर चैटल जो है ये भी अब धीरे धीरे अपने खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं. ईच डे आपके पास $100 कैश जीतने का मौका होता है. Have you tried it recently?
16: All good things comes to an end. ये एकदम apt है इसके लिए. अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो जल्दी से अपना फोन उठाओ, रोवा ऐप डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो भाई, बिकॉज रोवा ऐप के जरिए आप हमारे साथ एनी डे एनी टाइम एनी वेयर जुड़ सकते हैं बड़ी आसानी से. एंड सच नाइस साउंड क्वालिटी जो इस पर आप इंजॉय कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड देयर सो मेनी अदर थिंग्स जो आप इसमें ट्राई आउट कर सकते हैं. देयर सो मेनी गेम्स, जैसे कि रोवा पर चर्डल आप खेल सकते हैं और खेलते हुए हर रोज $100 जैसे कि हमने कहा ये जीत सकते हैं. और टोटल ऑफ $7,000 हमने गिव अवे करने हैं. तो जैसे ही $7,000 हो जाएंगे वैसे ही ये चुडल का गेम भी बंद हो जाएगा.
15: तो आप के पास अगर ऐप नहीं है और डाउनलोड करना चाहते हैं तो रोवा ROVA लिखकर 5599 पर भेज दें. दूसरी तरफ ख्याल रखें 9:30 तो बजने वाले हैं, बस तकरीबन एक और आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे फूड फॉर लेस सुपरमार्केट न्यूलिन अंडर न्यू मैनेजमेंट. आज ऑफिशियल ओपनिंग और ग्रैंड ओपनिंग सेल के साथ यहां पर आज तहलका मचेगा जब बहुत सारे आइटम्स पर दामों को एकदम घटाकर आपको वेलकम किया जाएगा.
16: Absolutely, तो मौका तो आपके पास भरपूर है, पर इससे फायदा उठाना आपके हाथों में है. तो इसीलिए रिमेम्बर आज ग्रैंड ओपनिंग होगा और ओपनिंग स्पेशल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. लेकिन हर घंटे जब तक हम यहाँ पर रहेंगे, जब तक हमकी टीम रहेगी, तब तक एवरी आवर $100 का शॉपिंग वाउचर जीतने का मौका है फॉर दोज पीपल जो इन स्टोर शॉप करते हैं उनके लिए, राइट. एंड हम खाली हाथ नहीं आएंगे, हमारे पास बहुत सारी शॉपिंग बैग्स हैं आपको देने के लिए. सो अगर जस्ट इन केस यू फॉरगॉटन योर शॉपिंग बैग, यू डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा डॉलर्स फॉर दैट, क्योंकि हम मुफ्त में देंगे आपको.
15: तो आज आ जाइए, मुलाकात कीजिए, आपसे कुछ बातें होंगी, आप कम कम दामों में शॉपिंग करके पैसे भी बचाएंगे और इन स्टाइल सुपरमार्केट का वेलकम जो है ये करेंगे एट 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलिन, जहां पर दिन में 11 बजे से हम रहने वाले हैं।
0: Bollywood's most wanted.
14: Kundi khad jao ya seedha andar aao.
17: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: At Bunnings, we've got a wide range of rugs to make your home cozier this winter. From plush rugs to hard-wearing styles for busy areas and fun designs to brighten the kids' rooms. We make cozy easy this winter. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
2: You're supporting the kids from the sports sideline. But the smell of a Barbie is clouding your mind. And when you see the sauce, you have to call time. It's what you should be.
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: कहानी of Indelible Homes.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
11: Showerdome.co.nz.
12: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
15: What's going on?
16: 25 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 10 बजने में और अभी सुबह हमने आपको खबर दी थी क्राइस्टचर्च में कल एक घर में लगी आग में एक शख्स की जान चली गई और अब इस बात की पुष्टि की गई है कि मरने वाला एक बच्चा था। 6 और लोग जो हैं ये घायल हुए हैं। एमरजेंसी सर्विसेज को मैरहाउ में बुलाया गया कल रात 8:30 के वक्त और एक पर्सन को क्रिटिकल इंजरीज हुई हैं, 3 को सीरियस से मॉडरेट इंजरीज और 2 को माइनर इंजरीज हुई हैं। और जो इंजर्ड हैं 2 अडल्ट्स और 4 बच्चे, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है और अभी मामले की तहकीकात की जा रही है। दूसरी तरफ आज सुबह 3:30 के वक्त लगभग 20 फायर फाइटर्स जो हैं इनको नॉर्थ ऑकलैंड भेजा गया एक घर में लगी आग को काबू में करने के लिए। फायर एंड एमरजेंसी न्यूजीलैंड को इस

0: आग की जानकारी सुबह 3:30 के वक्त मिली थी जो रेड हिल में लगी थी। 3 क्रूज, 2 पंप्स और कमान यूनिट जो हैं ये सभी घटनास्थल पर पहुंचे थे और आग को 1 घंटे के अंदर काबू में कर लिया गया और किसी को कोई चोट चपेट लगने की रिपोर्ट नहीं आई है।
1: वैसे ये बात तो किसी से छुपी है नहीं कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं यानी कि UPFs जैसे चिप्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, इंस्टेंट नूडल्स, शुगरी सीरियल्स या फास्ट फूड्स या पैकेज्ड स्नैक्स, ये अक्सर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स से तैयार होते हैं और ये भी नहीं किसी से छुपा है कि हमारी तबीयत के लिए सही भी नहीं है। एक्सपर्ट्स से कि दीज फूड्स आर लिंक्ड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, यहाँ तक कि कैंसर भी। और एक रिसर्च किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड द्वारा जिसमें ये पता चला है कि ये जो खाने के सामान हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है, दे आर डिजाइंड टू बी एडिक्टिव, सिमिलर टू जैसे टबैको कंपनीज डिजाइन करते हैं सिगरेट्स सो दैट पीपल गेट एडिक्टेड टू इट। उसी तरह से ये फूड कंपनीज केयरफुली क्रिएट करते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स दैट मेक पीपल वांट टू कीप ईटिंग देम मोर। और मिक्सिंग शुगर, फैट एंड रिफाइंड कार्ब्स एक पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है, मेकिंग द फूड डाइजेस्ट वेरी क्विकली, गिविंग यू अ फास्ट फील गुड रिवॉर्ड आपके दिमाग के लिए, ये एक बहुत डेडली यू नो ट्रेट होता है। और रिड्यूसिंग फाइबर एंड प्रोटीन सो पीपल डोंट फील फुल फॉर लॉन्ग, दिस इज अनदर रीजन जिसकी वजह से हम ज्यादातर खाते रहते हैं अनडिशनड। वैसे ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि थिंग्स लाइक द क्रंच साउंड ऑफ चिप्स, रिसर्च में पाया गया है कि द डिजाइन, द वे दे आर मेड एंड दे मेक यू फील व्हेन यू ईट इट, आपको ज्यादा सेटिस्फाइंग और एक्साइटिंग बनाता है जिसकी वजह से लोग और इसे खाना पसंद करते हैं। द रिसर्च सेज दिस इज व्हाई मेनी पीपल स्ट्रगल टू स्टॉप ईटिंग दीज फूड्स, इट्स नॉट सिंपली अबाउट वीक विल पावर। और इस आर्टिकल में ये भी पता चला है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है नाउ मेक अप अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सुपरमार्केट फूड चेन इन न्यूजीलैंड।
0: और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई वीकेंड का हमारा कुछ प्लान है लेकिन पता नहीं मौसम कैसा रहेगा, तो अभी जो फोकास्ट मेट सर्विस ने किया है इस सप्ताह अंत के लिए, उसके अंतर्गत कल हमने आपको बताया है इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे, हाई ऑफ 18, लो ऑफ 7, संडे अगेन मौसम साफ रहेगा। इनफैक्ट अभी जो फोकास्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक अगले थर्सडे तक कोई बारिश के आसार जो है ये नजर नहीं आ रहे हैं।
1: There is like the longest time जो बताया जा रहा है कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन में थोड़ी बहुत बारिश तो ही जाती है। But good to hear that the weekend has a nice weather, ना?
0: Yeah.
1: तो अगर आप कुछ प्लान करना चाहते, you couldn't do much last weekend. If you're planning on getting things done this weekend, it's a very good time to get that sorted for you.
0: वहीं पर हमने आपको सुबह बताया इन कई से आपने नहीं देखी है तो धुरंधर 2 ये नेटफ्लिक्स पर आ गया है, दैट्स बॉलीवुड से रिलेटेड। स्पोर्ट्स में देखिए आज रात 9:35 PM पर डिसाइडा जो है ये होगा आई लीग मेंस कंपटीशन के सेमीफाइनल के अंतर्गत, क्या ऑकलैंड FC और आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस का फैसला होगा, क्योंकि ऑकलैंड FC इज प्लेइंग द अवे मैच टुनाइट एडिलेड यूनाइटेड के खिलाफ और इस मैच पर काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है। पहला मैच दोनों टीमों के बीच 1-1 गोल से बराबर ठहरा था। वहीं पर OFC प्रो लीग के मैचेस जो हैं ये खेले जा रहे हैं और सेमीफाइनल प्लेऑफ ये कल खेला जाएगा, संडे को खेला जाएगा, 17 मई को 3:00 से बुला FC और वनवातु यूनाइटेड के बीच। रिमेंबर बुला FC और वनवातु यूनाइटेड के बीच गौ मीडिया स्टेडियम पर यह मैच खेला जाएगा। इसमें जिस भी टीम की जीत होगी वो नेक्स्ट वीक पहले सेमीफाइनल में साउथ मेलबर्न का सामना करेगा और दूसरा सेमीफाइनल इज ऑलरेडी डिसाइडेड, इट्स गोइंग टू बी बिटवीन ऑकलैंड FC एंड साउथ आइलैंड यूनाइटेड, जिसके बाद फाइनल का डिसीजन जो है ये लिया जाएगा।
1: राइट, तो आपके लिए ऐसे और भी अपडेट्स जो जरूरी है जानने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है यार यू नो हमारे आसपास स्पेशली इन द कंट्री, ये सब कुछ हम लेकर आते रहते हैं और इसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना है। फिलहाल चलिए रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, डोंट फॉरगेट आज दिन में 11:00 से हमारी हम की टीम ये मौजूद रहेगी, द ब्रेकफास्ट एंड द ड्राइव शो दोनों टीम जो है यहाँ पर रहेगी, विच मीन्स मी, यू, विजय, पूजा एंड सैंडी एंड रूज़बे, दिन में 11 से लेकर 2:00 तक 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलिन, जहाँ पर फूड फॉलोअर्स का जो नया ब्रांच ये ओपन हो रहा है अंडर न्यू मैनेजमेंट एंड द लोकेशन इज सेम, द लोकेशन हैज नॉट चेंज्ड, इट्स जस्ट दैट द मैनेजमेंट हैज चेंज्ड नाउ एंड आपके लिए, जबकि ये ओपनिंग डे स्पेशल्स हम लेकर आएंगे और आपको हर घंटे जब तक हम यहाँ रहेंगे जितने भी लोग इंस्टो शॉपिंग करेंगे उनको $100 का वाउचर जीतने का मौका मिलेगा एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे एक्साइटिंग इंस्टो स्पेशल्स जिससे कि आप शॉप करते हुए बचत भी कर सकते हैं. वी नो हाउ एक्सपेंसिव थिंग्स आर अराउंड अस, सो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ यू फॉरगेट योर ग्रोसरी बैग्स देन डू नॉट वरी, क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए ग्रोसरी बैग्स, शॉपिंग बैग्स ये भी मौजूद है.
0: तो बस तकरीबन एक घंटे बाद हम रहेंगे 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लीड में एंड वी होप टू सी यू ऑल देयर.

0: इस हफ्ते की आखिरी दो बातें जो हैं, और हो सके तो इन पर थोड़ा गौर करें, इनके बारे में थोड़ा सोचें, और उसके बाद कोई न कोई नतीजे तक तो आप पहुंचेंगे सोचने के बाद। अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करें कि हमारी खुद की ज़िंदगी में ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, या फिर हमारी ज़िंदगी से इन दो बातों का क्या वास्ता है या क्या नाता है। पहली बात, आवश्यकता और इच्छाओं में फर्क सीखो, मुश्किलें अपने आप कम हो जाएंगी।
1: आवश्यकता यानी कि आपकी जो जरूरतें हैं, और इच्छाएं मतलब आपके जो यू नो वांट्स हैं,
0: विषय
1: बेसिकली नीड्स एंड वांट्स की बात हो रही ना यहाँ पे।
0: जी, दूसरी बात, तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा भी गलत फैसलों से ही आता है।
1: वो भी है, गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे ना। तो चलिए,
0: नया करने से डरे नहीं।
1: बिल्कुल, होती है गलतियां, सबसे होती है, एंड वंस दैट मिस्टेक हैपेंस बिकॉज यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो घबराना मत, बस इस बात को ध्यान में रखो कि अच्छे से सीख मिली है, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड कीप ऑन मूविंग ऑन। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब हमारी और आपकी मुलाकात होती है मंडे को एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर। एंजॉय द फ्राइडे, आई मीन एंजॉय योर फ्राइडे, एंजॉय योर वीकेंड, बी सेफ एंड सी यू ऑन मंडे।

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.

0: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
1: Big news, New Zealand. Mother's Day may be over, but our Triple Dip promotion is still on. There's 100 extra prizes of $30,000 that must be won. Get a Triple Dip in-store or online. Prizes drawn Saturday 16th of May. T's and C's apply.
2: Make your budget go further this autumn at Mitre 10. Stride rubber gym tiles, now only $35 each. Plus warm up with 15% off oil-free column heaters. Ends 27th of May, T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
3: Lace up and lock in, it's game time at Rebel with 30% off New Balance clothing and footwear. And 30% off all Adidas adult clothing, plus 30% off all Adidas kids shoes. Hurry, these deals and more end Sunday, only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
4: Flight Centre's Big Red Sale has landed. Fly Qantas Economy Class return to Bali from $1,199 per person. Book in store or online now. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
5: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. An investigation is underway into a Christchurch house fire that's left one child dead. Four other children and two adults were also injured in the Whitehall Street blaze that broke out last night. The bill to ban under 16-year-olds from social media has been put on hold. The Education Minister's office has now confirmed a wider program of work is ongoing and they'll have more to say on it soon. A study into junk food suggests it's designed to keep people addicted. Auckland University research reveals key strategies used by companies to keep people coming back. Lead author Joshua Clark says it creates the illusion of choice.
7: It's about a system that is carefully and intentionally designed to hook us in.
6: Overseas, five Italians have died in a scuba diving incident in the Maldives. One body has been found in a cave about 60 metres underwater. The other four are believed to also be there. The victims include a marine biology professor, her daughter, and two young researchers. And Honda has made its first annual loss in 70 years. The vehicle giant's $4.5 billion loss comes after its investments in the EV market failed to pay off. Honda is scrapping some of its EV production targets and will source cheaper parts from China. In sport, the world's best golfers have struggled on the opening day of the US PGA in Pennsylvania. The two Kiwis in the field are well off the pace, Ryan Fox 33rd and Daniel Hillier 53rd. Spaniard John Rahm had to apologise to a volunteer as well after his emotions got the better of him.
8: Just out of frustration, I tried to make an air swing. They hit him and unfortunately hit him in the shoulder and then the face. I need to somehow track him down to give him a present because that's inexcusable.
6: Seven players have a share of the lead.
5: News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: The highs of 18, overall temperature of 8. आज का forecast बताया जा रहा है. Southerlies जो है सुबह के समय बढ़ती चली जा रही हैं. वैसे ठंड लग रही है. It feels like 12 degrees right now. 5:24 पर sunset बताया जा रहा है.
5: Hollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
5: My Time with Kashika.
9: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पीपल, हाउ आर यू. स्टूडियो की घड़ी में इस समय वक्त हो चला है जहां पर आप लोगों को बता दूं कि महीना आधा गुजर चुका है, लेकिन ऐसे में पलट के तो पीछे नहीं देखते. समय को बहुत ज़्यादा हम कीमती मानते हैं क्योंकि समय ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत कुछ सिखा देता है, और दोनों एक साथ जो है ना खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है क्योंकि अक्सर समय को समझ नहीं आता और समझ आने पर समय निकल जाता है. तो आप विश्वास करेंगे कि भाई आपके लिए ये वीकेंड पर आपके लिए समय और समझ कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं. लेकिन इस समय समझने वाली एक ही बात रह गई है और वो ये है कि आज सुबह 11 बजे ऑनवर्ड्स हम की ब्रेकफास्ट शो की टीम और ड्राइव शो पहुंच रहे हैं फूड फॉर लेस, ये अंडर न्यू मैनेजमेंट आपको 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलैंड में मिलने वाला है। इसका नया मैनेजमेंट जो है अर्जुन सुपरमार्केट ने ले लिया है। आके हेलो जरूर कीजिएगा, अपनी वीकेंड की ग्रोसरी शॉपिंग हमारे साथ मिलकर कीजिएगा। इन स्टोर स्पेशल्स आप पा सकते हैं और साथ साथ $100 हर घंटे पर आप जीत भी सकते हैं सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और साथ साथ आपको एक्सक्लूसिव हम के ग्रोसरी बैग्स भी मिलने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइजेस भी आपके लिए हमने रेडी किए हैं। तो ये बहुत सारी सेविंग्स आपकी हो सकती है हम की टीम के साथ मिलकर। न्यूलैंड में आपको पहुंचना है सुबह 11 बजे ऑनवर्ड्स। याद रहे फूड फॉर लेस न्यूलैंड में एक एक्साइटिंग नए मैनेजमेंट अर्जुन सुपरमार्केट के जरिए आपको ढेर सारी बहुत चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जिनको आप देखेंगे और फिर साथ साथ हमारी टीम से भी मुलाकात कर सकते हैं। अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं काशिका 12 बजे तक आपका साथ निभाने वाली हूँ। उसके बाद मैं भी न्यूलैंड पहुँचने वाली हूँ एट द अर्जुन सुपरमार्केट। हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे स्टार्टिंग? कशिश फूड्स की ओर से आपके लिए माय टाइम 12 बजे तक।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: देखिए एक्सपर्ट्स अड्डा में एक रिसर्च के जरिए पता चला है जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं एक बात जरूर करते हैं, कुकिंग ऑयल एक बहुत ही फेमिलियर इन्ग्रीडियंट जो हमारी किचन में होता है। और ये कह सकती हूँ कि एटलीस्ट हम ये तो कर ही सकते हैं ये ऑयल खरीदने से पहले कि उसे एग्जामिन करें किस तरह से हम आप वो ऑयल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑयल्स जो हैं हमारे एक फ्लेवर में ऐड करते हैं बहुत सारा, कुछ न्यूट्रिशनल फंक्शंस भी उसमें होने चाहिए। फैट एक बहुत ही जो फैट्स जो हैं वो एक बहुत ही क्रूशल हेल्प बना देते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए डी ई और के। जब तक आपका डाइटरी रिक्वायरमेंट में एडिक्वेट फैट नहीं होता तब तक आप समझ लीजिए आपका मील जो है वो इतना रिच नहीं हो पाता। सो इन दिस सेंस अगर हम कहें कि कुकिंग ऑयल इज़ नॉट अ पैसिव इन्ग्रीडियंट, एक्चुअली ये एक इन्ग्रीडियंट ऐसा है जो आपको इनेबल करके दे सकता है आपके न्यूट्रिशन को। ओके, फैट्स जो होते हैं जनरली हम लोग सोचते हैं ओ माई गॉड इसमें मोटापा होगा ही होगा, लेकिन दिस आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि वाइडली हम जानते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे हार्ट की हेल्थ को, उसका मॉडरेशन जो होना चाहिए यूज़ वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रादर दैन अवॉइडिंग कि ऑल फैट्स टुगेदर कि हम बिल्कुल भी फैट नहीं लेंगे, बी माइंडफुल कि आपको कितनी क्वान्टिटी में उसको लेना है, एक्सेस नहीं लेना है। और साथ साथ किस तरह से तेल को जब हम गर्म करते हैं उस तरह से वो तेल की क्वालिटी जो तेल की एक जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पौष्टिक है कितने बेनिफिशियल हो जाते हैं वो या नहीं हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आप ऑयल्स को जब मिक्स करते हैं चाहे सौते करने के टाइम डीप फ्राइंग के टाइम, उससे क्या होता है एक इंटेग्रिटी और परफॉर्मेंस जो होती है जो आप लेकर आते हैं सामने खाना बना के वो बहुत फ़र्क पड़ता है। सो ये जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कभी कभी टेस्ट और क्वालिटी में फ़र्क लेकर आ सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑयल जो है अपना जो बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो दरअसल वो इफ़ेक्ट खो देते हैं। कुछ लोग कभी भी कोई एक सिंगल ऑयल जो होता है ना वो आपको पूरे आंसर्स नहीं दे सकता है, इनको ब्लेंड करते हैं इनसे इनकी जो स्ट्रेंथ मिलती है डिफरेंट फैटी एसिड्स जो स्टेबिलिटी फ्लेवर न्यूट्रिशनल बैलेंस आपके लिए लेकर आते हैं वही चीज़ें आपके लिए फॉर्मुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं आपकी कुकिंग के जो आप मेथड को इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चेक आवर बॉटल जब हम तेल खरीद रहे होते हैं कि किस तरह से ये परफेक्ट है कि नहीं आपके लिए। नो मैटर कोई भी ऑयल आप सेलेक्ट कर ले, ओवरऑल ईटिंग पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके डाइट में ऑलरेडी रिच सोर्स है फैट का या फिर कुछ ऑयल्स आपको लगता है कि इसमें घी भी डालना है तेल भी डालना है, ओके ओवर द टाइम ये जो वैरायटी और मॉडरेशन है आप रिजिड रूल्स को फॉलो ना करके एक सिंगल इन्ग्रीडियंट सोल्यूशंस की ओर ना जाएं, कोशिश करें थोड़ा मिक्स एंड मैच करें। बट द राइट टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस किस तरह से ऑयल्स हमारी बॉडी के लिए हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। दैट्स अबाउट इट। आपका कोई भी ऑयल हो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर योर लाइफस्टाइल, आपका लॉन्ग टर्म वेलबींग उसको सपोर्ट करना चाहिए, और किस तरह से आप जब अपना मील बनाते हैं वो आपको प्रिपेयर करते हैं जो वो आप एंजॉय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते।
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
1: ऑफिस शाउट आउट कमिंग अप नेक्स्ट 5599 पे आप जरूर टेक्स्ट करें या फिर 0800 हम पर मुझे कॉल करें। अगर कहीं ऑफिस या आप ऊबर से सुन रहे हैं, आप कोरियर ड्राइवर हैं, कोई भी हो सकते हैं।
0: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Woolworths has savings in every aisle. Get Alpine Colby or Edam 1kg cheese blocks for $12.90 each and Makona coffee sachets 8 to 10 pack just $3.99 a pack. Woolworths weekly specials. Now that feels good. T's and C's apply.
3: The Spec Savers Specs Travaganza store-wide sale is on now.
4: Phew, bit of a tongue twister, hey?
3: Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200, only for a limited time. Should have gone to Spec Savers. Include single vision lenses, conditions apply.
2: Capture the impossible with Spark and the new Samsung Galaxy S26 series with huge deals on now. Heading to Spark Arena? Put the latest nightography to the test and capture the best details of the night. Then with Photo Assist, easily say goodbye to the dancing photo bombers in the back. Buy from Spark for huge deals on the Galaxy S26 series now. T's and C's apply. Delivery times may vary.
5: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz और स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477
6: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स
7: गाड़ी चलती रहे टेंशन

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office Shoutout.
2: So, Office Shoutout में आज मेरे पास आप जूली स्मिथ कोई कंपनी है वहां से मुझे आप बरखा सुन रहे हैं. सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. और इसी तरह से अगर आप अपने ऑफिस शाउट आउट हमें देते चले जाएंगे तो यही समझ लीजिए कि बस हम आपको कहीं ना कहीं से इतना ज़्यादा याद भी करने लग जाते हैं, है कि नहीं. अच्छा चलो, याद करने से मुझे एक बात और याद आई, वो ये बता दूं मैं आपको. आप रुवा ऐप के ज़रिए अगर हमें सुन रहे हैं तो भाई आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ ये है कि देखिए, एक तो पहली बात, इसके ज़रिए आपको आज लास्ट डे फ्लाईवे फ्रेंजी का, और साथ साथ चल यू नो आप हमारे वहाँ से कैश जीत सकते हैं रुवा के ज़रिए. बट ये रुवा इतना कमाल का है जिसके ज़रिए जितने सारे रेडियो स्टेशन, बहुत सारे, आई कांट डोंट रिमेंबर द नंबर्स, बट उसमें नंबर वन पोजीशन पे मतलब आ रहा है हमारा रिवाइन म्यूजिक स्टेशन. हम रिवाइन 60s और 70s के ट्रैक्स आपके लिए हम लेकर आते हैं. नंबर टू पोजीशन पे रोवा के म्यूजिक स्टेशंस में आता है नाम, और वो आता है हम का जूक बॉक्स, 80s का जूक बॉक्स. नॉन स्टॉप 80s के ट्रैक्स आप सुन सकते हैं. इसके साथ साथ जब आप वहाँ पहुँच ही चुके हैं तो फिजी भजन, चढ़ती कला, पंजाबी हिट्स, फिजी की तरसंग्रह और राहत फतेह अली खान जी जो बहुत जल्द हमारी सुपर सिटी में आने वाले हैं, इनके गाने भी आप सुनते चले जाएंगे.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ईट बेटर लिव बेटर, बस यही पैगाम मैं देना चाहती हूँ और साथ साथ आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसी खास बात जो कि आई थिंक कम्स विद अ गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि टूरिस्ट अराइवल जो है इट्स ऑन इट्स हाई राइट नाउ। फ्यूल क्राइसिस मे बी इट बाइट्स इट, बट टूरिस्ट अराइवल्स जो थे दे वर द हाईएस्ट दिस मार्च एवर सिंस कोविड-19। और अब उसके बाद आप देखो फ्यूल क्राइसिस ने हिट कर दिया, लेकिन मिडल ईस्ट की वजह से आई थिंक ये लगता है। बट स्टैट्स न्यूजीलैंड के जो नंबर्स थे ओवरसीज विजिटर्स के जो अराइवल्स बता रहे थे दैट हिट टू 3.51 मिलियन इन द ईयर विच एंडेड डिसम्बर 2025 विच वेंट अप बाई 6% फ्रॉम द प्रायर ईयर। तो ऐसे कुछ टूर ऑपरेटर्स वगैरह ये बता रहे हैं कि थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड शेपिंग अप वेल, और उन्होंने कहा कि रोटोरुआ में भी काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं, लोअर नंबर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बट यूएस से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन के बावजूद कहते हैं कि ये चैलेंज था रिसेंटली, बट उसके बावजूद ये चैलेंज के बाद भी अगर 2025 इतना अच्छा गया तो डेफिनेटली आगे समय भी अच्छा जा सकता है। बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट destination amongst all the chaos happening around the world, so definitely safe destination par bahut se log aana chahenge and I'm sure aap bhi bahut se logon ko bulana chahenge. Bhai let's pray ki jaldi se fuel crisis jo hai khatam ho aur hum in sab ko dobara se ek entry de paye.
1: Bro look at you, blue light screen ko itna ghoor raha hai jaise wo tujhe promotion de dega, aur ye coffee lukewarm. बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
2: लिसन टू हम ऑन रोवा एवरी वीकडे एट 8 AM, 11 AM, 1 PM एंड 5 PM। हम देंगे एक स्पेशल कोड वर्ड, यू गॉट 60 मिनट्स टू एंटर इट इन द रोवा ऐप एंड गो इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू फिजी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द रोवा ऐप नाउ, विन अ ट्रिप टू फिजी, ओनली ऑन हम ऑन रोवा। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
3: Spark Satellite powered by Starlink satellite to mobile technology is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
4: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask at checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
5: Big news, New Zealand. Mother's Day may be over, but our Triple Dip promotion is still on. There's 100 extra prizes of $30,000 that must be won. Get a Triple Dip in-store or online. Prizes drawn Saturday 16th of May. T's and C's apply.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
7: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboard from 6 PM. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhaiyaji, Rowdy Naman Chaffer alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken Botany.
8: Don't miss out.
9: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
10: Bollywood ke sabse bade hit gaane.

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: आज वैसे ड्रीम डायरी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ड्रीम किसी ने शेयर किया है कि भाई आप अब्रॉड गए हैं. अब अब्रॉड कहाँ गए हैं ये नहीं आपने बताया, लेकिन अगर आप बात करते हैं अब्रॉड जाने के लिए, किसी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, तो ये सिंबलाइज करता है एक्सप्लोरेशन, कोई अनफेमिलियर टेरिटरी है या फिर आपके एक पर्सनल ग्रोथ. ये हमेशा रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपने कम्फर्ट जोन में से निकल के कुछ बाहर करना चाहते हैं और नए एनवायरनमेंट, नई जॉब शायद पिकअप करना चाहते हैं. ये ड्रीम जो होता है आपके लाइफ के ट्रांजिशन में आता है, या फिर आप अपने यू नो किसी एक्सपेंशन को ढूंढ रहे हैं, तब कुछ ऐसी चीज़ आपको डेफिनेटली नज़र आती है. ऐसे इंडिकेशंस आते हैं जब आप बातें करते हैं फॉरेन कंट्री जाने की या अब्रॉड जाने की. ओके, ये बातें तो मैंने यहाँ तक कर ली हैं, लेकिन आपको एक बात बता देती हूँ भाई, एक चीज़ जो बहुत ख़ास हो रही है वो है कल, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में कई साल पहले 147 ईयर्स बैक कुछ ऐसे लोग आए थे एक ऐसी बोट में चढ़कर, जिसमें उसके बाद उन्होंने अपनी कंट्री को वापस ही नहीं देखा. वो भी कई ख्वाब लेकर आए थे, लेकिन इन ख्वाब को जब उन्होंने देखा और फिर वो हार्डशिप्स को उन्होंने फेस किया, तो उसके बाद क्या हुआ उन इंडियंस का, जो फिजी इंडियंस जो थे. अब बहुत कुछ उन्होंने सहा और उसके बाद अब देखिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ये एक दर्दनाक कहानियाँ जो होती जब सुनने को आती है ना, तो बहुत बुरा लगता है. लेकिन चलिए इनकी रिमेम्बरेंस में 147th रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है, गिरमिट रिमेम्बरेंस डे. ये हो रहा है कल मलायोला कम्युनिटी सेंटर में, जो कि मैंगरी में है. शाम 4 बजे से दरवाजे खुल जाएंगे, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, चाय स्नैक्स ये सब आपके लिए बंदोबस्त भी किया गया है. और साथ साथ यहाँ पर कैंडल्स कोमेमोरेशन होगी, साथ साथ आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले होगा, सीनियर रिकग्निशन अवार्ड्स होंगे, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव सिंगिंग और साथ साथ क्विजेस, स्पॉट प्राइजेस, स्पीचेस वगैरह भी होंगे. फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड के फेसबुक पेज पर आप पहुंच सकते हैं. और देखिए, अगर आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग वहां इकट्ठे होते हैं इनकी याद में. तो डेफिनेटली इसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा. कोशिश कीजिए आप इसमें, जब आप इसका हिस्सा बन रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा, क्योंकि यू नो वहाँ खाना पीना वगैरह भी है, तो आई एम श्योर बाद में अच्छा नहीं लगेगा कि आप कुछ यू नो निराश होके लौटें. ओके, अब मैं बात कर रही हूँ अबाउट समबडी जिनका जन्म हुआ आज, वो 59 ईयर्स की हो गई हैं. कहीं से भी नहीं लगता कि वो 59 ईयर्स की हो गई हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक टेलीविजन पर्सनैलिटी जो लगभग करीब 70 फिल्म्स में आई, लेकिन इनकी एक मिलियन डॉलर स्माइल, ओ माय गॉड, इन्होंने आज तक अपनी इस खूबसूरती को बना के रखा हुआ है. और 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है इन्होंने जीते भी हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको पद्मश्री भी मिला है, विच इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री. आई एम टॉकिंग अबाउट द 1-2-3 गर्ल, यानी कि माधुरी दीक्षित. इन्होंने कमाल की अपनी एक अबोध फिल्म में आई थी, और उसके बाद तेजाब में 1988 में शी नेवर हैड टू लुक बैक, दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, ऐसी कितनी मूवीज इन्होंने की हैं जो हमारे दिल में आज तक बसी हुई हैं. हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू हर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू माधुरी दीक्षित जी. और उनकी एक फिल्म जो है जिसमें एक उन्होंने बड़ा अलग सा रोल किया था उस टाइम पर, जिस समय वो एक पीक पे थी अपनी, लेकिन फिर वो फिल्म का जो उनका कैरेक्टर था लोगों को बाद में पसंद आने लगा. चलिए सुनते हैं. दिल से दिल तक. फिल्म थी पुकार एंड इसमें अनिल कपूर थे साथ में और नम्रता शिरोडकर.

थ्रोबैक की तरफ तो मैं पहुंचती हूं और साथ साथ आपको याद दिला देती हूं एक और ऐसी चीज हो रही है हमारी सुपर सिटी में जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे एंड दिस इज आल्सो अ फैमिली इवेंट। ये है भोजन मेला जो श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रही है और ये एक सपोर्ट है फॉर द लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। ये प्रोजेक्ट जो है इसके जरिए एक बहुत बड़ा टेम्पल भी बनने वाला है। तो ये संडे को सुबह 11 से 4 बजे तक शाम के चलने वाला है फूड कार्निवाल और इसमें फ्री एंट्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्री खाना है आपके लिए बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर रेस्टोरेंट, ज्वेलरी स्टॉल्स, क्लोथिंग स्टॉल्स, हेना है, फेस पेंटिंग है, बाउंसी कासल बच्चों के लिए और खूब सारा गेम वेम खेलने के लिए बच्चों के लिए मौका है। तो एक बड़ा अच्छा फैमिली सा इवेंट है ये, डेफिनेटली आपको पहुँचना है भोजन मेला में जो श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए किया जा रहा है 378 आरआरिमो रोड रामा रामा आप पहुंच सकते हैं। ये ऐसी एक जगह होगी जहां पे एक टेंपल, एक कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स के साथ आपके लिए तैयार हो जाएगा। ज़रूर वहां के जाके दर्शन कीजिएगा, मैं होकर आई हूं, बहुत बहुत ही पीसफुल जगह है, वैसे मैं आपको मिलने भी वाली हूं वहां पर। तो चलिए पहुंचते हैं आपको लेकर एक ऐसे गाने की तरफ जहां पर मैं कह सकती हूं उनका एक फैशन का स्टेटमेंट बन गया था, किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने थे लेकिन आमिर खान के साथ वो क्या लगी थी। एंड दिस इज़ द बर्थडे गर्ल फ्रॉम द मूवी दिल।

फिलहाल एक ब्रांच अर्जुन सुपरमार्केट की फूडफॉल लिस्ट जो है वो अभी इनॉग्रेशन हो रहा है, और हमारी टीम से ब्रेकफास्ट शो और ड्राइव शो की टीम वहाँ पहुँचने वाली है। पहुँच जाइए अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और जीतिए इनाम, और साथ साथ पाइए ढेर सारे स्पेशल्स। एंड दिस इज हैपनिंग इन न्यू लिन, ऑपोजिट द न्यू लिन मॉल।

0: आजकल जो चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
2: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
3: And now, making their debut for Macca's, dishing up the new Dunk Chicken Range with Korean sticky barbecue sauce, the Harlem Globetrotters.
4: Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
5: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: From the age of 10, I knew you would come. I didn't know when, but you arrived. Almost identical twins. Not quite. One just slightly bigger than the other. But you are the bravest part of me. The older I get, you're not always first into the room, but sometimes, if I give you the support you need, you'll be first into the room. You're close to my heart, and I love you. My name is Ursula Carlson, and this is a love letter to my breast.
10: Get to know yours, visit breastcancerfoundation.org.nz.
11: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Professional firefighters have cancelled their one-hour strike today in light of a fatal house fire in Christchurch. One child has died and four other people are in hospital. Academics don't think that the country's health star rating is cutting it. Auckland University research suggests that junk food is strategically designed to lure people in. Lead author Joshua Clark believes the star rating system is missing out on essential information.
13: And it doesn't include nutrition warnings, which have been implemented overseas, that really tell you what's in the food and how unhealthy it can be.
12: A bill to ban under-16s from social media has been put on hold for now. The Education Minister's office says a wider programme of work is being done and we'll be able to say more soon. And Field Days is looking to mix innovation with true farmer authenticity this year. It's celebrating selling out of its stallholder sites, a first in roughly 12 years. General Manager Brett Beagley says keeping it fresh will ensure longevity.
14: As long as we're staying true to our roots and then adapting to the changing environment, then I think we're always going to have a successful event.
12: In rugby league with Machinery House, the CEO of the Warriors believes the NRL is becoming bigger than Super Rugby and NPC in New Zealand. Speaking on the Chiming In podcast, Cameron George is buoyant about the future.
15: The All Blacks will always be what they are, but rugby is certainly looking over their shoulder at us. Mm. I feel that we're really getting a movement there that's never been seen before.
12: And in golf, half a dozen players have a share of the lead at 3 under par after the opening round of the US PGA in Pennsylvania.
11: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: Hum par shok suchnaye aap tak late hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
17: Suchit kiya jata hai ki Manuriva ke Arvind Bhai Vallabh ki maa, Mita Ben ki saas, Fiji mein Naboa Central Store ke malik swargiye Van Mali Bhai Vallabh ki patni, Jashu Ben Mistri ki mrityu, Middlemore Hospital mein ho gai. अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। सूचना दोबारा सुने, मानुरीवा के अरविंद भाई वल्लभ की मां मीता बेन की सास, फिजी में नावुआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वन माली भाई वल्लभ की पत्नी जशु बेन मिस्त्री की मृत्यु मिलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा।
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
11: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
18: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
11: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: The highs of 18 overnight, temperature of 8. आज का forecast बताया जा रहा है कुछ southerlies जो है आज सुबह बढ़ती चली जा रही. It feels like 13 degrees right now. 5:24 पर sunset बताया गया है.
11: My time with Kashika brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
19: Mid-morning maza.
20: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
19: My time with Kashika.
17: Namaskar and a very very good morning to you people. How are you? वैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ. माई टाइम आपके लिए मैं काशिका कशिश फूड्स की ओर से लेकर आ जाती हूँ मंडे टू फ्राइडे. और आज फ्राइडे का दिन है और ऐसे में धूम मस्ती धमाल आप ज़रूर कर रहे हैं. थोड़ी देर बाद हमारी टीम आपको लाइव अपडेट्स देने वाली है फ्रॉम फूड फॉर लेस सुपरमार्केट, जिसके नए अब एक ओनर्स हैं उस बैनर तले अर्जुन सुपरमार्केट वाले, जो है एक नए रूप के साथ आपके लिए वहाँ पर बढ़िया से बढ़िया डील्स के साथ लेकर टीम हम पहुंच रही है. ब्रेकफास्ट शो और ड्राइव शो की टीम फूड फॉर लेस जो नए मैनेजमेंट के साथ साथ आपको मिल रही है. अच्छा चलो, ये तो सब एक्साइटमेंट हमने आपके लिए बिल्ड कर दिया है. जो वहाँ पे पहुंचना है पहुंच जाइए, गिव अवेज हैं बहुत सारे. लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता देती हूँ, रिमाइंडर दे देती हूँ, क्योंकि मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक हूँ. कैश जीतिए विद चर्डल. और ऐसे में कोई कीवी का वर्ड, कोई सेइंग, कोई फ्रेज अगर आपको पता है तो आपको पता है कि आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप पहुंच जाइए रुवा ऐप पे. वहाँ विन कैश विद चर्डल, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक पजल मिलेगा या कीवी कोई वर्ड मिलेगा, उसको फिल करना है. बस $100 जीतने के लिए आपका नाम फटाफट ड्रॉ में चला गया. बाय द वे $7,000 है हमारे पास, जिन्हें हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के बीच में. एक और जगह जो खास तौर पर आप लोगों को फ्लाई अवे फ्रेंजी का आज फिनाले डे है, जहां मैं आपका कोड लेने आपको देने वाली हूं बस थोड़ी ही देर बाद. तो याद रखिएगा, आप रोवा के जरिए इसमें भी भाग ले सकते हैं और फीजी की टिकट जीत सकते हैं. हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर समझिएगा. ऑलराइट, चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं आपके लिए फूड फॉर लेस अंडर न्यू मैनेजमेंट अर्जुन सुपरमार्केट की अमेजिंग जगह, जहां हमारी टीम आपका करेगी इंतजार.
11: बचाओ क्या,

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: सेलिब्रेटिंग एनजेड म्यूजिक मंथ
3: बैक योर बैकयार्ड बीट्स.
4: तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे में हम आपको एक मौका देते हैं जहां हम एनजेड म्यूजिक मंथ में हमारे लोकल टैलेंट को बताते हैं कि भाई एक प्लेटफॉर्म आपके लिए हमने तैयार कर दिया है. तो ये गाना जो मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ, आप गाना सुनिए, प्यार करें इस गाने को, या फिर आप चाहते हैं कि इसको हम फिर से प्ले करें आपके लिए या स्किप करें, आपका वोट बहुत मायने रखता है क्योंकि इसकी वजह से हम आपके जो सिंगर हैं, फेवरेट सिंगर हैं, उनको टॉप थ्री के पायदान में ले जाएंगे. एंड दिस डजंट स्टॉप इट ऑल, क्योंकि इसके बाद हम आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ बताने वाले हैं कि आप सोशल्स पर जाएं, उनके पोस्ट को लाइक करें, डिटेल्स देखें. और आज के जो मेरे कलाकार हैं वो सहोटा विजन्स के क्रिस्टियन जेकब सहोटा हैं. एक डायनामिक भाई बहन की जोड़ी है जो साउथ ओकलैंड पोकेकोई में सहोटा विजन के नाम से जाने जाते हैं. बहुत से लोग इनका म्यूज़िक सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप लाइक करेंगे, सुनिए.

0: कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं। आज मैं मतलब फिलहाल दो दिन के अंदर मुझे दो लोग ऐसे मिले हैं जिनका फोन हैक हुआ है, और एक बंदा जो है वो एक कोई विक्टिम बन चुका है उनके मोबाइल फोन के स्कैम के जरिए, विच इज कॉस्टिंग मोर देन $20,000। तो ये जो थे, इनके पास एक मोबाइल था, उन्होंने एक थर्ड पार्टी के ऑपरेटर को इस्तेमाल किया और 1NZ के नेटवर्क को उसकी सर्विसेज ली। तो इन्होंने एक पहले एक टेक्स्ट लिया कि इनको लगा कि 1NZ से टेक्स्ट आ रहा है, और करीब 1:30 बजे के करीब उन्होंने कहा कि एक नए फ़ोन के साथ आपको स्वॉप करना पड़ेगा सिम। अब इन्होंने सोचा कि शायद कोई ऐसी एक्टिविटी होगी, पता नहीं क्या था, बट ही केम इन टू द यू नो जाल, उस जाल में फंस गए, और उसके बाद उनको नोटिफिकेशंस वगैरह आने लगे। कई बार ऐसा भी उनके साथ हुआ, उन्होंने नोट किया उनकी वाइफ ने कि $19,000 एक बारी में उनके निकल गए, फिर 200-200 करके निकलते चले गए। इमोशनली इट एक्चुअली वर्कड आउट वेरी बैड, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप सिम नंबर जो उन्होंने बताया 0800-800-021 करके, अब बैंक आइडेंटिफाई थीम थेफ्ट इसके ज़रिए कोशिश कर रहे थे वो कि पकड़ने के लिए कि कौन है कौन नहीं है। तो ये जो सिम कार्ड मिस्ट्री है, इसके ज़रिए कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ कांटेक्ट किया, और फिर ये बढ़ता चला गया। अब ये पता नहीं बंदा कहाँ है जिन्होंने एक शॉकिंग स्पीड के साथ इसे हाईजैक करा है सिम को, और सिम में से जो कॉन्टैक्ट नंबर और उसके ज़रिए बहुत सारे। तो क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनके फ़ोन हैक हुए हैं? बी वेरी वेरी केयरफुल राइट नाउ, और आप ज़रूर इस चीज़ को रिपोर्ट करिएगा, क्योंकि दीज काइंड ऑफ थिंग्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं लोगों के लिए। कई लोगों के पैसे जो हैं वो निकल भी चुके हैं।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold।
8: Reliance Ventilation System।
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
8: Moisture और ventilation का problem लगता है।
9: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
8: Oh, that's not good। हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer। और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
10: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111। Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
11: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. You won't want to miss this on the 16th and 17th of May at Mitre 10.
12: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
13: Kyun? Kya hua?
12: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
14: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
15: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
14: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
15: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
14: Available at selected branches. T's and C's apply.
16: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
17: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Food.
0: So, मेरी आज की सिक्स वर्ड की स्टोरी है, आई चेक माई फोन नो सिग्नल. आई चेक्ड माई फोन नो सिग्नल. वैसे आपके फ़ोन पे अगर सिग्नल है तो भाई याद रखिए कि आपके लिए आपका फ़ोन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है. इसके साथ साथ आप रोवा पे ज़रूर ज़रूर जल्दी जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि फ्लाई अवे फ्रेंजी में मेरा वक्त आ चला जब मैं आपको ये कोड दूं. अगले एक घंटे तक आपके लिए ये कोड वैलिड है और आज का कोड है GROG. GROG, I hope you know the meaning of grog. Grog का मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं. तो ये एक कावा है, एक तरह का, यू नो, grog इज लोकली नोन एज यकोना या कावा. ओके, सो GROG एंड आपका ये अब कोड है. फटाफट जाइए, एक घंटे तक ये वैलिड है.
13: सिक्स वर्ड स्टोरी. Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बिल्कुल, जब हम शुरू हो जाते हैं हम रुकते भी नहीं, 24/7 आपके लिए हम आपका साथ देते चले जाते हैं। जहां भी जाइए हमें अपने साथ लेके जाइए, लेकिन इस समय हमें चले जाना है एट फूड फॉरलेस सुपरमार्केट न्यू लैंड, जहां पर एक नए मैनेजमेंट के अंडर अर्जुन सुपरमार्केट हैज टेकन ओवर फूड फॉरलेस, और यहां पर हमारी टीम एज प्रॉमिस्ड पहुंच चुकी है। एंड पूजा रानी, पूजा जी हमारी ब्रेकफास्ट शो की होस्ट एंड हमारी प्रमोशन मैनेजर इज ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग पूजा, हाउ आर यू?
1: गुड मॉर्निंग कशिका जी। यस, एज प्रॉमिस्ड हम आ चुके हैं आज फूड फॉरलेस सुपरमार्केट इन न्यू लैंड, और जैसे कि हमने कहा था कि आज इनका ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है। एंड आई मस्ट से यार, इट लुक्स रियली अमेजिंग, और बहुत ही अच्छा लेआउट, सम अमेजिंग अमेजिंग स्पेशल्स, एंड ऑफ कोर्स देयर सो मच वैरायटी। लाइक हम जैसे हम आए तो हमने वही डिसाइड किया कि पहले चलो घूमकर देखते हैं ना हाउ थिंग्स आर अराउंड, एंड दैट्स व्हाट वी वर डूइंग जब आपने कॉल किया। सो वी गॉट सम रियल नाइस ओपनिंग स्पेशल्स जो आप यहां पर आज चेकआउट कर सकते हैं, विच इज 13 वेरोनिका प्लेस न्यू लैंड। एंड रिमेम्बर कि ये उसी लोकेशन पे है जहाँ पर जो फूड फॉरलेस न्यू लैंड पहले था। इट्स द सेम लोकेशन, इट्स जस्ट कि जो ग्रैंड ओपनिंग है आफ्टर सम बिट ऑफ रेनोवेशन एंड चेंज इन सेटअप एंड मोव पर प्रोडक्ट्स अंडर न्यू मैनेजमेंट, आज आपके लिए यहाँ पर ये हो रहा है। एंड वी गॉट सम नाइस स्पेशल टू यू नो गिफ्ट टू यू, एंड प्लस यहाँ पर जब आप आओगे आज हम अपना जो शॉपिंग बैग्स है हम का ना ये भी लेकर आए हमने। आई थिंक हमने रखा ही था कि खत्म भी हो गया है बाय द वे, अभी वापस से थोड़ा और स्टॉक लाकर रखना पड़ेगा, सो वी विल गेट दैट डन एज वेल। एंड जितने भी लोग हमारे साथ आज यहाँ पर शॉपिंग करेंगे टिल द टाइम वी आर हियर, हम हर घंटे $100 का एक शॉपिंग वाउचर गिव अवे करेंगे, विच मीन्स 11 to 12 के बीच में जो वाउचर है इस घंटे का ये थोड़ी देर बाद हम ड्रॉ करेंगे। एंड हाउ इज दैट गोना हैपन वी विल आल्सो लेट यू नो, बट स्पेशल से पहले हमारे साथ यहाँ पे रूसबे भी है ड्राइव शो से, एंड वी गॉट विजय फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो एज वेल। दोनों आपस में भी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं उनको क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा सम अमेजिंग अमेजिंग स्पेशल्स। आपको बताएं कशिश का सनफ्लावर ऑयल जो है यहाँ पर 5 लीटर 1799 में आपको मिल रहा है, प्लस जो एक और एक कैनोला ऑयल है ये 1499 में आपको 5 लीटर्स ये मिल जाएगा। सो सम रियल नाइस डील्स। इनफैक्ट घी कितना महंगा हो गया यार, सब बोलते हैं घी खाओ हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन खाओ कैसे जब दाम इतना ज्यादा हो। तो ये भी आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। जो मिल्की ओक ब्रांड का घी है ये 500 ml आपको 999 में मिलेगा आज ओपनिंग स्पेशल के तहत, और 10 kg का जो फिलब्री चक्की आटा है ये आप 1199 से आज यहाँ से लेकर जा सकते हैं। सो व्हाट विल डू इज कशिका जी, अभी थोड़ी देर बाद वापस से आपसे बातें हम जरूर करेंगे, एंड विल गिव यू सम मोर डिटेल्स ऑन द अदर स्पेशल्स। फ्रेश प्रोड्यूस भी यहाँ पर बहुत है। इन बाय द वे एक चीज पे मेरी नजर पड़ी, ये जिंजर जो है इट बिकम सो एक्सपेंसिव दीज डेज, लेकिन अगर आज आप यहाँ पर आएंगे तो पर के जी $4.99 से आप जिंजर के जा सकते हैं।
2: ये
1: आप तो आ रहे हो तो हमको पहले से ही पता है,
2: डील क्वीन हूँ मैं।
1: यस एब्सोल्युटली, सो कम डाउन टू 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लैंड, जहाँ पर आज न्यू लैंड सुपरमार्केट का ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है। एंड बिफोर आई लेट यू गो वेरी क्विकली रूसबे, व्हाट इज सो फार योर फीडबैक?
3: बहुत ही बढ़िया, जो फीडबैक है मेरा वो आपको यहाँ पे आके पता चलेगा, लाइव यहाँ पे आपको मैं फीडबैक दूंगा। उसके लिए आप आ जाइए फूड फॉर लेस न्यू लैंड अंडर न्यू मैनेजमेंट।
0: हाँ, लेकिन और क्या बताओगे उसपे, जगह के बारे में बताओ, कुछ और बताओ, तुम्हारे जो फैंस है वो वहाँ पे पहुँचेंगे ना रोल करते हुए?
3: अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या? तो अगर वो फैंस फैंस अगर आ रहे तो मेरे लिए आए, दुकान के लिए क्यों आएंगे?
0: दोनों चीजें के लिए, बस ग्रोसरी शॉपिंग होगी तुम्हारे अच्छा। साथ फोटो शोटो ली जाएगी तो मजा आएगा।
3: अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया सेटअप है, मैं काफी टाइम के बाद आ रहा हूँ ये फूड फॉरलेस में, मैं बहुत पहले आया था और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ इस जगह को। इट्स अ कंप्लीट न्यू लेआउट, कंप्लीट न्यू फील, न्यू वाइब टू इट, एंड चीजें जो रेंज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इट्स अमेजिंग। लाइक जो सेटअप भी किया है बहुत ही बढ़िया सेटअप किया है, एंड इट हैज गॉट अ लवली वाइब टू इट। काशी जी आप भी जल्दी आ जाइए यहाँ पे,
0: बस पहुंच रही हूं।
3: क्योंकि हाँ बस आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे को तो लग रहा है आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, आप आज आधा स्टोर तो आप ही खाली कर लोगे
0: लग रहा है ऐसा, जिस तरह से पूजा ने और आपने मुझे बताया रुस्बे, तो मैं तो डेफिनेटली शो खत्म करते ही स्ट्रेट अवे हेड ऑन करने वाली हूँ एट 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लैंड, जहाँ पर हम के ब्रेकफास्ट शो की टीम और ड्राइव शो पहुंच गए हैं फूड फॉर लेस विच इज अंडर द न्यू मैनेजमेंट, और थोड़ी देर बाद आप लोगों से दोबारा बातें होंगी।
4: थोड़ा सा हॉल बना दे। साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहि

0: to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: तो वाइब मिक्स इवेंट्स आपके लिए ग्रैंड मस्ती नाइट लेकर आ रही है 23rd ऑफ मई के दिन द नेटबॉल मानो रिवा. और यहाँ पर आरजेज जो हैं फिजी के एसेंस, जय भैया जी, राउडी नमन जो हैं ये आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं. डांसिंग लेजेंड चाफार जो हैं 17 साल के बाद न्यूजीलैंड आ रहे हैं. 5 से 6 मिक्सड मसाला स्किट्स आपके लिए होने वाली हैं. डुअल आवाज़ जो निकालते हैं मनी डिसूजा ये भी होने वाले हैं वहाँ पर. अमेजिंग मोंटो मोनिका और साथ में युवा डांस ग्रुप. टॉप डीजेस परफॉर्म करेंगे हमारे अपने केतन. लंच बॉक्स वाले भी आपको वहां मिलने वाले हैं. अलॉन्ग विद ऑल दिस ढेर सारे गिवअवेज हैं. आपको फ्री पार्किंग मिलने वाली, सिक्योरिटी भी आपको मिलने वाली है. तो आपको स्ट्रेट अवे पहुंचना है वाइब इवेंट्स के द्वारा द ग्रैंड मस्ती नाइट 23rd ऑफ मे के दिन नेटबॉल मानोरिवा में आप पहुंच सकते हैं. और बहुत जल्दी जल्दी ये टिकट्स जा रही हैं तो जाके फटाफट ये टिकट्स खरीदिए.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Lace up and lock in. It's game time at Rebel with 30% off New Balance clothing and footwear, and 30% off all Adidas adult clothing, plus 30% off all Adidas kid shoes. Hurry, these deals and more end Sunday only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
2: Autumn's arrived, but the house needs work. Heat pump to clean, gutters are full, that laundry tap still drips. Don't worry, AA Home can help with tasks at your place. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
3: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
4: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
3: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
4: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
3: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
4: 100% authentic and pure as mother's love.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर

रेस्क्यू मी रिसाइकल में मैं आपके लिए एक चीज जो लेकर आ रही हूँ इस बार, सब्जियां। अब ये लेफ्ट ओवर सब्जी जो होती है उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया था। अब ये आइडिया मेरे लिए ये है दैट जो समोसे होते हैं ना, आपने समोसे में कई तरह की फिलिंग्स, आलू मोस्टली होता है, लोग आज तरह तरह की यूज़ करते हैं, बट कभी कभी आपकी सब्जी बच जाती है, वो बची हुई सब्जी जो होती है, आपने मैदा है, मैदे की आपने अजवाइन वाली आपने आटा गूंद लिया, उसके अंदर आपने बेल के उसके अंदर ये मिक्स सब्जी डाल दिया, बच्चों को आपने भेज दिया, बच्चे डेफिनेटली इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो गया अभी के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद हम पहुंचने वाले हैं न्यूलिन फूड फॉरेस्ट, जहां हमारी टीम से ब्रेकफास्ट टीम के विजयन पूजा और साथ में रुजबे सैंडी आपको वहां पे मिलने वाले हैं। चलिए जल्दी कीजिए, पहुँच जाइए वहाँ।

0: Story time with Kashika.
1: तेरे मुंह में ज़बान है कि रेस का घोड़ा है, पटपट पटपट चलती रहती है। हम
2: इतना कहना चाहती हूँ कि अभी आपको रेस करके पहुंचना है फूड फुले सुपरमार्केट जो कि न्यू मैनेजमेंट के अंडर अभी है, एंड साथ साथ यहाँ पर हमारी ब्रेकफास्ट टीम एंड ड्राइव टीम भी हैं। और यहाँ देखते हैं हमारे मोस्ट हैपनिंग रुजबे बे, हाउ आर यू?
3: आई एम वेरी गुड काशिका जी, हाउ आर यू डूइंग?
2: आई एम ग्रेट। तुम्हारी आवाज सुनी तो और भी अच्छी हो गई, बताओ क्या चल रहा है?
3: अरे क्या बात है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी आपको सुन रहा था, आपने बोला लेफ्ट ओवर चीजों का आप क्या मस्त जुगाड़ लगाते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज फ्राइडे नाइट काफी लोग पार्टी करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं घर पे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्टार्टर्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्नैक्स, बिकॉज यहाँ पे ऐसी रेंज है, मैंने देखा यहाँ पे फ्रोजन आपको ऐसा सॉलिड रेंज मिलेगा जहाँ पे यू कैन गेट लाइक चिली हर्ब कबाब, वेज शमी कबाब, देयर सम कॉर्न चीज चिली टिक्की, आलू टिक्की, ओ माय गॉड, लाइक द रेंज इज इमेंस। आपको हर एक ऐसी चीज मिल जाएगी जो आप क्विकली एयर फ्रायर में डाल के क्विकली अपने जो गेस्ट हैं उनको इम्प्रेस कर सकते हो, और ऐसा बोल भी सकते हो कि ये हमने खुद ने बनाया। क्या कहिएगा जी,
2: क्या बात है,
3: सही है ना आइडिया?
2: अरे भैया मैं तो लगता है कि मुझे आज कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से खाना जाएगा।
3: एक और चीज मैं कहना चाहूंगा फॉर आवर लिसनर्स, तो जो हमें सुन रहे हैं अभी और अभी सोच रहे हैं कि रेस करके आने वाले हैं फूड फॉर लेस सुपरमार्केट, देखो रेस करके आ रहे हो ठीक है, स्पीडिंग टिकट अगर आपको लगती है काशिका जी यहाँ पे आने वाली है बहुत जल्द, तो वो आपका स्पीडिंग टिकट रिमेंबर्स कर देगी।
2: नहीं,
3: लेकिन उस लेकिन लेकिन वन थिंग दैट वी कैन ऑल्सो डू फॉर यू इज दैट आप यहाँ पे जैसे ही आते हम जहाँ पे इनका कैफेटेरिया है, जो फूड एरिया है, वहाँ पे एंट्रेंस पे हम बैठे हैं, वहाँ पे आप आइए, आपका नाम हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और फिर जाके शॉपिंग कंटिन्यू कीजिए। एवरी आवर यू हैव अ चांस टू विन $100।
2: अच्छा तो रजिस्टर करो, फिर क्या करो, नाम ड्रॉ में
3: रजिस्टर करो, फिर जाके नाम ड्रॉ में
2: क्या मिल क्या रहा है,
3: क्या क्या
2: क्या मिल क्या रहा है?
3: $100 मिल रहा है ना आप? अरे आपको मालूम अभी यार सेल्स कौन संभाल रहा है यार, कैसे कैसे यार।
2: मैं कहलवा रही थी कि जो लोग नहीं जानते, जो अभी अभी लगे हैं ट्यून इन करने, तो उनको बता देना तुम्हारे जबानी।
3: नहीं नहीं मैं तो कंफर्म आपसे ही करना चाह रहा हूँ कि $100 का हम यहाँ पे गिव अवे दे रहे हैं ना हर घंटे।
2: हाँ,
3: तो हर घंटे $100 का गिव अवे कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए आप आइए पहले हमारे साथ आके रूबरू मिलिए, आपका नाम हमारे पास रजिस्टर कर लीजिए, एंड देन कंटिन्यू योर शॉपिंग, एंड व्हाइल योर शॉपिंग एंड्स मे बी यू विल बी द लकी वन हु इज विनिंग द $100।
2: ओ वाओ फैंटास्टिक ग्रेट। पार्किंग शॉकिंग सब सही है, पार्किंग मिलेगी ना?
3: सच बोलना पड़ेगा ना,
2: आजू बाजू बहुत पार्किंग है,
3: आजू बाजू बहुत पार्किंग है, लेकिन यहाँ पे काफी भीड़ है और फुल है पार्किंग। बट वन गुड थिंग इज दैट इट इज मूविंग आउट, लाइक बहुत ही फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, बिकॉज पीपल आर कमिंग, दे आर शॉपिंग एंड दे आर गोइंग बैक, सो जो पार्किंग है वो डिफिकल्ट है, लेकिन एक एक कार पार्क ऐसे बीच में मिल जाता है अगर आप 2-3 मिनट रुकोगे तो। एंड बाजू में लिन मॉल है, लिन मॉल में काफी लोग पार्क कर रहे हैं और क्रॉस करके आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे सामने भी मैं देख रहा हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू गाइस, आप आ जाइए यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि ऐसे स्पेशल्स हैं यहाँ पे जो मुझे नहीं लगता आपको और कहीं मिलने वाले हैं, एटलीस्ट आज के दिन।
2: अरे वाह,
3: तो फटाफट आ जाइए।
2: बिल्कुल, और अर्जुन सुपरमार्केट ने इस फूड फॉर लेस को टेक ओवर किया है और ये बिल्कुल नए मैनेजमेंट के अंडर बहुत क्लीन सुपर सुपर स्पेशल्स के साथ। भाई रुजबे थैंक यू सो मच, एंड जितने लोग भी पहुँचना चाहते हैं, आपका भी टेक्स्ट आया था और आपने मुझसे एड्रेस पूछा, तो 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलिन आप पहुँच सकते हैं फूड फॉर लेस सुपरमार्केट अंडर द न्यू मैनेजमेंट। सो कैच यू सून रुजबे, आ रही हूँ मैं भी शॉपिंग करने के लिए,
3: आ जाओ।
2: ठीक है, टेक केयर, बाय
3: बाय। थ्रोबैक
2: की तरफ तो मैं आपको लेके जा रही हूँ, लेकिन याद दिला रही हूँ एक ऐसी चीज जिसके लिए आज मैं फाइनल टाइम आवाज दे रही हूँ, जितने भी लोग रोवा ऐप के जरिए हमें सुन रहे हैं, और रिटर्न टिकट टू फीजी जीतने का खूबसूरत मौका मत खोइएगा। हमका स्पेशल कोड मैं आपको बता चुकी हूँ और अब बताने वाली हूँ वंस अगेन, सो दैट आप यू नो फटाफट जाएं और जाके अपना नाम एंटर कर सके, ग्रॉग, GROG, ग्रॉग, एंड वी ऑल नो व्हाट ग्रॉग मींस, लेकिन इसे कावा कहते हैं और ये ट्रेडिशनल एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है और ये आप जब ट्राई करते हैं फ्यूजन कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम और एक रिलैक्स्ड फीलिंग आपको देता है। तो याद रहे जब आप फ्यूजन जाएंगे एक काम रिलैक्स्ड फीलिंग आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको ये कोड वर्ड ऐड करना पड़ेगा GROG ग्रॉग और एंटर कीजिए। एंड याद रखिएगा हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर ज़रूर समझ लीजिएगा। बात करते हैं बर्थडे गर्ल के बारे में, तो इस पर्टिकुलर सॉन्ग के बाद इनका नाम ही धक धक गर्ल हो गया था।

बिल्कुल मस्त मलंग मूड लेकर हमारी टीम वहां पर यानी कि फूड फॉर लेस सुपरमार्केट में पहुंच चुकी है अंडर न्यू मैनेजमेंट एट 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लिन, और मैं भी वहां पहुंचने वाली हूं अभी टीम के पास क्योंकि मुझे करनी बहुत सारी वीकेंड की शॉपिंग। लेकिन इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है शुक्रवार, मेरी मुलाकात आपके साथ होगी वो दिन कहलाएगा सोमवार। लेकिन मैं चाहती हूँ आपके लिए आने वाला ये सप्तांत जो है जोरदार दमदार और शानदार बना रहे। आपका साथ निभाने के लिए स्टूडियो में आने वाले हैं लंच बॉक्स लेकर केतन, इनका साथ दीजिएगा। मैं अभी के लिए चलती हूँ, मंडे की सुबह 10 बजे फिर मुलाकात करती हूँ। लुक आफ्टर सेल्फ, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ।